0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल सेलिब्रेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, हम भगवान शिव की और मानसी पूजा कर रहे हैं। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काल कल कला गीतम चंद्रेत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा ये तत्समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाण प्रभु। छत्र दो चवर पंखा निर्मल दर्पण वीणा भेरी मृदंग दुंदुभी के वाद्य गान और नृत्य साष्टांग प्रणाम नाना विधि स्तुति ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी ये पूजा ग्रहण कीजिए। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवा राधनम्। हे भगवान, हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो जो कर्म करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अभिहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों तो वो विहित हों अथवा अभिहित, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा सागर, हे महादेव, हे शंकर, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। कल्याण सूक्त जज

0: एकं तन में शिव संकल्पमस्तु। जो जागते हुए पुरुष का मन दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुष का वैसे ही निकट आ जाता है। जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है, जो भूत भविष्यत वर्तमान संत कृत एवं व्यवहित पदार्थ का एकमात्र ज्ञाता है, तथा जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला सूत्र आदि इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तन है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। ये न कर्माण पयो मनिखिनो यज्ञे कृणवंतु विदधे कुधिरा जतपूर्वे जक्षमंत प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कर्मनिष्ठ एवं घीर विद्वान जिसके द्वारा यज्ञ पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ में कर्मों का विस्तार करते हैं, जो इंद्रियों का पूजन अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजा के हृदय में निवास करता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत वत्स संबंध संकल्प से युक्त हो। ओम जग प्रजाना मुतते तो जद सिष्टिंजन ज्योतिरन्मृतम प्रजासु जस्मन कृतते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो विशेष प्रकार के ज्ञान का कारक है, जो सामान्य ज्ञान का कारक है, जो अर्ध स्वरूप है, जो समस्त प्रजा के हृदय में रह करके उनकी समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

प्रसानां छन्दसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीनान पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज वेडनेसडे 19 अगस्त 2026 के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज श्रावण शुक्ल सप्तमी का पावन दिवस, आज हम सभी महान संत महाकवि एवं श्री रामचरितमानस के अमर रचयिता कलि पावन अवतार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की पावन जयंती मना रहे हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान श्री राम की भक्ति के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने संस्कृत के गुर आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा अवधि में यह श्री रामचरित मानस की रचना की, जिससे सामान्य जन भी भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र धर्म मर्यादा और भक्ति को सरलता से लाभ उठा सके। और इसी के आधार पे श्रावण के इस पावन दिनों में हम लोग शिव चरित्र का पाठ कर रहे हैं। कल भगवान शिव की भक्ति की आकाशवाणी ने सराहना की, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं।

आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है, आकाशवाणी कह रही है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शिव से पूछा,

आती। सती कहती है कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के

0: धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, त्रिपुरारी भगवान शिव ने कुछ ना कहा। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम इंद्रम श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मि पोषं रैनामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमहनाम। हे अखिलेश्वर्य संपन्न परमेश्वर, हमारे लिए श्रेष्ठ धर्मों को, श्रेष्ठ धनों को, उत्साह की चतुरता को, सत्कर्म के ज्ञान को, सौभाग्य को, धनों की पुष्टि को, शरीर की हानि के अभाव को, निरोगता को, वाणी के स्वाद को, दिनों के सुदिनत्व को तू हमें दे। यह मंत्र महर्षि दयानंद जी ने जात कर्म संस्कार में अंकित किया था। आदरणीय श्रोताओं, श्रावण एवं वेद मास के अवसर पर आर्य सभा मॉरिशस की ओर से, पंडित जीवन महादेव की ओर से हार्दिक स्वागत है। उक्त मंत्र में सभी आवश्यक भद्र अथवा श्रेष्ठ पदार्थों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। उत्साह सत्कर्म का ज्ञान है। जीवन में सफलता के लिए सबसे पूर्व सत्कर्म का ज्ञान होना चाहिए और उस कर्म के लिए भरपूर उत्साह होना चाहिए। कोरे ज्ञान से कुछ सफलता प्राप्त नहीं होती, न ही ढीले ढाले बेढंगे आस्था रहित भाव से किया कर्म सफल होता है। अतः सर्वप्रथम उत्साहपूर्ण सुकर्म का ज्ञान और अनुष्ठान होना चाहिए। सारे साधन हो और सौभाग्य अच्छा न हो तो महान प्रतिबंध खड़ा हो जाता है। भाग्य कर्मानुसार ही बनेगा, बीते हुओं का परिवर्तन नहीं हो सकता। आगे के भाग्य बने इसके लिए कर्म करने की आवश्यकता है। पूर्व कर्मों के फल दुख या सुख तो भोगेंगे ही, भविष्य के दुखों से बचने के लिए वर्तमान में पुरुषार्थयुक्त कर्म करना अनिवार्य है। शरीर कर्म का साधन है। शरीर सदा निरोग और बलवान हो तो कर्म करने में सक्षम रहेगा, वाणी में मिठास रहेगा। वाणी आग और जल दोनों का कार्य करती है। संतप्त हृदयों को मधुर वाणी द्वारा उनके ताप को मिटाया जा सकता है। कहा गया है कि तलवार की धार को भरना आसान है, परंतु वाणी से लगी चोट को भरना असंभव है। भले कर्म करेंगे तो भले दिन भी देखेंगे। यजुर्वेद में एक सुंदर मंत्र लिखा है, सुब्रह्म यज्ञ सुशमीम वसुनाम देवम राधो जानाताम। लोगों के लिए उत्तम कर्म युक्त और उत्तम शांति हो तो क्या कहना, शांति नहीं तो सबसे बड़ी आपत्ति है, शांति है तो सबसे बड़ी संपत्ति। जिसके पास शांति नहीं वह तो निर्धन है या निधन अवस्था में है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम अध पश्यस्व मोपरि संतराम पादकौ हर माते कशप्लकौ दृशन् स्त्री ब्रह्मा बभूविथ।
2: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। वेद मास के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोतागण, मैं पंडिता राजवंती पियती इस मंत्र में यहाँ पर वेद माता हम सबको निर्देश देती है कि हे नारी, नीचे देख ऊपर मत देख, दोनों पैरों को ठीक प्रकार से एकत्र करके रख, दोनों स्तन पीठ और पेट दोनों नितंब, दोनों जांघें दोनों पिंडलियां और दोनों तखने दिखाई न दें। यह सब कुछ किस लिए? क्योंकि स्त्री ब्रह्मा निर्माण कर्त्री हुई है। श्रोतागण, इस मंत्र का भावार्थ यह है, मंत्र में नारी के शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहला निर्देश यह है कि स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखनी चाहिए, ऊपर नहीं। नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का चिन्ह है। ऊपर देखना निर्लज्जता और अशालीनता का द्योतक है। दूसरा निर्देश यह है, स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। झटलाते हुए, मटकते हुए, हाव भावों के का प्रदर्शन करते हुए चंचलता या चपलता से नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पर श्रोतागण, तीसरा निर्देश यह है कि नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करने चाहिए कि उनके गुप्तांग, स्तन, पेट, पीठ, जंघा आदि, पिंडलियों आदि दिखाई न दे। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का द्योतक है। श्रोतागण, चौथा निर्देश यहाँ पर है इस मंत्र में कि नारी के लिए इतना बंधन क्यों? ऐसी कठोर साधना किस लिए? इसलिए कि नारी ब्रह्मा है, वह जीवन निर्मात्री और सृजन कर्त्री है। यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। माताओं और बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। वेद माता ने हम सबको निर्देश दिया है, उनके निर्देश का हम पालन करें और जीवन में अपने आप का उत्थान करें, यश कमाएं। आज के लिए इतना ही। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: अथ

0: ऊष्मः।
1: अग्नि ताप और प्रकाश का स्रोत है, अग्नि में भस्म करने की शक्ति है, अग्नि का ताप और प्रताप अत्यंत विचित्र है। अग्नि के सुप्रयोग से जगत का कल्याण होता है और कुप्रयोग से संसार की हानि होती है। दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है,

0: और सुप्रयोग से जीवन सुखदायी बन जाता है। ईश्वर सबको प्रेरणा देता है कि हम किसी से द्वेष न करें, न कोई हमसे द्वेष करें।
1: ओम वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रतितपयोस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मः।
0: वायु बल का संकेत है। बल प्राप्ति के लिए तप करना अनिवार्य है। शरीर में बल का विस्तार तभी संभव है जब मनुष्य प्राणायाम आदि तप से जुड़ा रहे। वायु शरीर को तभी बलवान बनाता है जब उस वायु का सुप्रयोग हो, और वायु जब कुपित होता है तो शरीर रोगी बन जाता है। वायु का संबंध तप से है। तप से ही वायु को धारण किया जाता है और प्राणों की शक्ति बढ़ाई जाती है। ईश्वर सबको प्रेरणा देता है कि हम किसी के साथ अप्रिय आचरण न करें और न कोई हमसे अप्रिय आचरण करें।
1: ओम सूर्य यत्ते तं प्रति तपयोस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः।
0: सूर्य अपने तप से संसार को प्रकाश से युक्त करता है एवं सृष्टि के पदार्थों को वीर्यवान और तेजस्वी बनाता है। सूर्य के विरुद्ध आचरण करने से दुख और अनुकूल आचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है। न कोई हमसे अप्रिय आचरण करें और न हम किसी से अनुचित आचरण करें। सूर्य भी अपनी तपस्या में स्थित है। नियमित रूप से उदय और अस्त होना एवं सबको प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करना उसका धर्म है। उसके ताप से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से सबको ऊर्जामयी जीवन प्राप्त होते हैं।
1: इति

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 19 अगस्त रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
2: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से। रजनी आपको नमस्कार।
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। पेंशन सुधार के नए चरण के 2 हफ्ते पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी दर्शाती है। मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में 1402 लाभार्थी कम। मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। एमवीआरपेक्स मामले में मंत्री अरविंद बुलेन ने

0: ये बात दोहराई कि पिछले 15 जुलाई को किसी खास वजह को लेकर ही 547 मवेशियों को जहाज से उतारा गया था। मवेशियों के आयात को लेकर अभी भी सख्त सैनिटरी नियम लागू और किसी भी तरह से लागू प्रावधानों की कमी के चलते कार्रवाई चला जा सकती है। कृषि के क्षेत्र में ही रहते हैं, सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है। फागे की तरफ से मंगलवार को गेजवी को प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और जो हो ज्यादा आकर्षक भी। आज तुलसीदास जयंती। तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे, विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए जाना जाता है। और विदेशी समाचारों में बच्चों पर इंस्टाग्राम के असर से वाकिफ था मेटा, 29 अमेरिकी राज्यों ने जानकारी छिपाने का लगाया आरोप। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। मौसम संबंधी जानकारियाँ कुछ समय में। हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त बादल घिरे रहेंगे और रहकर बारिश होती रहेगी। कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी और टापू के आधे पूर्वी हिस्सों में और सेंट्रल प्लाटो पर कोहरे छाए रहेंगे। फिर भी सुबह के वक्त कुछ सुधार आने लग सकता है मौसम में, और इसके साथ साथ पूर्वी इलाके में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके में और ऊंचाइयों पर। शाम के वक्त और रात में भी ऐसा होगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। फिर भी शाम के वक्त इसमें सुधार आने लगेगा। सुबह के वक्त और शाम में दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:29 पर सूर्योदय, शाम 5:58 पर सूर्यास्त।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ RM3 ہے پر ویزا کا ساتھ ہے اردو نشریات بنام سبا الخیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت سے ہوں گے روشنیوں رحمتوں اور برکتوں سے سجی اس سے خوبصورت نشریات میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں مزید سامعین یہ وہ لمحات ہیں جب دل ذکر الہی سے منور ہوتے ہیں روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے تو آئیے مزید سامعین اس سے روح پرور محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کا بابرکت کلام سے جو سراپا ہدایت اور سراپا نور ہے بغور و با ادب سماعت فرمائیے تلاوت قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो।

मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहां बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे।

0: और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक ना खुश ही हों।
1: इज़

जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम हजार फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे, और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करे, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नीम की चादर ओढ़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे,

जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूं, सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहाँ चखो और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोजख का अजाब भी तैयार है।

अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया, और उसका ठिकाना दोजख है, और वो बहुत ही बुरी जगह है।

बस तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं, तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज ये थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है।

हुआ भी यूं ही और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका। अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी

ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो, जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग

मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जाविदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और यह भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे, और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाकई न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है।

0: ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कलामे रब्बानी के इन प्यारे अल्फाज की गूंज ने फ़िज़ा में एक अलग ही पाकीज़गी घोल दी है। मज़ीद सामीन, कुरान मजीद की फजीलत में ये है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने वाला नूर है, जिसका एक हर्फ तिलावत करने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं और घरों में रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। मज़ीद सामीन।

मीन ये वो जिक्र हैं जो भटके हुए दिलों को रास्ता दिखाता है और रूह को बेनज़ीर सुकून बख्शता है। शामिल मोहतरम, अब वक्त है उस मालिक कायनात की शान में सर झुकाने का जिसके एक इशारे पर ये पूरा जहां चलता है। अल्लाह की हम्द करना बंदे के दिल को झुकाती है और उसकी शान को आसमान तक बुलंद भी करती है। दिल की गहराइयों से सुनिए और इससे नूर का हिस्सा बनिए।

तेरी रहमतों का दरिया बहता है दिन रात, मुझसे गुनहगार को भी मिल जाए कोई सौगात। हर जर्रे में तेरा नूर चमकता है खुदा, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा है खुदा। तू ही हमारा आसरा, तू ही हमारी पहचान, तेरे करम से ही जिंदा है हमारी ये जान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत सफ़र है, नफ़रत के अंधेरों में यही नूर सहर है। आप तमाम अहल इस्लाम को माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। मज़ी सामीन, माह रबीउल अव्वल वो दरख़शिंदा बाप है जिसने इंसानियत को जहालत की तारीखियों से निकाल कर हिदायत का उजाला बख्शा। आज के इस नशिश में इंशाल्लाह ताला हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा, उनके अखलाक आलिया और उनकी ज़ात बाबरकत की खुशबू से अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे।

0: खवातीन व हज़रात, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम सिर्फ खुशी का इजहार नहीं बल्कि उनकी तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में ढालना है। कुरान करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उसवे हसना यानी बेहतरीन नमूना करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हर गोशा, चाहे वो ताजर की हैसियत से हो, एक शौहर, एक वालिद या एक हुकुमरा के तौर पर अदल, सच्चाई और दरगुजर का शाहकार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे इंसान महफूज रहे। पेश खिदमत है जामा मस्जिद के ख़तीब आली हज़रत अल्लामा मुहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी साहब के रूपरवर और फ़िक्र अंगेज़ बयान। समाअत फरमाइए।
1: नहमदुल्लाह व नसल्ली मुआला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही أول الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد سامعین محترم हमारा आज का मौजू खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम है। सो सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को अपना सबसे बड़ा इफ्तिखार ख्याल करते, इसलिए मुतअद्दद सहाबा ने, अजीम अजीम शख्सियात ने अपने आप को आपकी खिदमत के लिए वक्फ किया। हज़रत सैयदुना बिलाल ने इब्तदाई बैसत से ही आपकी खानदारी के तमाम कारोबार का इंतज़ाम अपने ज़िम्मे ले लिया और उसके लिए तरह तरह की तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन आपके शरफ़ खिदमत का छोड़ना कभी गवारा न किया। आपका मामूल था कि जब कोई गरीब मुसलमान खिदमत मुबारक में हाज़िर होता और उसके बदन पर कपड़े ना होते तो आप हज़रत सैयदुना बिलाल को हुक्म देते वो कर्ज़ दाम लेकर उसकी खुराक व लिबास का इंतज़ाम करते। एक बार किसी मुशरिक से इस मकसद के लिए कर्ज़ा लिया, लेकिन एक दिन उसने देखा तो नहायत सख लेजे में कहा, ओ हबशी, तुझे मालूम है कि अब महीने में कितने दिन रह गए, सिर्फ चार दिन। इसी अरसा में मैं कर्ज वसूल कर लूँगा, वरना जिस तरह तू पहले बकरियाँ चराया करता था इसी तरह बकरियाँ चराऊँगा। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को इस बात से सख्त रंज हुआ, गमगीन हुए। ईशा के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, अर्ज़ की कि मुशरिक ने मुझे ये जो कुछ कहा आपके पास और नीज मेरे पास कर्ज के अदा करने का कोई सामान नहीं, और वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, सता रहा है। फरमाएं कि जब तक कर्ज अदा न हो जाए मुसलमान कबाइल में भाग कर पना लूँ, घर वापस आए तो भागने का तमाम सामान भी कर लिया, लेकिन रज़ाक आलम ने सुबह तक खुद कर्ज के अदा करने का सामान कर दिया और सुबह तक इंतज़ाम हो गया। ये अबू दाऊद शरीफ किताबुल खराज

जिंदगी की असल कामयाबी माल और दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रजा नेक आमाल और बेहतरीन इखलाक में है। वैसे तो दुनिया में अजीम लोग बहुत आए लेकिन रहमतुल आलमीन सिर्फ एक हैं।

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत का सफ़र है। नफ़रत के अंधेरों में यही नूर सहर है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो हैं जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अकीदतमंद सामईन, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बान से दावा करने का नाम नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का नाम है।

जिसमें मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसी है, वरना धड़कने का नाम तो सिर्फ ज़िंदगी है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हो सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्ते गिरी की, हो सलाम उस पर के जिसने बादशाहियत में फकीरी की। या अल्लाह, इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारे मुल्क में अमन, सुकून और भाईचारा अता फरमा। हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको अतबाए सुन्नत और खातमा बिल खैर नसीब फरमा, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। टिकने की मदद अंजू की रही है, मशकूर ममनून है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

அனைவருக்கும் இனியக்காலை வணக்கம்.

With RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Dini Seyarangam.

0: जीवन चवर जीवता गुड़पेसाव कदा जूलियट
1: जीवित प्रती रोजू मन को अंटे मन को अभवा परिचय चेस्तुंदी कोन्नी मन को आनंदान्नी इस्ताई कोन्नी पाठालू नेर्पिस्ताई कानी रेंडु मन प्रयाणानिकी अवसरमे कदा निन्नटी गुरिंची एक्कुवगा बाधपड़कुंडा रेपटी गुरिंची एक्कुवगा भयपड़कुंडा ई रोजुनु मनस्फूर्तिगा जीविद्दाम।

0: लव इज ग्रोइंग डे एंड नाइट. अने आ साथे ज भाई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गीतो. कमिंग अप विद द नेक्स्ट सॉन्ग दैट्स फ्रॉम द मूवी मिस्री डिल्यूजन. वो आ गीत अमित त्रिवेदी रौनक कामदार और मानसी पारेखा फिल्म में नजर आवेला छे. एनीवेज आ गीत छे अमित त्रिवेदी ना वॉइस में.
1: अच्छा एफर्ट्स चालू रखा.

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, और मिस रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो। प्रस्तुत है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर, और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:30 बजे तक। जी हाँ, और आज का दिन बहुत ही खास है दोस्तों। आज का दिन भक्ति, ज्ञान और मर्यादा को याद करने का एक पवित्र अवसर है। आज हम बात कर रहे हैं महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिनकी वाणी में श्री राम के प्रति अपार प्रेम और भक्ति की गहरी भावना समाई हुई थी। सबसे पहले चलिए लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओ, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर चित्रकूट क्षेत्र में माना जाता है। उनके जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, लेकिन परंपरा के अनुसार श्रावण शुक्ल सप्तमी

के दिन तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। बचपन में उनका नाम राम भोला बताया जाता है। तुलसीदास जी का बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। बाद में उन्हें गुरु नरहरिदास का साथ मिला। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया और श्री राम की भक्ति की और उनका मन बढ़ता रहा।

जय श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी पर। आज तुलसीदास जयंती है और इस समय दिन के 11 बज चुके हैं, तो जारी रखते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम को। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करता था। एक बार रत्नावली ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार का प्रेम वे उनसे करते हैं, अगर उसका आधा प्रेम भगवान श्री राम से करते तो उनका जीवन सफल हो जाता। रत्नावली के ये शब्द तुलसीदास जी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आए। उन्होंने सांसारिक मोह को पीछे छोड़ दिया और अपना जीवन श्री राम की भक्ति और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।

श्रोताओ, तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे उन्होंने संस्कृत के बजाय जनभाषा अवधि में लिखा है। इसके कारण श्री राम की कथा आम जनता तक पहुंच सकती है और रामचरितमानस में केवल भगवान राम की कथा ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य, करुणा, मर्यादा और सत्य जैसे जीवन मूल्यों का सुंदर वर्णन मिलता है। और तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख रचनाओं में हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल का नाम लिया जाता है।

तो श्रोताओ जीवन तुलसीदास जयंती के अवसर पर हमने उनके जीवन के ये सीख लेनी चाहिए कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि भक्ति का अर्थ है सत्य, प्रेम, दया, सेवा और कर्तव्य के मार्ग पर चलना। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें बताया ही कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वे अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग दूसरों के हित के लिए करें। इसी के साथ तुलसीदास जयंती के पवित्र अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी को कोटि कोटि नमन। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उनकी वाणी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्रेम, दया, सत्य और मर्यादा को अपनाने का संकल्प करें। उषा को दीजिए अनुमति। शुभ दिन।

कम। मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट से ये बात सामने आई। इस साल के मई महीने के अंत में व्यापक मुद्रा स्फीति 4.2% थी। 54% लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि ये स्तर काफ़ी ऊंचा है। आने वाले महीनों के लिए बताया गया कि मुद्रास्फीति दिसंबर 2026 में औसतन 4.9% होगी, जिसके बाद 2027 के जून महीने में ये बढ़कर 5% तक होगी। मानवीय संवेदना और दूसरों की मदद का जज्बा किसी सीमा, धर्म या राष्ट्रीयता का मोहताज नहीं होता। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, विस्थापन, भुखमरी और दूसरे मानवीय संकटों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और आम लोगों के साहस व समर्पण को सम्मान देने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि संकट की घड़ी में इंसानियत के लिए उठाया गया एक कदम भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। एड वर्कर्स सिक्योरिटी डेटाबेस के अनुसार 2025 में 907 मानवतावादी कर्मचारियों की जानें गईं, या तो घायल हुए या अपहरित कर लिए गए, जबकि 2024 में इसकी संख्या 833 थी, जिनमें 350 लोगों की मौत हुई। यहां मॉरिशस में विदेश मंत्री धनंजय रावल ने मानवतावादी कर्मियों को आभार प्रकट किया और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी अधिकार के बारे में बेहतर जानकारी देने की जरूरत पर जोर दिया। मॉरिशस में ये एक चुनौती है जहां पर कई प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, जैसे कि तूफान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ आदि। सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर कदम बढ़ा रही है। फागे की तरफ से कल रेजवी में प्रिसिजन फार्मिंग AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। आज तुलसीदास जयंती है। तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे, विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। विदेशी समाचारों में अफगानिस्तान में यूएन मिशन ने बताया कि काबुल के एक एजुकेशन सेंटर में हुए धमाके में कम 42 बच्चे घायल हो गए हैं। मिशन ने धमाके की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और भारत की ओर से ऐसी भी खबर आ रही है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता में एक होटल में लगी आग के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तड़के ही आग लग गई, काला धुआं उठता दिखाई दिया और तीव्र गति से आग की लपटें फैलती चली गई। और अमेरिका के इलिनॉय में 3 बच्चों की एक मां अपने 7 साल के मासूम बेटे को नदी के तेज बहाव से बचाते हुए खुद डूब गई। 31 वर्षीय एंजेलिना कैलिमेंटा की डूबने से मौत हो गई। चांद पर हुई एक्सप्रेस रॉकेट की टक्कर का निशान अब साफ दिखाई दे रहा है। नासा की नई तस्वीरों में क्रैश से बना करीब 60 फीट चौड़ा गड्ढा दिखाई दिया। खास बात यह है कि इसकी तस्...

तस्वीर लेना भी वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं था। ये तस्वीरें नासा के लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिट ने 11 और 12 अगस्त को ली। वैज्ञानिकों के मुताबिक 5 अगस्त को फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चांद से टकराया था। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। इरानसलेन बुसोंज में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड की शर्मिली देवी गिरधारी जो फीफी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर इरानसलेन बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलेविय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टुडे एट 1 PM। हामदानी रोड प्लंदी पापाई में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री सुक्रमान्य गोइंथान जो दासन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनकी पत्नी सती लक्ष्मी गोइंथान के घर हामदानी रोड प्लंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। स्कूलेन एक्वायो में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बालदेव सुभों जो प्रवीण नाम से भी जाने जाते थे और कृषि सेक्टर में काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे सचिन शर्मा सुभों के घर स्कूल ले निकवायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। शुभ मेरुबेन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप भाई? हम तो यहाँ पर आपका साथ देने के लिए ही आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो सभी हमारे श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देर न करते हुए इस गाने के साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

0: सदा के दिल अभी भरा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे गीतों से दिल कहाँ भरता है जी।
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम हो और ऐसे में गीतों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपका स्वागत करती हूँ मैं विदिता एक बार फिर रेडियो मनोरंजन RM3 पर। हमारा टिकटॉक एकदम लाइव है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ गाने गुनगुना सकते हैं और साथ में अपने मैसेजेस भी हम तक पहुँचा सकते हैं। तो बस करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। और यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर लव जुड़ चुके हैं, वी हैव संदीप दोयल, नमस्ते मंजुलिका, हेलो बैन कैसी हो, थैंक यू सो मच। चलिए इसके साथ नेक्स्ट गाना जो होगा गुड़िया रानी क्या बात है, मामा उर्मिला के लिए, पापा सुरेश सुकन के लिए गांवगुप से हैं साथ दे रहे हैं, थैंक यू। और यहाँ पर अलीसा हमारे साथ हैं, वी हैव लीना हलकोरी एंड साथ में यहाँ पर आयशा जुड़ी हुई हैं एंड वी हैव रिकार्डो, हेलो हाउ आर यू लीना जी, कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट गाना जाता है फॉर माई फ्रेंड रोशनी, देविना, चिरंजीत, अमिताभ, बरका, शमा भी गंगा तलाव में काम कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। आयशा परी आ गई हैं उड़ते उड़ते, कहते हैं कहिए जी कहाँ से आई हैं आप। ओके छुट्टी कैसी रही, काफ़ी लंबी रही, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, चार दिन नहीं आई ना, हाँ जानती हूँ, गिन गिन के चुन चुन के बदला लोगे तुम लोग। चलो तो यहाँ पर सुल्ताना कंदाय हमारे साथ हैं। वैसे आयशा आपने बिल्कुल बात तो सही कही, दिन बड़े अच्छे थे एंड थैंक यू सो मच सरोज अपने विशेज़ के लिए, सो हैप्पी, थैंक यू देव एंड साथ में यहाँ पर हाय ट्रैवल कैसे हो, तो चलिए उनके लिए भी गाना हम डेडिकेट करते हैं, वी हैव वास्तव एंड आपने जो लिखा मुझे समझ में नहीं आया लेकिन थैंक यू। और मूवी फैसिलिटीज़ में जितने भी लोग काम करें उनके लिए गाना होगा, अनिल जी कैसे हैं आप, थैंक यू सो मच, गाना आपको पसंद आया। नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए एंड माधुरी आई एक दो तीन करते हुए, चलो तो ये लड़की आती है और भाग जाती हैं, हाँ बस देखना होता है उनको और चली जाती है, थैंक यू सो मच आयशा। और नीता हमारे साथ है, उनके लिए भी गाना होगा, लक्ष्मी आ गई लक्ष्मी, कैसी हो लक्ष्मी, आशीर्वाद दीजिएगा। चलो तो यहाँ पर श्यामा माहिलाली हमारे साथ हैं, उनके लिए भी गाना होगा और थैंक यू फॉर द विशेस सो मच, थैंक यू सो मच। आरती सदाशिवन और यहाँ हमारे साथ कौन है, चलिए आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, मतलब नाम नहीं लिखते ना तो मैं किसको हेलो बोलूँ।

0: चलिए अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला गाना कौन सा होगा ये भी जान लेते हैं।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: तो हमारा जो अगला गाना होगा वो हम डेडिकेट करेंगे सुल्ताना जी आपके बेटे, आपकी बहू के लिए। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी कल और आपकी बहन की भी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उनके लिए भी नेक्स्ट गाना होगा। एंड माधुरी थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर फिजी से हमें मोहम्मद फारूक भी ज्वाइन कर चुके हैं। हाय गाइस, फिजी आइलैंड में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड अपना प्यार बरसाने के लिए। हाय प्रिया, कैसे हो आप? वैसे यहाँ पर साहिल भी हमारे साथ हैं और साहिल कहते हैं 5 दिन के बाद क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, आपके विशेज आ रहे हैं एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम फॉर माई बर्थडे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बहुत स्पेशल, बहुत खास था। एंड साथ में यहाँ पर थैंक यू सो मच। हाँ, ये ग्लो आपसे ही आता है, जब आप लोगों का प्यार मिलता है, साथ मिलता है, तो डेफिनेटली इंसान ग्लो तो करेगा ही ना। और यहाँ पर नीलम नीलखंड हमारे साथ हैं। हाय रीना, हाय उत्तम, वी हैव आना। आना कहती है नमस्ते विदिता जी। नमस्ते जी, कैसी हो जी? एना जी, एना दीदी, ऑल गुड। एंड रीना, हाँ थैंक यू सो मच फॉर द विशेज। कल्याणी हरी, वी हैव जीतन दुलवा एंड थैंक यू, थैंक यू सरोज, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ नूर है जुड़े हुए। हाय क्वीन, कैसे हो? थैंक यू शैल दी, रेशमा सूरज जी। साथ में यहाँ पर गाना है लक्ष्मी जी आपके लिए। परी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। शाइना थैंक यू। एंड श्यामा जी, वास्तव, सभी को, विशाल चमन, संस्कृति, सुबी हाय, थैंक यू सो मच। एंड चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड जो शैला, शैला स्नेहा, ओके शैला।

0: स्नेहा की मॉम सब साथ दे रहे ना, चलो उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं. एंड सैंडो हाय हाउ आर यू, निज़ाम उज़ीर आपका भी हम वेलकम करते हैं. साउथ अमेरिका से वो हमें हमारे कार्यक्रम को ज्वाइन किए हुए हैं, तो चलिए उनके लिए गाना हो जाए.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: चलिए गाना संध्या के नाम जो साथ दे रही है. दीप्ति गंदावरी कैसे हो आप? नमस्कारम मिसेस प्रीति. सलोनी गया दिन आपको भी और शाम आपके लिए. एंड वी ऑल्सो हैव सबिता रुकाया, स्वागत है आपका. कविता आपका भी.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए आगे बढ़ने का समय हो गया है। नेक्स्ट गाना हम तरुण राम के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। साथ में मिसेस प्रीति फिजी से हमें सुन रही हैं, उसका हम वेलकम करेंगे। फिजी से बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, आपके आभारी है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बबीता रोहित तसुगी नाम से हैं और भरिंदर संसुआ फ्रॉम जर्मनी। वी हैव नीलेश फकीर, प्रिया, शरीन रामजोन, विक बंतुआ, परवीन, ललिता, रेखा, प्रतिमा एंड रूही। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हमारा गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे अनीता के लिए। उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग, यानी कि वो मॉरिशस में नहीं है। थैंक यू। चलो जी आगे बढ़ते हैं और गाना होगा आपके लिए ललिता। यस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से गुजरा एंड अभी भी लगता है सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, सो आप लोगों का प्यार है। हेलो भारती, कैसे हो आप? हेलो खुर्शीद, वेलकम, आपका स्वागत है। आज मैंने चांद देखा, फुल मून, वेरी गुड। देखना, अच्छे से देखना और विश भी करना, ठीक है। हाय, कैसे हैं जी? नमस्कार जी, प्लीज़ अपने नाम लिख लीजिए। एडी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, कैसे हो? चलो तो यहाँ पर साथ देने के लिए थैंक यू अभिनव बबुआ। अच्छा जी अभिनव जी, आपके लिए गाना। संजय बदुआ, आपके लिए भी। सवीना, आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपका नाम नहीं है लेकिन आपने सलाम भेजा है। वी हैव सारिका बनारसी जी एंड आल्सो अंदिनी। हाय अंदिनी, ऐसा करते हैं यहाँ पे गाना होगा आपके लिए अभिनव। एंड साथ में राधे राधे शबनम रॉय, आपको गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे आप के लिए कविता। और कविता थैंक यू सो मच। वैसे आप नेक्स्ट गाना जो होगा मोहन और रेखा के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके नाम, आप हैं कौन? करुणा जी, हाँ। निर्मला जगेसर, राधे राधे आपको भी। तो नेक्स्ट गाना होगा साहिल की तरफ से उनके बॉस अनिल के लिए, परी माधुरी। सब ने, अच्छा जी, तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा प्यार भेजा था, मेरे लिए विशेस भेजे थे, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ऐसा करती हूँ मैं भी आपके लिए जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करना चाहूँगी बहुत ही प्यार से। और एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए और मेरे गीतों को एंजॉय करने के लिए। कहते हैं ना, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, है ना? तो वैसे ही हम प्यार से आपके लिए गाना लेकर आए हैं जिसे आप एंजॉय करेंगे। और ये गाना आयशा के लिए भी होगा, उनकी मम्मी सबीना का आज बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे, उनके बच्चे आयशा, अमीरा, ममद और साथ में उनके हस्बैंड रफीक की तरफ से। जैस्मिन को कहेंगे वेलकम, रेशमा साथ दे रही हैं, उनका भी स्वागत है। आसिया बुदू इटली से साथ दे रही हैं, हेलो मेरी तितली, कैसे हो आप? चलो तो उनके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं। एंड साथ में यही गाना होगा आपके लिए तीशा प्रेमचंद चमन।
2: मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है,

0: सफर खाना सफर
1: प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्यार की पहियों पे नहीं चलता। प्यार के साथ साथ कभी कभी दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, और कभी कभी कुछ माँ बाप के, कुछ फैमिली मेंबर्स के एडवाइस भी ज़रूरत होती हैं, जो अपने होते हैं उनके एडवाइस की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को किसी को इतना लाइक डेडिकेटेड हो जाते हैं दैट पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। उनको लगता है कि भाई ये तो हमेशा यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब इंसान थक जाता है, लड़ते लड़ते लड़ते वो गिव अप कर देता है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय हमें सुन रहे हैं, इस बात को वो समझे कि इंसान को सबसे पहले चाहिए कि वो खुद से प्यार करे और खुद को पैम्पर करे। जब तक आप ये सब करोगे नहीं ना, तब तक आपसे कोई और प्यार नहीं कर सकता। यू हैव टू मेक योर सेल्फ सो लविंग, सो केयरिंग। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में अपनी दुनिया में रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अपनी दुनिया में रहो, लेकिन ज़रूरी होता है कि कभी कभी अपने आप को भी पैम्पर कर लिया करो। वो जो आपको कुछ समय मिलता है, जैसे कि अभी आपके पास 2 आवर्स हैं, 12 से लेकर 2 बजे तक का है, आपको क्या लगता है कि भाई इस टाइम में ना मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे किसी के लिए कुछ बनाना है, मुझे कुछ ये करना है। अरे भाई, ये 2 घंटे आप बैठकर चाय वाय पी सकते हो, ये तो खाने का भी लंच टाइम है। सो यू कैन हैव योर लंच, है ना, लंच कर लो, आराम से 1 घंटा बैठ जाओ, यू नो, कुछ गाने सुनो, मूड बनाओ। स्पेशली वो लेडीज़ के लिए जो इस समय घर पर हैं, उनका बस काम ही होता है घर का काम करना। नो, यू आर नॉट मेड टू जस्ट डू द घर का काम। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। आप गा सकते हैं, आप मेरे साथ झूम सकते हैं, डांस करते हैं, मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं। नंबर आपको पता है, 5250620200। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मिस्टर प्रेमचंद चमन यूके से हमारे साथ जुड़े हैं, चांदनी, हरिराम, सविता। कल उनके पापा का बर्थडे था, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और मिसेस प्रीति कहती हैं, एक गाना मेरे दोस्त के लिए, वो

कुछ नाराज़ कुछ खफा हैं. तो चलो उनके लिए गाना चलाएंगे अगला. एंड साथ में यहाँ पर करुणा जी, थैंक यू सो मच ये गाना आपके लिए. बबीता जी नमस्कारम. एंड तिशा हाय वेलकम. और चलो मोगैम्बो खुश हो गया, जानकर अच्छा लगा. परी माधवी गुदर जो है वो कहते हैं कि हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू मिस्टर मिसेस प्रवीण गुदर. ओके, साथ में यहाँ पर शवि को कहेंगे थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. जीते हैं शान से, मरते हैं शान से. ये है सूर्यदेव जी, आपका वेलकम. आनंद गोपोल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. एंड साथ में स्वागत करते हैं जीना. ओके, इट्स जानीता हरलोल. ऑलराइट, आपके नाम अगर आप भेज देना तो अच्छा होता है, मेरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. यहाँ पर अहमद मुस्तफ़ा रामजून हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच. एंड तारीफ करना को याद आपसे सीखे. चलिए प्रसाद प्रिया के लिए भी यही गाना हम डेडिकेट करते हैं. और साथ में मिस्टर श्रीनिवासन, थैंक यू सो मच हमारे साथ.

0: जी हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं।
1: सुहाना सफर
0: में हम सफ़र बनने के लिए यहाँ पर हमारे साथ रमज़िया जॉइन कर चुकी हैं और साथ में यहाँ पर हमारे विकास जी जॉइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर द विशेज। अफीसा हैं हमारे साथ। वी हैव स्टीफन फ्रांसवा एंड यहीं पे गाना होगा वेदना के लिए जो कैटरबोन से साथ दे रही हैं। नूरोल शेख, बबीता फ्रॉम इटली और ये होगा अ सॉन्ग फॉर माय फैमिली, कोंकू लगन। ओके, एंड यहाँ पर यश हमारे साथ है, आदत से मजबूर, उनका तो बस यही चलता है, टिकटॉक पे नाम बदल बदल के आते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। चलो भाई, आपको बहुत सारा प्यार है हमारी तरफ से। हाई सबीना, थैंक यू सो मच। तुलसी, आपका भी हम वेलकम करते हैं और साथ में ये गाना हम रोशन जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और शेख कहते हैं इट्स माई बर्थडे टुडे, तो आपको हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और अगला गाना आपके नाम डेडिकेट करेंगे और साथ में यही गाना जाएगा फॉर माई लवली हस्बैंड राजेश, क्या बात है। एंड गाना होगा आपके लिए आपके पूरी फैमिली की तरफ से। वी हैव द नेक्स्ट गाना फॉर माई ब्यूटिफुल वाइफ सोनम, एंड गाना होगा आपके लिए जेस। ओके, ये है नेक्स्ट गाना टू सिस्टर सरोजा, उनका बर्थडे था कल, तो जेस की तरफ से होगा संदेश भजन। आपकी वाइफ मेधा, अभी वो SSR हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, तो हस्बैंड सुदेश भजन बुराके से हैं, उनको याद कर रही हैं और गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। वहीं पे नेक्स्ट गाना होगा सभी फैमिली एंड फैंस के लिए। नमस्ते बेटी, वेलकम टू स्टूडियो, मेरा ही स्वागत करिए, थैंक यू। क्या हुआ तेरा वादा। एंजल कहते हैं कि व्हेन आई वाज अ किड मैं सोच रही थी कि वादा जो है ना वो शायद एक केक होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अच्छा जी, वादा यानी कि कसम, कस्में खाई जाती हैं, कस्में नहीं तो रसम पी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर माया रामधुनी जी हमारे साथ हैं, संजय घाई एंड वी हैव संजनी। ओके ब्लेजर, थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ कोर्स, आपने हमें इतना प्यार दिया है, जाहिर सी बात है। यश अब्दुल रिशाद, रेखा गोपोल, लैला मुदारन, वीना पेंचिया, साथ में ललिता टू बाबूलाल फैमिली ऑफ वाकवा, ललिता नालिनी, सुनीता, राजीव एंड संजीव, श्री जी हमारे साथ हैं, कविता अनु, शनाया जो कि फ्रांस में हैं एंड साथ में विदुषा के लिए, श्रद्धा लखनौत एंड मिस्टर नुरेदीन, वेलकम।
2: You're listening RM Free Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। वेलकम, स्वागत है आपका सुहाना सफर प्रोग्राम में। देखते ही देखते वक्त ऐसे भाग रहा है कि पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर चलते चलते हमारे इस कार्यक्रम का जो नेक्स्ट गाना है वो भी हम आपको नज़र करेंगे। और गाना होगा आपके लिए सुहाग फिल्म से। ये गाना हम लीना रामनाथ सिंह के नाम डेडिकेट करेंगे। एंड बहुत सारा प्यार आपके लिए। देवीना रामबेरी, चन्नलेश भोजराज, मोहिनी, मनीषा चिकोरी, माला भवरो हमारे साथ हैं। चलिए ये गाना जो है मैं लेके जा रहा हूँ 1 बजे के समाचारों की ओर। तो उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है सुहाना सफ़र का, उसको हम जारी रखेंगे। बस आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। मैसेजेस भेजते रहिएगा और नंबर आपको पता है, नंबर तो है 5250620000। और साथ में यहाँ पर अगर आप लोग चाहे तो हमारे गीतों के इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं बाय जॉइनिंग अस ऑन टिकटॉक।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनि, सभी को हमारा नमस्कार। पेंशन सुधार के अगले चरण के लागू होने में अब 2 सप्ताह बाकी हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP पाने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जुलाई में पूरे देश में 2,73,829 लोग BRP प्राप्त कर रहे थे। इनमें 2,67,763 लोग मॉरिशस और 6,066 लोग रॉड्रिग्स में थे। मई महीने की तुलना में इसमें 1,402 लाभार्थियों की कमी आई है। आज 19 अगस्त को विश्व मानवीय सहायता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल ये दिवस मानवीय सहायता कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की गंभीर स्थिति के बीच मनाया जा रहा है। एड वर्कर सिक्योरिटी डेटाबेस के अनुसार 2025 में 960 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, घायल हुए या उनका अपहरण किया गया। 2024 में ये संख्या 833 थी, इनमें से 350 की मौत हुई। एक और बढ़ता खतरा सशस्त्र ड्रोन है, जिनका संघर्ष वाले क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इससे मानवीय सहायता कर्मियों और आम नागरिकों के लिए खतरा और बढ़ गया है। मॉरिशस में विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने मानवीय सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये मुद्दा मॉरिशस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश को प्राकृतिक आपदाओं, खासकर तूफान, भारी बारिश और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है। विदेश खबरों में, भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित कलकत्ता के एक होटल में आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आग आज तड़के लगी, कुछ ही समय में होटल में घना धुआं भर गया। आग लगने की वजह एयर कंडीशनर में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। बर्न वैन कार से मिली तेया में 51 साल के 51-year-old के जनाब मोहम्मद रफीक बहादुर, जो रफीक से ज्यादा जाने जाते थे और मिसन थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी माँ मिसेज रोजिदा मौलाबख्श के घर बर्न वैन कौचे मिलितिया से उठाकर कौचे मिलितिया की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए अलमा का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: RM3 Radio, Radio, Radio.

0: मैंने चांद देखा है लेकिन सारे सितारे तो आज हमारे दामन में आ गिरे हैं।
1: सुहाना सफर,
0: सुहाना सफर। तो चलिए कार्यक्रम का हमारा जो अगला गाना है वो हम रूमा शालिनी नीरव रवि देविका साकुन दुर्गा मंजुला कवलेसर उनके हस्बैंड कतीबा बंगर राधा राधे राधे आपको पूनम संभू और साथ में जयालक्ष्मी निजाम अश्विन रामबन और किंग यूजर के नाम डेडिकेट करते हैं।
2: You're listening RM Free Radio.

सुहाना सफर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विदिता के साथ सुहाना सफर, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं हमसे कि भाई ये प्रोग्राम कहाँ से चल रहा है। भाई मॉरिशस से चल रहा है और आप हमें दुनिया के किस कोने में सुन रहे हैं ये आप हमें ज़रूर बताते चले। और मैं हूँ विदिता, साथ रहूँगी मैं आपके 2 बजे तक। अब अगला जो हमारा गाना है वो हम रोशन उत्तम अशोक मंगलदास साथ में जी वैन बीरबल एलविसा रजिया खान गेटवेल सून अभिहाव दादी सीता पुपू श्वेता मामूरुद्देव और साथ में वै देही के नाम डेडिकेट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू राकेश कुमार भगवान जीन और हमारे इस कार्यक्रम में

अगला गाना हम अहमद आपके नाम डेडिकेट करेंगे जो कि मलेशिया कुआलालंपुर से हमारे साथ जुड़े हैं. सो गुड टू हैव यू इन माय शो. थैंक यू सो मच. चलिए जी यही गाना हम एस्था के नाम डेडिकेट करेंगे. एंड हाय ट्रैवल, मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, सबके मैसेज पढ़ रही हूँ. एक मिनट, यहाँ पर हंसले हमारे साथ हैं और थैंक यू. यहाँ पर गाना होगा सिंडी हरदेव के नाम एंड ऑल्सो फॉर एजे. कैसे हो भाई, आ गए हमारे प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रागिनी जी. थैंक यू. एंड साथ में ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर मधु. और थैंक यू. मंदिर में मिले थे. हाँ जी बोला मंदिर में मिले थे आपको, देखा बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. चलो जी एक गाना मेरी वेदू के लिए, उनकी बर्थडे. ओके ठीक है जी. थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा मेरी पत्नी के लिए डेडिकेट कर सकती हैं, उनका नाम है भामिनी जी. बिल्कुल नेक्स्ट गाना भामिनी के लिए हम डेडिकेट करते हैं. और साथ में ये गाना होगा आपके लिए, मेरे ख्याल से आपने नाम नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं. थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स. कृष्णा जीता आपका वेलकम है. और कौतूहल से शकुन हमारे साथ हैं. राज वेलकम. विद्या लीरू आपका भी स्वागत करते हैं. अब गाना कौन सा होगा भाई, मेरे पसंद के गीतों की बात चली तो गाना तो ये हो सकता है.

भाई हम जुदा नहीं होंगे, खफा नहीं होंगे, आपके साथ होंगे और आपके साथ गाने गुनगुनाएंगे। और यहाँ पर जब बात चली है गीतों की तो किरण प्रगास आपके लिए गाना होगा, साथ में स्टेला के नाम डेडिकेट करते हैं गाना संध्या मित्तू शिवनारायण के लिए। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच कुसकुस एंड विराज, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आपको हमारे पुराने ऐसे गाने अच्छे लग रहे हैं जानकर अच्छा लगा। तानिया सिबालक, मोहिनी, संगीता सुखारी, नुवेल फांस से साथ हैं और केमरा जोशी फ्रॉम नेपाल। तो चलिए ये हमारा गाना कैसा लगा बताइएगा हमें। जैसे मैंने कहा कि श्रीदेवी की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन कभी कभी

मौका मिल जाता है हमारे जो लिसनर्स हैं गाने की फरमाइश कर देते हैं तो चला देते हैं। चांदनी फिल्म जब आई थी तो लोग दीवाने हो गए थे श्रीदेवी जी के उन अदाओं का, उनके डांस का और साथ में उनकी जो साड़ी पहनने का स्टाइल था, वाह, रिमेंबर हर इन द वाइट साड़ी, वाह क्या बात है।

0: आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत लेकिन यहाँ पर हम सब साथ में चलते हैं ना हाँ बिल्कुल
1: सुहाना सफर
0: एक दूसरे के साथ चाहे सुख हो चाहे दुख हो जिसका दुख है उसका कम करते हैं जिसका सुख है उसको बांटकर और ज्यादा करते हैं है ना ये हमारा काम है यहाँ रेडियो मनोरंजन पर चलिए अगला गाना किरण प्रगास खनन नारायण प्रेम की तरफ से उनकी मम्मी को जो 80 ईयर्स की हो गई फरीना लता शाह थैंक यू सो मच लव यू टू एंड वी हैव विक अनिता श्वेता साथ दे रहे हमारे अंजीता हाय थैंक यू सो मच अंजीता संजना बिहारी का फेवरेट गाना है मेरी तो फेवरेट एक्ट्रेस है थैंक यू सो मच तनु एंड देविना चिकोरी देविना फैमिली के लिए गाना मांग रही हैं एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए एंड ये गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे सभी हमारे लिसनर्स के लिए संजना आपके नाम सिमी सी राम आपके लिए इनफिनाइट हाय थैंक यू सिमी सी राम वी हैव नेक्स्ट गाना हर हर महादेव आपको थैंक यू सो मच चलिए गाना होगा आपके लिए अब्दुल्ला फन से आवाज़ है रफ़ी साहब की

0: RM3 Radio.
1: चलिए गाना हम रीता देवी और रोहन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे. बच्चा आ गया हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच. यहाँ पर गाना होगा फॉर बॉम्बू से धनेश्वर, उनकी पत्नी सुनीता और देवदास फैमिली के लिए, और वहीं पे गाना होगा प्रियासी बालक के नाम.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर, सुहाना सफर प्रोग्राम आपके लिए विदिता का साथ है। और चलिए जी, यहाँ पर हम अगला गाना जो है डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे इन तमाम दोस्तों के लिए। हमारे साथ हैं विश्वनाथ प्रयाग जी, कवि किशन, इंदिरा, ब्रिंदा, सोहन, रॉबिन वुड पांडे, पांडे जी कैसे हो, वी हैव रेखा, पार्वती नोयन, सुनील बोवन, सहाय फैमिली, एंड वी हैव बेबू, गिरीश पिथिया फैमिली के लिए गाना होगा जो प्लानवास से हैं फ्रॉम रंभा जी, एंड वी हैव फरहा, मनीषा, मेहंदिनी, एंड वी ऑल्सो हैव अगला गाना जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए। आप हैं राजेश जगलाल एंड ही इज वॉचिंग अवर टिकटॉक लाइव फ्रॉम डर्बन, ओके, साउथ अफ्रीका से वो साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस। यहाँ पर मंडला, आप हमारे साथ हैं, वैसे ये रियल नाम नहीं होगा, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अश्विन एंड थैंक यू, यहाँ पर तनुषा के लिए गाना होगा, एंड ऑल्सो फॉर जी मैन, फिर से नमस्ते, क्या बात है। चलो सिस्टर नासिम, अफसाना, फिफी के लिए गाना होगा फरा की तरफ से, एंड ऑल्सो ये गाना जाएगा फॉर पत्नी के नाम, वैसे आपने पत्नी का नाम नहीं लिखा, पत्नी का नाम तो लिख देते हैं अच्छा होता। थैंक यू फरहा, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, बहुत सारा प्यार भेजते हो आप लोग। साधना मुकेश लालमाटी से साथ दे रहे हैं, और वहीं पे हमारे साथ रंजीत बिस्सेसर भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में आपको शायद ये गाना पसंद आए। हाँ आ गया, टाइम ले रहा था ना आने के लिए, आ गया। बस आज का दिन खास हो, स्पेशल हो, आज का दिन आपके दामन को खुशियों से भर दे, या जो भी टेंशन है वो दूर हो जाए, जो भी सपने देखे हैं वो साकार हो जाए। जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत सारा प्यार है हमारे पूरे रेडियो मनोरंजन टीम की तरफ से। चलिए जी, यहाँ पर रेडियो श्रीनगर भी आ गए हैं भाई, कभी कभी होता है नाम भूल जाते हैं, याद दिलाना जरा। आज बादाम खाना बन गए, भूल गई ना, इसलिए थोड़ा सा नाम वाम भूल रही हूँ, सो प्लीज रिमाइंड मी।
1: Amore mio, dove

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: किससे पुरानी यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी।
1: RM3 Radio. Radio.
0: चलिए तो यहाँ पर हमारे दोस्त सुनील चरण के नाम गाना डेडिकेट करते हैं, साथ में दिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी होगा ये प्यारा सा गाना। एंड चलो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गाना होगा फॉर ऑल माय फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फ्रीडम, ये हैं एंजल डी की तरफ से। एंड हरी चौधरी जी, राधे राधे आपको, सैंडो आपके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं, प्यार से सुनिएगा और प्यार से इस गाने को गुनगुनाते चलिए।

चलिए इसी के साथ सुनील चरण जी आपको एक बार फिर से थैंक यू. नेक्स्ट गाना शोभा बिलाल देव बी ला लेवू अमृता साधना क्विंसी सिमी शर्मा जया चिकोरी स्वरेज इनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में ये गाना होगा आपके लिए संयुक्ता धनी और साथ में यही गाना होगा आपके लिए भाई हमारे साथ करुणा भोला जुड़ी हुई हैं एंड आल्सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जया चिकोरी. तो चलिए उनके नाम डेडिकेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का ये अगला गाना. आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया बहुत साथ दिया चलते चलते ये गाना हम आपको नज़र करेंगे और इस गाने को मैं पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा. मैं आया तेरे लिए दैट्स नाज़िया हसन एंड ज़ुहैब हसन. ब्यूटीफुल सा गाना है सुनते चलिए और झूमते रहिए हमारे साथ. चलिए इसके साथ नम्रता जाने का टाइम हो गया है. अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल. आपसे बहुत सारी बातें करनी है. कल मिलते हैं फिर बात करते हैं.

0: घड़ी मिलाते चलिए इस समय शाम के 2 बजे हैं
1: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार
2: नमस्कार नीलमणि सभी को हमारा नमस्कार हमारे जल भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं कल मऊ फाकुआ जलाशय की

0: पहुंच आती हैं। सितंबर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की खरीद के बाद ये क्षमता बढ़कर 150,000 क्यूबिक मीटर हो जाने की उम्मीद है। किसानों और पशुपालकों को कृषि में आधुनिक और स्मार्ट तकनीकों के इस्तेमाल में सहायता देना यही प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत परियोजना की कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 2 मिलियन रुपए है। इस नई सहायता योजना की शुरुआत कल अंग्रेजी में कृषि उद्योग मंत्रालय और फागई ने संयुक्त रूप से की। आज 19 अगस्त को विश्व मानवीय सहायता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल ये दिवस मानवीय सहायता कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की गंभीर स्थिति के बीच मनाया जा रहा है। मॉरिशस में विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने मानवीय सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये मुद्दा मॉरिशस के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को प्राकृतिक आपदाओं खासकर तूफान, भारी बारिश और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है। और विदेशी खबरों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर बने एक नए विशाल गड्ढे की तस्वीरें जारी की हैं। ये गड्ढा इस महीने की शुरुआत में स्पेसएक्स रॉकेट के चंद्रमा से टकराने के कारण बना था। नासा के वैज्ञानिकों ने परछाई की लंबाई के आधार पर अनुमान लगाया है कि ये गड्ढा लगभग 60 फीट चौड़ा और 10 फीट से कम गहरा है। इस रॉकेट को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था जिसने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। बनवेन कौचे मिलितिया में 51 साल के 51 ईयर ओल्ड के जनाब मोहम्मद रफीक बहादुर, जो रफीक से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी माँ रुजिदा मौला बख्श के घर बनवेन कौचे मिलितिया से उठाकर कौचे मिलितिया की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: RM3 Radio. Radio.
4: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
5: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हमें अरविंद साथ में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू तुकु की आज हमनी के कार्यक्रम तैयार करे में हमनी के सहयोग दुआ थुआन बहुत स्वागत बात लोग के। और जैसे जनबे करेला हमने के जो कार्यक्रम है धरोहर के सरोवर ई मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक विभाग दिने से तैयार करल जात बा। तो लोग के बोली राजा फिर से बोला थी जा कि मॉरिशस में भोजपुरी के पढ़ाई होता कहाँ पर ही होता तो लोग के बताए ना जा। देखा अभी हम के बैठका लोग में लड़का लोग के भोजपुरी सिखावल जात बा और हमनी महात्मा गांधी संस्थान देने से कोशिश कर लजा कि जो सामग्री चाहेला उ सामग्री तो लोग के तोहर तक सकब जा पहुंचाई अये जाहे जा परी अध्यापक लोग अध्यापिका लोग तो लोग के सकब जा सामग्री दे तो अपन लड़का लोग के सकब जा सुनाए सकब जा पढ़ाए ताकि तनी तनी तनी लोग भोजपुरी सीखबे करी। अब ये देखा हमारे हाथ में भी एगो पुस्तक चला, ये पुस्तक के नाम है भोजपुरी टीचर्स हैंडबुक स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1 यानी ग्रेड 1 के लड़का लोग खातिर

पुस्तक तैयार करल गल बा जो टोलो के लैका लोग खातिर बहुत काम आए। चलते हम धन्यवाद देवब सब टीम के जो लोग ये पुस्तक तैयार करे में हमनी के सहयोग दिल हो जा, जैसे कोऑर्डिनेटर हम और दाव सिंह जी रहलन, जय गणेश हमी के पैनल में रहलन जा, डॉक्टर मिसिस भगत राम याद गौतमी, डॉक्टर हेमराज सुंदर, डॉक्टर लाल बिहारी जयचंद, डॉक्टर संध्या आंचराज, फिर साथ में श्रीमती जिंगन योगेश्वरी, लोडा ब्रिजलाल जी रहल, चंद्रदेव ओबिलक, लालधन सिबुआ जी रहलन जा, इस सब मिल के एक पुस्तक तैयार करल गल बा। और एकर में जो उद्देश्य बा कि लैका लोग के धला भोजपुरी से अवगत कराए के, अब एकर में जो पहल का पाठ ही जो बा चंदा मामा जन्मे करेला, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, तू खैबा थाली में हमरा देबा प्याली में, प्याली गल टूट मामा गल रूट, प्याली लेलन औरू मामा ऐलन दौर, एगो गीत बा साथ में एगो लोरी भी बा। इत जन्मे करेला, रे चंदा मामा आरे आव पारे आव, नदिया किनारे आव, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आव, बबुआ के मुआ में घुटूक, सोजा बाबू सोजा, सोजा बाबू सोजा। इतना चलो के बोलत है जा, एकर हमनी ऑडियो भी तैयार कर ले जा, एकर ऑडियो जो लैका लोग के सब बजा सिखाए सुनाए, और एकर कैसे बोला जाए संजो ओकरा कराओके उकर खाली उकर म्यूजिक रहे उकर संगीत रही तलैका लोग सकेंजा गाय। तैसे वार्षिक उत्सव रही कोनो ऐसा कार्यक्रम रही त सगबजा ई लैका लोग के ई सुनाए ई गवाए। त ई आज हमी के कार्यक्रम लगभग ई पर केंद्रित करब जा कि कौन ची सकब जा हमी अपन लैका लोग के पढ़ा जब भोजपुरी पढ़ावत है जा। कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा, गीत सुनब जा, फिर मुलाकात हुई फिर से।

0: RM3 Radio. Radio.
1: अभी चर्चा कर रहे थे जब भोजपुरी पढ़ाई के लड़का लोग के खास तौर पर कम उम्र के लड़का लोग के तो जो पुस्तक महात्मा गांधी संस्थान में तैयार होल बा एकर में एक दुगो कहानी भी बा सिंह और चूहा के कहानी साथ साथ में एक दुगो कविता एक दुगो एगो सुन ला जाए जा लड़का लोग के धला जब बताए खोजब शरीर के अलग अलग अंग कोची है तो एक में एगो बा चलक हिले सुन सुन तक ऐसे होला सुन सुन सुन कान से सुन तई जब लड़का लोग के जब ई बोलब दोहराए के तो लोग के बोलब लोग के कान पकड़े के तो लोग जानी कि कान माने हमने के कान फिर बोलबा देख देख देख कुछ से देख संजू कुछ से देखबा आंख से देख देख देख देख आंख से देख बोल बोल बोल मुंह से बोल गिन गिन गिन कुछ से गिनबा उंगली से कैलकुलेटर से नहीं गिन गिन गिन उंगली

0: से गिन, दे दे दे हाथ से दे, चल चल चल गोर से चल। तो ई सब लैका लोग जाने गोर को छीह, हाथ को छीह, उंगरी को छीह, मुंह को छीह, आंख को छीह, नाक को छीह। तो ऐसे लैका लोग सकें दास सीखे थे ई कविता बा ई पुस्तक में। हयू में वो खेल के वो गीत बा, हाथ ल हाथ द। ई सकबजा लैका लोग के धला लोग के अलग अलग तीन चार गो लैका लोग रही, वो लोग के बुलबुल के हाथ लेके से हाथ ल हाथ द। आवा घेरा बनावा, आवा घेरा बनावा, घेरा माने इसे गोल करके, तो घेरा शब्द जान जी अंजा। आवा घेरा बनाए बनावा, नाच गावा खुशी मनावा, हाथ खोला हाथ छोड़ा, जोर जोर से ताली बजावा। देखो खेल हो गल, लैका लोग की बोलबा आवा हाथ में हाथ, आवा घेरा बनावा, नाच गावा खुशी मनावा, हाथ खेला हाथ खोला हाथ छोड़ा, जोर जोर से ताली बजावा, ताली बजावा। इसे के कुनल हिरीलाल के वो गीत या चला ताली मार, निकालो खुशी रे लाई गीत ताली मार। तो ई हमने याद चर्चा कर थी जा ई पुस्तक पर जो लैका लोग खातिन बनावल गलबा भोजपुरी के। इकर में चंगन मैंगन के गीत भी बाजाने ला, चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा, भला बाम्बू में डिगरी डाले पानी नहीं बा, चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा।
1: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: ते जोन गीत सुनना जा चंगन मैंगन पानी भरे ई भोजपुरी इंस्टीट्यूट देने से तैयार करल गरहल और जब हम के ई पुस्तक तैयार करल गल लैका लोग के त एकर में एक गीत शामिल करल गल ई इरादा से कि ई गीत आप लैका लोग के सुनई बजा एकर में ढेर कुछ सकी हुई धला लैका लोग के जे खुजत हुआ पानी के महत्व के प्रति सतर्क करके त है गीत वा सब सुनाए और खेल खेल में बहुत कुछ सकी हुई तम के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में भर सक कोशिश करब जाकि लैका लोग हथिन नौजवान लोग हथिन तनी तनी भोजपुरी से संबंधित बहुत कुछ अंते रहब जा त इसने महात्मा गांधी संस्थान में ई एगो पुस्तक तैयार करल गल बा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह एन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ भोजपुरी पोएम्स ऑफ मॉरिशस गैल हलाइकर में से एक दुगो कविता ले रहे जा आज भी एक दुगो कविता ले जा प्रसिद्ध कवि मॉरिशस के जो महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रहलन डॉक्टर हेमराज सुंदर और जो हम के भोजपुरी पैनल में भी रहलन उनकर तीन गो कविता बा है, है पुस्तक में है कविता संग्रह में सुनिए जाए कविता कविता के शीर्षक है बोल बोल के भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी ना त उ लोग के दुकान ना चली ये तो सच बात बा आली लोग को दुगो चिनवा उ लोग भी भोजपुरी बोलत संजा नहीं बोलते ना लोग के बुतिक नहीं चलत फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली फ्रीमैन नागाव के चर्चा करत हुन फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली जीरो से हीरो बनलन गा गा के गीत भोजपुरी माने पहले उकरा ढेर कोई नहीं जानत लन ई गीत जब गैलन तब बहुत ही लोकप्रिय होइलन डॉक्टर हेमराज सुंदर आगे लिखले हवन सोना रंभा हरी सब घूमलन जा देश परदेश गा गा के गीत भोजपुरी रेडियो टीवी हो या पॉलिटिकल रैली सब में सुने के मिलत बा भोजपुरी बोली बोल बोल के ही भोजपुरी बोली मिलल बा हमनी के आजादी बड़ी सुंदर कविता ई डॉक्टर हेमराज सुंदर लिखले हुवन ई कविता संग्रह में उनकर एगो और कविता बा तू कौन खेत के मूली चिनुआ बोले भोजपुरी मौला बोले भोजपुरी क्रिश्चियन बोले भोजपुरी हिंदू बोले भोजपुरी सबके सब बोले भोजपुरी तू काहे बोले ले नहीं भोजपुरी तू कौन खेत के मूली बहुत सुंदर बा और एगो एगो भोजपुरी शनिका डॉक्टर हेमराज सुंदर के भोजपुरी कविता सब कोई सुनलक न कोई थपरी बजेलक न कोई देलक दाद बांदर का जानी भला अदरक के स्वाद हेमराज सुंदर जी के लिखल ई तीन गो कविता और साथ में एगो शनिका त देखला कितना सुंदर सुंदर कविता बनेला भोजपुरी संगे भोजपुरी साहित्य ही के लिए

मॉरिशस में ये बहुत ही लोकप्रिय बा। वैसे हमने के जो लड़का लोग सर्टिफिकेट इन भोजपुरी स्टडीज करेलन जा या महात्मा गांधी संस्थान में वो लोग के दुगो मौजूद है, एगो भोजपुरी साहित्य के इतिहास और एगो मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य। कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा,

0: RM3 Radio.
1: प्रेमेन नागा बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी गायक, भोजपुरी में गीत गेले हुन बहुत बड़ा बात है। लाली लाली कान पलौतल सीमा में मकई, भोजपुरी के गो खूबसूरती ई भी है जे उ दूसर शब्द के अपन शब्द बना लेवेला। एकरा जैसे बोला से को पिजिन बोला जाए, एकरा गो धलब भाषा के जब गो खिचड़ी बनेला तो एक दुगो शब्द चलावेला इधर। अब जैसे प्लौतल, प्लौतल शब्द जनबे करेला, प्लौतल बोला प्लांटे के, और ई प्लांटे शब्द से निकल बा टू प्लांट इन अंग्रेजी में एकरा बोला जा, तो भोजपुरी ओकरा प्लौतल बना देलक। दम्बोर दम्बोर दम्बोर दम्बोर एगो बात बोले जाना कि मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लौतल बा, भोजपुरी बतियानी परिकर में ऐसा ढेर शब्द बा जो क्रियोल भाषा से आल बा पर ओकरा भोजपुरी में मिला दे ले जा। यह भाषा के खूबसूरती और धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में जन्मे करेला हमने भोजपुरी के कोनो ना कोनो चीज लेके आए ले जा, तो लोग के वो कविता के रूप में हो, वो कहानी के रूप में हो, जैसे भी चला ई लगे हाथ एगो छोटा सुन भोजपुरी किस्सा सुन ले जा।
2: एगो देश में एगो राजा रहल, उ राजा के सात गो रानी रहल, धन दौलत बहुत रहल, ओकर एको बाल बच्चा नै रहल। त जब आवे दान देवे सब भिकमंगा लोग के बात बोली, दान दे के का करब, हमरा सात गो रानी बा, एको बाल बच्चा नै बा। भीख मंगवा लोग के बड़ी चोट लगल, ओकर दिल दुखा गल, हमनी गरीब दुखिया आदमी भीख मांग के जिही लास। तब वो भीख मंगवा वन में गल साधु के खोजे, जब साधु सुनलक बात ऐसे ऐसे बा, कौन दिशा में वो रजुआ बा, हम रजुआ के जाय भेंट करे। तब साधु आल आके जय मनैलक, सब रानी लोग निकलल। तब राजा के बोलन स उ आल बा ओकरा दान देवे के, साधु के बाद बोले लगल कि हमरा घर में बाल बच्चा नहीं बा, हम दान देके कौन ची करब। तब साधु बोललक नहीं तर कासे हुआ, कोनो चिंता के बात नहीं बा, बाल बच्चा होई। तब बोललक जा तोहर बगीचा में एगो गाछी बा आम फरल बा, जा अमवा तोड़ के ले अन्य। राजा जाके अमवा तोड़ के अनलक। तब साधु बोललक है अमवा लेके सातो रानी के दे के कि उ बाट के खा ले, सातो रानी के आम मिलल खाए की। ई में छो गो रानी निमन से अमवा खैलन स अपन में बाट लेलन स, छोटकी रानी के नहीं मिलल। तब पूछलक अमवा कहाँ बा, उ लोग बोलन स हमनी खा लेली स, लापो फेकल बा घूरा में। गांव में सर्द के मौसम में आग जलावे खातिर इकट्ठा करल गल खर पत्ता सालते, छोटकी रानी जाके घूरा में से उठा के बैठ के उ लापो खैलक। अब साधु बाबा त चल गल इतना बोल के, अब नहीं आवब तोहर महल। संतान चल आए त अब भारी गोर से हो गल छोटकी रानी। राजा दूर में काम काज करेला, राजपात चलावेला। अब सोना के और चांदी के घंटी टंगावल गल और बजावल गल। जब बाबा होई त दौड़ल आए राजा, हकासल प्यासल।

दौड़ल आयल राजा कि हमर रानी के बाबा होई। तब उनकर छओ रनिया बहुत दुख देवे लगलन सा। छोटकी रानी पूछलक कि बाबा कैसे होई। उ लोग बोलन सा कि ओखरी मुसर में मुरिया ढुकैब त बाबा हो जाए। छोटकी रानी के तब एगो बेटा और बेटी होल। ई छओ गो रानी लड़कवन के मरमिट में भर के ले जा के घूरा में फेंक दिलन सा। त एगो ईंट एगो पत्थर उठा के रमास के आन के लपेट के रख दिलन सा और घंटा बजा दिलन सा। अब घंटा बजल राजा दौड़ल आयल। तब बोलन सा तोहर रानी छोटकी रानी के एगो ईंट पत्थर होल बा। तब राजा बोले उफ ईंट पत्थर होल बा ओकर सब बार मुंडली कर द और ओके विदा कर द चिरई लखेदे के धान कारो में होइजे मरई में रही। तब छोटकी रानी कौवा हकनी बन गल चिरई के लेखा दे और होजे खाय उई के ले जा के देवत रहलन सा। तब एगो कुम्हार और कुम्हारिन अइलन सा माटी खोने। माटी खोदलन सा त देखत वन सा दूगो लड़का घूरा में रोवता। उठा पुठा के ले गइलन सा त पोसे लगलन सा। माँ बाप उ लोग हो गइलन सा कुम्हार और कुम्हारिन। पोसते पोसते धरल होइलन सा 7-8-9 बरिस। अब सीमा में खेलत होवन सा लड़कवन। तब सीमा पर है छह गो रानी लोग पासे होत रहलन सा। तब छोकरिया बोललक सुपली मौनी चाउर फटके। तब रनियन लोग गारी देलन सा कि सुपली मौनी चाउर फटके कब। तब लड़कवन बोललन सा त रानी के ईंट पत्थर बियाला। उ लोग के ई बात बड़ी करा लगल। जान गइलन सा कि ई लोग छोटकी रानी के लड़का भवन सा। तब अब जाके खटवास फटवास लेलन सा न खात होवन सा न पियत होवन सा। त अब राजा पूछता का भल कोनो चीज लेब काहे नहीं खात होव जा। हमनी नहीं चाही बोलन सा हमनी नहीं चाही। कुम्हार और कुम्हारिन लगे दू गो लड़का बा ओकर करेजा निकाल के आन देब त ओकर से नेहा के अच्छा हो जाब सा। तब राजा कुम्हार कुम्हारिन लगे सिपाही के भेजलन। बोललक जल्दी से लड़का लेके आय के। तब लड़का लेके अइलन सा। राजा बोललक हमरा चाहे दोनों लड़का तू लोग जा जा। अब जल्लाद के बोललक जा ई लोग के लड़कवन के मार के करेजा आन के छह गो रानी के दे देवे के। जल्लाद लोग लड़कवन के लेके गइलन सा जान मारे दूर नय ले गइलन सा जहाँ राजा के तखत बा सामना सामनी में जान मारे के जमे लौकी कहाँ मार के तोपल गल बा। तब एगो बाएं और एगो दाएं और लड़कवन के सुतैलन सा। त दोनों के जान मार के उ लोग के करेजा लियान के देलन सा। रानी लोग उ पानी से नहैलन सा। त राम राम कर के उठलन सा छओ रानी अच्छा हो गइलन सा। त अब हुआ जहाँ लड़कवन के गारल गल बा दोनों एक एक गो फूल गइलन सा। अब हुआ जहाँ लड़कवन के गारल गर रहल दोनों एक एक गो फूल हो गइलन सा। ऐसन महकता गमकता दूर ले रोज राजा आय ताके बैठी। तब बहुत सुंदर फूल के गमक आवी। सब सिपाही लोग के भेजलक खोजे के कि कहाँ से ई फूल के गमक आवता जाके तोड़ के आने के। अब तुरे गइलन सा। अब गइलन सा फूल तुरे तब फूलवा अब दोनों बतियाता।

0: होना।
1: गांव के जितना आदमी बा सब के राजा बोललक, फूल आने के जे आनी आधा राजपात ओके दे देवब, तब सब कोई गांव में के फूल लोरे जाता। तब कुम्हार और कुम्हारिन गयल।

राजा के ऐसे बुझाल कि ओकर गोर भीरी लगे अइलन स, जैसे बुझाता कि गोदी में लेलक लैकवन के त लैकवन उड़ गइलन स, तब चल गइलन स। तब राजा बोले, जा सिपाही लोग कौवा हकनी के बोला के आने की। तब कौवा हकनी बोले, काहे हमके बोलावत वन स। त राजा बोले, बा तोहरा हाली से आवे के। तब राजा लगे गए। तब राजा ओके बोललक, तोहरा हाली से आवे के जा फूलवा लोरे, फूलवा गमता, फूलवा लोर के ले आना। अब गए कौवा हकनी फूल लोरे।

0: ना।
1: दारे पाते अपन माँ के गोदी में समा गयलन सा। तब हौजे से राजा बंबू कनात तनैलक अपन घर महल तक ले। सभा लोगन अयलक, सब आलम जुट गल और देखलक। अब सात परात के तवा बंधाल उ लोग के माँ के छाती पर कि ओकरे लैका होवन सा कि नहीं। नहीं होय त जानाई, उ होय त छतिया परे ओकर दुधवा उ तवा के पेड़ से कर के लैकवन के मुंह में जाए। तब दुधवा उ पार कर के धनाधन लैकवन पीलन सा। तब राजा पतियाल कि ओकरे लैका होवन सा। तब कौवा हकनी अपन महल में गयल। तब राजा जल्लाद के बोलक, तब छओ रानी के बार मुंड के दही उझिल के घर में से निकाल देलक। साधु के देवल फल रहल त छओ रानी मुआ दिलन सा। त कहां मरी साधु जानता कि का होकी। जय राम जी की।

धरोहर के सरोवर कार्यक्रम सुनत हुआ जा महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से तैयारी कार्यक्रम आज हमारे अरविंद और साथ साथ में हमने के सहयोगी संजू साथ देवत हुआ न भोजपुरी के ई प्रक्रिया में आज फिर से तो लोग के हमने के जो स्वर्गीय दीमराला मोहित जी के पुस्तक बाग वो शब्द कोश तैयार कर ले हुआ हीरा मोती भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी शब्द कोश एक में से एक दुगो शब्द लुअब जा और आप जनब इस शब्द के अर्थ कौन सी है तो अ से ही शुरू कर ले जा अ तो एकर में एगो शब्द आलबा अंकलक अंकलक अंकलक यानी कलंक लगाए के दोषी ठहराए के एक्यूजेशन कब कोई बोले अंगना जात है अंगना जात है शौचालय जाना शौचालय संजू का बुक कोई बोली अंग्रता अंग्रता कौन सी अर्थ निकलेगा हमार गोर अंग्रता दुखाता हाँ दुखाता अंग्रता तो टू मच पेन दुखाता ई डॉक्टर लोग के इस शब्द चहना बोले के डॉक्टर नर्स लोग के कहे कि कब हमी के दादा दादी लोग जानन जा कबू अस्पताल में डिस्पेंसरी में तब बोली रंजा ले हमार गोर अंग्रता बीता डॉक्टर बेटा जानी अंग्रता तब न जानी कुछ करी

नहीं तो नहीं जाने गोर को चेतो कपार में लगी दवाई दे दे को कपार की तो जरूरी है ये सब जो भोजपुरी शब्द है डॉक्टर लोग के नर्स लोग के चहला जाने की अंगरता ई सुन लो ही अंचितले में टूथ स्वीट हाँ अच्छा बोल लक अंचितले में माने झट से एकाएक सडनली अंचितले में वो होता से निकल गल हाली से निकल गल अंगोरा यानी फायरबॉल फुटबॉल में कब बोला जाए ना कब एगो टीम एगो दूसर टीम के ऊपर पर चार पांच को गोल डालता तो बोले जा अंगोरा फेंकदवा अंजोर शब्द जनबे कहला फजीर के बोला जा अंजोर होगल उजाला होगल लाइट अंजोरिया चांद के जो प्रकाश बा मूनलाइट अंजोरिया रात वो बोले जा ऐसा रात जहां पर ही चांद के ऊपर प्रकाश मिलेगा अंजोरिया अंटी यानी समाएगा विल इट एंटर एक में और एक दो शब्द ले अब जा अंटकल टू ब्लॉक या फिर अटकगल बुझ सकते बोले अटकगल ओकर गला में मच्छी के कंटा अटकगल मच्छी के कंटा हो कभी राजा कंटा हो जो हाउ ए जो नहीं खा जाला क्रियोल में क्या बोले जाओ करा हाँ ओकर पीका मच्छी के पीका मच्छी के कंटा गला में अटक गल फिर एगो और शब्द ले अनबन बा यानी दूजना में अनबन मान एक दूजना के बात नहीं मानत हो जा अन के बन कोई के नाम हम अन के बन कब कोई इधर उधर बचियाला तो ओकर नाम डाल दिया जा अन के बन हम जानी रहे जना के उनका नाम अन के बन अभी सुनत हुई तो नमस्ते बोल दिला प्यार से बोलन जाओ प्यार से अंड भंड कर दिलक यानी तहस नहस अनभंड या फिर ई भी बोला वो अनभंड बचाता अनभंड माने वो कोनो मतलब नहीं नॉनसेंस बचाता अनभंड बचाता इस शब्द सुने अंदर से देखो बोले जा घर के अंदर बाऊ तो आरो को अर्थ अंदर दूसर का अर्थ जाने ला अंदर एगो अंदर तहा जिसे घर के अंदर बा हाँ जो बाहर के ऊपर उका विलोम है अंदर तो औरो को भोजपुरी में को अर्थ अंदर के अंदर महकता जब कोनो चीज सर जला तो कैसे महकेला अंदर महकेला अंदर हाँ दुर्गंध बैड स्मेल अवे और अंतराल यानी मध्यांतर इंटरवल कोई बेला वो अंटी करता अंटी यानी जानबूझ के कुछ करता अंधरा हाँ अंधरा एगो जो न जो कि नहीं रोकेला अंधार तो जन भी कहला अंधार जब रात के अंधकार होला तो अंधार अंधुआ हरबरी में होना टेक क्विकली अंधेरिया दू अर्थ व्यर्थ विदाउट रीजन या फिर अंधेरिया रात ऐसे अकज बकज एकरा दुगो अर्थ में कब्जा ली जे कोई बोली अकज बकज नहीं खाइए जो चीज आई खाते नहीं जाइए इधर उधर की चीजें अकज बकज या फिर भी कब्जा बोले अकज बकज बचाता वही नहीं था कुछ बचाता अकज

0: बकस बचाता। अगबका गई ली, अगबका गई ली, यानी नहीं जानता कुछ हुई थला वो नई आशा करत हल कि ओकर संगे ई होई तो अगबका गल तनकु नहीं जानता कुछ करी और वह अकेले दुकेले माने अपने अखा मोर्चस जाने लंजा कि धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के संजू भाई सहायता देवे लंजा अखा होल अखियान निरखना टू एडमायर अग्रम बग्रम है हम सुन ले ही चाचा लोग के दादा लोग के शब्द के प्रयोग करे अग्रम बग्रम तरह तरह के अग्रम बग्रम के खाए के हजार रखल बा अग्रम बग्रम के बुला ले बा धला चौथारी में बोले 20 जना आई तो वो एक 20 आदमी आन दिलक अग्रम बग्रम के लेके चला अंग्रता यानी बहुत दुलार से बिगाड़ना अंग्रता अगम जानी इधर कोई है अगम जानी फोटेला जो नागे से बोले बोला जा हाई होई हाउ होई अगम जानी अगाड़ी आगे आगे अग्याल बा उत अग्याल बा आग उगलता अग्याल बा माने टू बी एंग्री क्रोधित होना अगोरी देखे के साथ बैठना अटक गल ये बोली सा नहीं अटक गल अट ये बहुत प्रयोग हो भाई जब धला कुछ नहीं जान सो कुछ कर बता अट नहीं कर सीधे काम पे आओ वो कर संगे अट नहीं कर लग फिर अदब से यानी इज्जत से अदब से अधीन में यानी वश में उकर अधीन में चलालबा छोकरी के अधीन में चलालबा अंडर वन्स थंब अन के कन बना देलक यानी उकरा बिगाड़ देलक तेकरे संगे धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के जा परी पूरा करब जा सब कोई के धन्यवाद दुआ जा जितना कोई हम के कार्यक्रम सुनला जा और सीखला जा बहुत कुछ हमने के सहयोगी संजू के धन्यवाद फिर मिलब जाए गो नवा कार्यक्रम लेके धरोहर के सरोवर तबले भोजपुरी बोलते रहिया भोजपुरी सीखते रहिया
1: RM3 Radio.

0: आज की चर्चा कार्यक्रम बिल्कुल आज बुधवार का दिन है, 19 तारीख अगस्त महीना, और मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर। इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारित किया जा रहा है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, MBC के तीसरे चैनल पर, और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हमारी टेक्निकल टीम पर इस वक्त हमारे साथ है कादिया, और साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा बानो और प्रोड्यूसर जिनेश। बिल्कुल आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर। वैसे हमारे श्रोताओं को हम ये बताते चले कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आज बहुत आगे निकल चुकी है, हालांकि ये एक भारतीय प्राचीन पद्धति है जो आज एक अलग स्थान, एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर लोग प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते हैं, और बिल्कुल इस पर बहुत रिसर्च, बहुत कार्य किए जा रहे हैं, और आज जहां पर हम विश्व भर में एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो बिल्कुल आए दिन हमारे समाज को खोखला कर रही है, बिल्कुल हम बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान की जो पद्धति है, इसमें किस तरह से हम प्राकृतिक चिकित्सा का समावेश कर सकते हैं जिससे कि हम एक स्वस्थ वर्धक जीवन जी सके। आज हमारे साथ है जुड़ेंगे डॉक्टर विनय सी तिजोरी जी, जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपको भी नमस्ते और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते।
0: और आज हम होलिस्टिक मेडिसिन, बिल्कुल होलिस्टिक मेडिसिन जो अल्टरनेटिव थेरेपीज के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा को मायने देता है, आज इस पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर जी, जिस तरह से हमने आज का शीर्षक रखा है कैंसर, तो कैंसर क्या है और इसको मतलब आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे?
1: ये कैंसर मानव शरीर में पाए जाने वाले असाधारण या असामान्य सेल्स हैं। यह सेल्स असाधारणतया बढ़ता है।
0: अच्छा।
1: और मनुष्य के शरीर में

0: 100 बिलियन सेल्स है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, 37 सेल्स जो प्रतिदिन मरते जीते हैं और आदमी को, मानव को स्वस्थ रखता है ये सेल्स ही
1: इमेजिन है। हाँ।
0: जब सेल्स गड़बड़ हो जाता है तो बिगड़ जाता है तो ये जो बीमारी है कैंसर का ये पैदा हो जाती है।
1: अच्छा, मतलब वो फैलने लगती है फिर, और जैसे आप बता रहे हो कि सेल्स के माध्यम से वो बढ़ती चली जाती है।
0: हाँ, यही सेल्स के गड़बड़ होने से शरीर में चूमेर और फाइब्रोड पोलिप सिस बन जाते हैं, या तो वही बीमारी स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री और स्टेज फोर में पहुंच जाते हैं, जिससे रोगी को बहुत तकलीफ होती है कैंसर से।
1: तो डॉक्टर जी, कैंसर कितने प्रकार के, जैसे आपने अभी नाम तो लिया बट आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं?
0: वैसे तो कैंसर 200 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें ये सब मुख्य है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्विकल कैंसर, स्टोमक कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, माउस कैंसर आदि आदि, ये सब 200 प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं।
1: तो डॉक्टर जी, थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे कि कैंसर होता कैसे है, कैसे शुरू होती है और कैसे, इसके कारण क्या क्या है?
0: ये कैंसर पैदा होने के कारण, जिनमें मुख्य कारण ये है, अधिक बीड़ी सिगरेट पीना, अधिक अल्कोहल की प्रयोग करना, फिर मोटापा, कोलेस्टेरोल, असंतुलित भोजन करना, फास्ट फूड खाना ज़्यादा से ज़्यादा, और जंक फूड खाना, ज़्यादा मांस मछली का सेवन करना, और व्यायाम न करना, और योगा न करना, बैक्टीरिया से भी उत्पन्न हो जाता है, और हार्मोन डिबैलेंस, कैसे बोलते हैं, एनवायरनमेंट, जलवायु का गलत होना, अब बहुत से लोग प्लास्टिक और एल्युमिनियम का बर्तन और जो ये बोतल है ये सब प्रयोग करते हैं, फिर रिफाइंड फूड है, रिफाइंड तेलों का प्रयोग करना, अच्छी नींद न आना और स्ट्रेस ज्यादा पैदा होना आदि आदि अनेक कारणों से ये होता है।
1: काफी सारे फैक्टर्स हैं जिससे कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो है हमारी जीवन शैली में गिनी जाती है, जैसे हमें अनगिनत खानों की पद्धति के बारे में है डॉक्टर जी ने हमें बताया, और नींद ना लेना, तनाव का बढ़ते जाना, प्लास्टिक का सेवन हद से ज़्यादा होने लगा है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम जैसे बर्तनों का सेवन भी, जिस पर बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ों का सेवन किस तरह से, किस ढंग से किया जाता है, किस मात्रा में किया जाता है, और ये अगर अधिक से अधिक मात्रा में हो तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कैंसर होने के संभावना जो है उसे बढ़ाने में बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बढ़ा सकती हैं उन सारी संभावनाओं को। तो डॉक्टर जी, यदि शरीर में कैंसर के कारण किसी प्रकार से कोई ट्यूमर हो जाता है, किसी प्रकार से कोई गांठ हो जाती है, तो क्या ये, मतलब इस पर पहले जाने से पहले हम जरूर जानना चाहेंगे डॉक्टर जी कि कैंसर के जो लक्षण है बिल्कुल, मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जो ट्यूमर बनने से पहले, मान लीजिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि कैंसर जो है वो कई बार एसिम्प्टोमैटिक, यानी आप एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शरीर में कैंसर हो चुका है, और ये काफी देर के बाद हमें लक्षण देना शुरू करता है। तो डॉक्टर जी, कैसे पता चले कि
0: अचानक शरीर में कमजोरी आ जाना,
1: अचानक से
0: आप खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन हो सकता है दिन में या रात में वो शरीर, पूरा शरीर में कमजोरी आ जाती है, फिर कमजोर और थकान महसूस होने लगता है। जब हम सोकर सवेरे उठते हैं तो लोग बोलते हैं लेकोपिक कासे,
1: जैसे दर्द, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में
0: अचानक, अचानक

0: अपने आप, फिर शरीर में गांठ हो जाना कहीं पर भी, सिर में, छाती पर, पेट में, पीठ में, कहीं पर वो गांठ बन जाता है और वो गांठ के कारण सूजन लियोफली,
1: जैसे सूजन दर्द रहता है उस जगह पर,
0: वो दर्द होने लगता है। फिर शरीर में असामान्य दर्द होता पैदा होने लगता है, वो इतना दर्द पैदा होता है कि आपको असहनीय हो जाता है।
1: अच्छा।
0: आप सह नहीं सकती है। फिर त्वचा में परिवर्तन, आप देखेंगे कि वो जो लापू है उसमें सफेद सफेद हो जाता है, छोटा छोटा
1: दाना जैसे
0: दाना दाना वो निकल आता है। फिर मल, पेशाब में खून आना, जब आप पखाना जाते हैं तो वो पोटी में, पोटी यानी पखाने में,
1: हाँ।
0: वो अचानक वो उसमें खून थोड़ा थोड़ा आने लगता है। फिर लंबे समय तक छाती में खांसी रहता है, तुसे वो बना रहता है। फिर गले में खराश हो जाना, आप चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, जब निगलते हैं तो वो खराश, वो
1: आपको दर्द होता है गले में,
0: पैदा होता है। फिर बैठे बैठे चलते चलते या वो लिस्काली चढ़ते हुए पेगों जब चढ़ते हैं,
1: हाँ।
0: तो आपका सांस फूलने लगता है। फिर पाचन में गड़बड़ी, आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वो साधारण से पच नहीं पाता है। और रात के समय अधिक पसीना आना, अब बैठकर टीवी देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अचानक पसीने आने लगता है, तो इसका लक्षण है, ये लक्षण है कैंसर का। अचानक वजन कम होने लगता है, आप 50 किलो का है तो अचानक आप सप्ताह में देखेंगे आप 45-40 का हो गया है,
1: मतलब
0: तो
1: एकदम से ड्रास्टिकली आपका जो वजन है कम होना शुरू हो जाता है,
0: होने लगा है। तो ये सब अनेक ऐसे कारण है जो आपको कैंसर की बीमारी पैदा कर सकती,
1: मतलब
0: है।
1: ये सारी लक्षण, हाँ, जो है, हाँ, वो आपका ध्यान केंद्रित कर सकती हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि जो भी लक्षण हमें डॉक्टर जी ने बताया ये कैंसर ही हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहां पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इस पर कोई भी मतलब आप नज़रअंदाज ना करें, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं लक्षण हो सकता है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ ये एक ऐसा स्टेज है, जैसे हमने शुरू में कहा और कई सारे हमारे वरिष्ठ जो डॉक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं इस मंच पर बता चुके हैं कि किस तरह से कैंसर जो है वो एसिम्प्टोमैटिक, बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिसका कोई सिम्टम नहीं होता पर जब सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप के हाथों से मतलब समय निकल चुका होता है। बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि तीसरे या चौथे स्टेज पर पहुंचने के बाद आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और जैसे डॉक्टर ने अभी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें गिनवाए, ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि हो सकता है कि आपका शरीर कैंसरियस बन चुका है, कहीं ना कहीं आपके शरीर में कैंसर के जो सेल्स हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं कैंसर पर, कैंसर कैसे होता है, कैसे फैलता है, और अगर हम एक स्वस्थ वर्धक जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन शैली में कौन सी ऐसी बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है जिससे कि हम आगे चलकर भी एक स्वस्थ वर्धक जीवन जी सके। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहें, बिल्कुल 9:30 बजे के बाद अगर आज के इस कार्यक्रम में कोई भी ऐसा सवाल आप पूछना चाहते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा को लगकर है, ध्यान रहे प्राकृतिक चिकित्सा या होलिस्टिक मेडिसिन को लगकर है, तो आज के इस कार्यक्रम में आप भी ज़रूर अपने प्रश्नों को तैयार रख सकते हैं 4028085 पर, परंतु 9:30 बजे के बाद। तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि कैंसर जैसे बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और कैंसर हो जाने के बाद तो बेशक हमें डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़नी ही है, पर हम किस प्रकार से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ों का सेवन हमें करना है, किन बातों का हमें अधिकतर ध्यान रखना है, क्योंकि आज का जीवन सभी के लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से भरा हुआ है और जहाँ पर प्रतियोगिता बिल्कुल एक ऐसे स्तर पर है और तनाव का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। फिर वो आप स्कूल के बच्चों को ले लीजिए, मध्यम वर्ग के लोगों को ले लीजिए या फिर हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको ले लीजिए, हर एक ओर पर तनाव का जो स्तर है वो बहुत उच्च है। और इस तनाव भरे जीवन में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनय सी तिजोरी जी, जो कि होलिस्टिक

0: आयुर्वेदिक मेडिसिन में उन्होंने पीएचडी किया है और साथ ही साथ एक प्राकृतिक चिकित्सक है, आज हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर जी, अभी थोड़ी देर पहले जब आप शरीर के गांठों की बात कर रहे थे, कहीं पर शरीर में मान लीजिए कोई गांठ हो जाती है तो एक इंसान को क्या करना चाहिए?
1: हाँ, ये जब सेल्स खराब हो जाता है शरीर में
0: जी,
1: तो गांठ और चिमिया पैदा हो जाता है
0: जी।
1: तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करते हैं, वो चिमिया को दूर करने के लिए प्रथम तो शरीर को डिटॉक्स करते हैं।
0: अच्छा,
1: कैसे डिटॉक्स करते हैं? ये बरगद आप लोगों ने सुना है
0: हाँ।
1: बरगद के दो पत्ते लेते हैं
0: हाँ।
1: फिर पीपल, पीपल के दो पत्ते लेते हैं और अमरूद गोयाव के दो पत्ते लेते हैं और पान के पत्ते
0: जी,
1: पान का पत्ता पान है
0: जो हम पूजा करते हैं,
1: पूजा करते हैं बेतेल
0: जी, जी।
1: और फिर बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं ये
0: जी,
1: बेलपत्र
0: जी।
1: और तुलसी के पत्ते दो पत्ते और करी पत्ता जो तरकारी में काकी पुले डालते हैं ना
0: जी,
1: उसको ले लेते हैं
0: हाँ,
1: पांच
0: हाँ।
1: और एक टुकड़ा अदरक
0: हाँ,
1: हाँ, दो इंच का
0: हाँ जी
1: अदरक
0: हाँ।
1: और एक टुकड़ा हल्दी
0: हाँ,
1: और एक आमला, आमला ऑंचे आमला
0: हाँ,
1: उफल है
0: हाँ जी।
1: तो और इसके साथ एक चुटकी काली मिर्च जिपाव काजे
0: हाँ हाँ,
1: इन सब को और एक टुकड़ा चुकंदर,
0: चुकंदर यानी बीटरूट
1: बिताओ
0: जी,
1: इन सब को लेकर मिक्सी में डाल लेते हैं
0: जी।
1: अब मिक्सी में डालकर मिक्सी चलाते हैं
0: हाँ,
1: तो ये पिस जाता है, पिसकर जूस बन जाता है
0: बिल्कुल।
1: अब इस जूस को आधा कप सुबह को खाली पेट 12 बजे खाना खाने से पहले आधा कप और शाम को भोजन लेने से पहले आधा कप
0: जी,
1: यानी दिन में तीन बार इस जूस को प्रयोग करेंगे
0: जी,
1: तो वो औंचे कौंसे हो जाता है।
0: मतलब वो जो गांठ आपको हाँ, कहीं शरीर में कोई भी गांठ दिखाई दे रही है जिसमें हाँ, अभी कोई दर्द नहीं है लेकिन वो एक गांठ जैसे बन रहा है, तो आप इसको अगर हाँ, पीना शुरू करेंगे तो ये हाँ, लगातार कितने दिनों तक लेना चाहिए डॉक्टर जी?
1: ये वैसे तो 7 दिन लेना चाहिए
0: जी,
1: और यदि गांठ बड़ा है मोटा है
0: हाँ,
1: तो 21 दिनों तक ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: या 30 दिन तक ले सकते हैं
0: जी,
1: और कुछ लोग तो 3 महीना तक
0: लगाता
1: इसका सेवन करते हैं
0: जी,
1: तो वो जड़ से खत्म
0: अच्छा,
1: वो समाप्त हो जाता है गांठ चिमेर
0: हाँ हाँ,
1: वो समाप्त हो जाता है 3 महीनों तक
0: जी
1: हाँ।
0: तो डॉक्टर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप पुनः एक बार फिर से रिपीट कर दें ये हाँ, रेसिपी, क्योंकि हाँ, हमारे जितने भी श्रोता हैं अगर हो सके तो आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे हाँ, वैसे ये भी हम आपको याद दिला देते हैं, इसी कार्यक्रम को दोबारा से आप सुन पाएंगे 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। अगर कुछ भी छूट जाए तो आप याद रख सकते हैं, दोपहर को आप इसका रिकैप फिर से आपको सुनने को मिलेगा। तो जरूर गुरुजी, आप फिर हमें बताएं हाँ, कि ये जो गांठ है इसके लिए क्या रेसिपी आपने अभी भी बताई हमें।
1: शरीर में कहीं भी पर वो गांठ या चिमे हो जाता है
0: जी,
1: तो हम बरगद के दो पत्ते लेते हैं
0: हाँ,
1: एक पेड़ है बरगद,
0: बरगद का पेड़
1: हाँ, फिर पीपल के दो पत्ते लेते हैं
0: जी,
1: और अमरूद गोयाव के दो पत्ते लेते हैं
0: जी,
1: पान के दो पत्ते लेते हैं
0: जी,
1: और बेलपत्र
0: जी
1: जिससे पूजा करते हैं
0: हाँ,
1: और तुलसी के 5-6 पत्ते लेते हैं, फिर करी पत्ता काकी पुले के 5-6 पत्ता लेते हैं, और एक टुकड़ा अदरक, एक टुकड़ा हल्दी और एक आमला ऑंचे आमला और एक चुटकी काली मिर्च जिपाओ काजे
0: जी,
1: और एक टुकड़ा चुकंदर यानी बिताओ बीटरूट, ये सब को लेकर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। जब पीस लेते हैं तो ये अपने आप में एक जूस बन जाता है
0: जी,
1: और ये औषधि बन जाती है
0: बिल्कुल।
1: तो ये गांठ को समाप्त करने के लिए बढ़िया औषधि है।
0: डॉक्टर जी, मैं यहाँ हाँ, पर पूछना चाहूंगी कि ये तो आपने जो बताया ये एक डोज का आपने मेजरमेंट दिया है, ये एक डोज है मतलब जो आप बता रहे हैं ये जितना तैयार होता है वो एक ही बार में हमें ग्रहण करना है, एक ही बार में पीना
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं, ये तैयार होकर 1 लीटर या आधा लीटर हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब पानी जब हाँ, डालकर आप मिक्स करेंगे
1: पानी डाल देंगे
0: हाँ,
1: तो

0: बढ़िया हो जाता है
1: बिल्कुल, लेकिन
0: इसको लेने के मात्रा जो है आधा कप,
1: आधा कप इसमें लेना है तो, और इसे इसे प्रिजर्व करके रखना है मतलब
0: आप फ्रिज में रख सकती है
1: जी जी।
0: यदि आप ज्यादा बना लिया है 2 लीटर तक या 3 लीटर तक या 1 लीटर तो आप 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं, फ्रिज में डालकर रख सकते हैं, पीने से पहले 15 मिनट पहले निकाल दें।
1: हाँ मतलब यानी एक तो सुबह आपने कहा खाली पेट आपको सुबह लेना है
0: ताकि ज्यादा ठंडा न लगे
1: जी,
0: उसको निकाल दें फिर 12 बजे फिर शाम को
1: यानी तीन बार इसको लेना है, दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि आप इसे प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं, हो सके तो मतलब उसे 1 या 2 दिन के अंतराल में उसे समाप्त कर दें और फिर आप ताजा फिर से बनाकर उसका सेवन करें, क्योंकि जितना आप ताजा लेंगे उतना आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा करने से जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो अगर मान लीजिए कहीं शरीर में गांठ है जो अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है तो इसका सेवन लगभग आप सप्ताह भर के लिए या 10 दिनों के लिए कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ा आपको लगता है कि गांठ कुछ ज्यादा बड़ी है तो 1 महीने के लिए आप इसका सेवन करें, या फिर 3 महीने के अंतराल में अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं रोज आपको 3 बार इसे लेना है, जिससे कि ये जो गांठ है वो एंटी कैंसेरियस यानी ये कैंसर के जर्म्स को समाप्त कर देती है, जड़ से उखाड़ देती है। बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसे स्तर पर है जहां पर विश्व भर में डंका है इस प्राचीन पद्धति का। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कई सारी ऐसी बातें हैं जो आज के इस कार्यक्रम में आपको जानने को मिलेगी। डॉक्टर जी, जब हम कैंसर के इलाज की बात करते हैं तो मान लीजिए हमें पता चल गया कि अब ये कैंसेरियस बन चुका है, गांठ जो है वो कैंसेरियस बन चुकी है, एक व्यक्ति बिल्कुल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ट्रीटमेंट के अतिरिक्त क्या लेना चाहिए जिससे कि वो कैंसेरियस जो सेल है जो बढ़ चुका है कैंसर में बदल चुका है, अब उसे किस तरह से हमें ट्रीट करना है?
0: हम होलिस्टिक मेडिसिन या मेडिसिन ट्रेडिशनल बोलते हैं
1: जी,
0: तो मेडिसिन ट्रेडिशनल होलिस्टिक में हम लोग नो केमोथेरापी हम लोग ये नहीं करते हैं, और नो रेडिएशन ये भी नहीं करते हैं, नो सर्जरी
1: बिल्कुल
0: ये इसमें होलिस्टिक में नहीं होता है।
1: सही बात,
0: हम लोग केवल नेचुरल थेरापी करते हैं
1: जी,
0: तो प्रथम रोगी के जीवन शैली में सुधार करते हैं
1: जी जी,
0: सुधार जीवन शैली
1: जी,
0: जैसे कि रोगी को दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोना है, फिर लेफ्ट साइड करवट करके सुलाना है, ये सब होता है कैंसर लोगों के लिए। और परहेज करना होता है, परहेज पूरा परहेज, नो रोटी,
1: अच्छा
0: नो चावल, नो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वो सेल्स को उत्पन्न करता है, कैंसर के सेल्स को उत्पन्न करता है
1: बिल्कुल।
0: फिर ये जो नो एनिमल्स प्रोडक्ट है, फिर नो एनिमल्स फूड, कैसे मीट है, मीट मांस
1: बिल्कुल, जैसे मांसाहारी जो हैं उसको पूरी तरह से बंद करके शाकाहारी
0: करना पड़ता है।
1: हाँ जी,
0: जैसे कि रिफाइंड फूड है इसको भी बंद करना पड़ता है, रिफाइंड तेल है, रिफाइंड ऑयल, इसको बंद करना पड़ता है, सफेद चीनी है बंद, सफेद आटा इसको भी बंद करवाते हैं, सफेद नमक है इसको भी बंद करते हैं, और शुरू में मैंने कहा था जो एल्यूमिनियम के बर्तन प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन आदि हम प्रयोग करते हैं, बोतल आदि, ये सब को बंद करना होता है।
1: तो गुरुजी, मैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जब ये कहा जाता है कि आटा बंद, चावल बंद, ये सारा, तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि तो खाए तो क्या खाएं?
0: हम आएंगे इस पर भी।
1: बिल्कुल, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप रिप्लेस कर सकते हैं, इन सारी चीजों के अतिरिक्त आप ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, और बिल्कुल हेल्दी मात्रा में। आप देखेंगे कि ये हमारे शरीर को उतना ही पौष्टिक आहार से, पौष्टिकता से भरता है, ऊर्जा से भरता है। तो गुरु जी, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल मिट्टी के बर्तन का फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार में उपलब्ध होना शुरू हो चुका है, तो क्या मिट्टी के बर्तनों में पकाया हुआ खाना पौष्टिक होता है, और क्या ये हमारे हेल्दी जीवन को बिल्कुल ठीक से रखता है, ट्रीट करता है?
0: आप मिट्टी का बर्तन
1: जी
0: प्रयोग कर सकते हैं
1: जी,
0: चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए, दाल तकारी

0: सब्जी पकाने, भात पकाने के लिए
1: जी
0: ये बहुत कारगर है।
1: हाँ हाँ,
0: यदि मिट्टी के बर्तन नहीं मिल ही रहा है
1: हाँ हाँ,
0: तो आप लोहे का बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं।
1: कांसा का बर्तन हाँ, जो कहते हैं लोहे का बर्तन,
0: लोहे का बर्तन, कांसे का बर्तन
1: हाँ हाँ,
0: ये सब प्रयोग करते हैं
1: इसमें
0: तो ये सब औची कांसे है ये
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: तो
0: ये
1: देखा जाए तो आजकल हम मॉडर्न तो बनते जा रहे हैं, पर मॉडर्न के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी दांव पर लगती जा रही है, और सबसे प्राथमिक है हमारा स्वास्थ्य। और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि प्राचीन पद्धति यूं ही प्राचीन, यूं ही हम नहीं कहते हैं कि जरूरी और इम्पोर्टेंट मानी गई है, क्योंकि जहां पर आज फिर से मिट्टी के बर्तनों में अगर हम खाना खाए तो ये एंटी कैंसरियस है। और जैसे गुरुजी ने बताया कि कांसे के बर्तन में, बिल्कुल कांसा का जो बर्तन है, लोहे की जो कढ़ाइयाँ जो पहले के ज़माने में हमारी दादी, बिल्कुल दादी नानी जो इस्तेमाल करती थी, उसमें आयन की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक तरह से बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो बहुत साल पुरानी है, पर आज हम कहीं ना कहीं इन सारे प्रयोगों को भूलते चले जा रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं हमारे साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो चलिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। और बिल्कुल अगर आपके पास कोई भी मन में सवाल है तो आप अपने सवालों को तैयार रख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में लाइंस खुलेंगी 4028085 पर अपने सवालों को तैयार रखें, और हो सके तो बिल्कुल सवाल पर अड़े रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दे सकें। और एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और आज हम होलिस्टिक मेडिसिन यानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर विनय सी तिजोरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि खुद एक होलिस्टिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं और प्राकृतिक चिकित्सक हैं। और बिल्कुल जैसे डॉक्टर जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस चिकित्सा पद्धति में बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इस बीमारी को ट्रीट किया जाता है, लेकिन इस पर और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आज हम प्राप्त करेंगे। वैसे जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर के मरीजों के लिए विशेष इलाज और ज्यादा कारगर इलाज क्या हो सकता है डॉक्टर जी, और कौन सी थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें?
1: मैंने अभी कहा मेडिसिन ट्रेडिशन होलिस्टिक है,
0: हाँ,
1: तो अब आता है कैंसर मरीजों का दूसरा थेरेपी,
0: हाँ,
1: ये अहम है। इसमें हम विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं।
0: अच्छा,
1: इसका पेस्ट तैयार करते हैं, जैसे कि बरगद के पत्ते लेते हैं
0: जी,
1: करेले के पत्ते लेते हैं, अमरूद के पत्ते लेते हैं, नीम के पत्ते लेते हैं और पीपल के पत्ते लेते हैं। शुरू में मैंने बताया था इन पत्तों को मिक्सर में पीस कर जूस निकाल कर पीना है,
0: हाँ,
1: लेकिन अभी बतला रहा हूँ कि बरगद के पत्ते लेकर, करेले के पत्ते को लेकर, अमरूद के पत्ते लेना है, नीम के पत्ते लेना है, पीपल के पत्ते लेना है और
0: डूब घास
1: अच्छा। से पूजा में करते हैं,
0: हाँ जी,
1: और कच्ची हल्दी,
0: हाँ,
1: पाउडर बनाकर
0: जी,

0: परात में डाल के पैर से मथते हैं।
1: अच्छा, मतलब
0: पैर से, पिसते पैर से, हाँ। पैर से उसको कुचते हैं।
1: अच्छा, मतलब इन सारी चीजों को एक बर्तन में डालकर, एक बड़े से,
0: एक बड़ा
1: बड़े से परात में डालकर, जी हाँ, जी
0: परात में,
1: एक जैसे सेनी, सेनी बोल सकते हैं, हाँ, जो थोड़ा डीप है उसमें डालकर, हाँ, आपको पैरों से कूचना है।
0: हाँ, इन पत्तों को डालकर थोड़ा सा पानी डाल दें,
1: हाँ,
0: और हल्दी पाउडर भी डालना है,
1: हाँ हाँ,
0: तब इसको मथना है, मथना है पैर से,
1: हाँ, मतलब पैरों से उसकी चटनी बनानी है,
0: चटनी बनी, बिल्कुल,
1: हाँ।
0: तो अब जब चटनी बनाने है पैरों से,
1: हाँ,
0: तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो आपके जीभ में कड़वाहट पैदा होगा।
1: पैरों से आप, हाँ, जब कूच रहे हैं, हाँ, तो ये कड़वाहट आपके जबान
0: आपके
1: में,
0: जीभ में, हाँ, आपके जबान में वो कड़वाहट पैदा होगा।
1: अच्छा,
0: तो इसका मतलब है कि आपके पूरे शरीर में वो दवाई के रूप में काम कर रहा है।
1: अच्छा, मतलब ये लगातार 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक आपको
0: इसको पीसना है।
1: अच्छा, मतलब एक जगह पर, जो मैं समझ रही हूँ, आपको एक जगह पर खड़े रहना है और उस परात में ये जितनी भी वस्तुएं जो जो डॉक्टर जी ने हमें बताई, ये सारी चीजों को डालकर, पानी थोड़ा सा डालकर, इसे पैरों से मथना है, यानी पैरों से उसको कुछ देना है, चटनी बनानी है पैरों से।
0: खून को साफ करता है।
1: अच्छा,
0: खून को साफ करता है
1: और ये शरीर में किसी भी
0: बॉडी को, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है।
1: अच्छा,
0: डिटॉक्स करता है,
1: हाँ।
0: और शुरू में हमने कहा था गांठ है,
1: हाँ,
0: तो गांठ के लिए भी ये अच्छा है,
1: हाँ,
0: ये सब, ये ट्रीटमेंट है,
1: ये ट्रीटमेंट है। तो ये कितने दिनों तक लगातार करते रहना है गुरुजी? और मतलब मान लीजिए दिन में ये एक ही बार करना है या
0: नहीं? सुबह यदि आप चल फिर सकते हैं,
1: हाँ हाँ,
0: उठ सकते हैं
1: जी,
0: खड़ा हो सकते हैं, तो आप दिन में दो बार कर सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब एक बार सुबह, एक बार
0: शाम को। यदि गांठ छोटा है, वो कैंसर अभी अभी हाल ही में हुआ है, तो 7 दिनों में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा।
1: अच्छा,
0: या तो 21 दिनों में आपको पूरा रिजल्ट
1: मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लगातार हमें करना है, और ये शरीर में जहां कहीं पे भी गांठ है उसमें ये असर करता है
0: पूरा पूरा।
1: अच्छा,
0: पूरा,
1: क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिसे समझना बिल्कुल बहुत जादुई लगता है कि शरीर के बाह्य हिस्से में अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं।
0: साइड इफेक्ट नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: ये पूरा नेचुरल है।
1: जी जी,
0: कोई भी कर सकता है और ज्यादा खर्च भी नहीं होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: पैसों का खर्च नहीं होगा, पैसा बच सकता है।
1: तो
0: थोड़ा सा मेहनत करना है।
1: डॉक्टर जी, मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जब इसको मथना शुरू करते हैं, हाँ, मान लीजिए शरीर के किसी भी अंग में कैंसर है, तो ये पद्धति आप
0: एकदम से काम करेगा?
1: तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो हमारे साथ, एक कॉल है यहाँ पर, चलिए पहले कॉल का सवाल सुन लेते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हमें इशारा मिल रहा है, यहाँ पर हमारे साथ तकनीक पर कादिया है, उरुसा हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट, और जिनेश प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं। आइए सुनते हैं उनका सवाल। हेलो,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
2: डॉक्टर जी के, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
2: अभी आपने कहा कि प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग करना कैंसर,
1: हाँ?
2: मैं रोज,
1: हाँ,
2: प्लास्टिक के प्लेट में खाती हूँ, सुबह दोपहर रात्रि में।
1: हाँ जी, तो अभी जैसे डॉक्टर बाबा बोलन कि प्लास्टिक के बर्तन के सेवन जितना जस्ती करब तक कौसिया होई के जो सांस है वो तनी जस्ती बढ़ जाला, तो उही खातिर बोलल जाला कि एगो स्टील के प्लेट में ले लिया या तो फिर एगो कांच के प्लेट में खाई सकब।
0: कांच के बर्तन में
1: हाँ, प्लास्टिक के बर्तन उतना अच्छा नहीं है सेवी करे के, प्लास्टिक के भुतेवा उतना अच्छा नहीं है सेवी करे के, काहे के
2: प्लास्टिक के प्लेट
1: सेवी करे सकियन सर?
0: नहीं नहीं, प्लास्टिक के प्लेट नहीं, काहे के
1: जोन भी चीज तू गरम चीज ऊ में दलब तो ऊ तोहर शरीर में जाला, काहे के प्लास्टिक तनी फन होला गते गते और ओकर जोन पॉटिकल है ऊ लेको में एंटर करेलन सर, उही से कबो कबो कौंसे होए के जोन चांसेस है ऊ बढ़ जाला।
0: हाँ, ऐसा है कि यदि आपको कौंसे नहीं होगा तो दूसरी बीमारी हो सकती है,
1: हाँ हाँ,
0: यानी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हो सके जितना हो सके हम प्लास्टिक के सेवन को थोड़ा कम, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक की चीजों को जितना हम कम इस्तेमाल करें उतना हमारे लिए।
0: आप घर से, रसोई घर से,
1: हाँ,
0: एल्युमिनियम के बर्तन निकाल दें,
1: हाँ हाँ,
0: और प्लास्टिक के बर्तन निकाल दें,
1: हाँ,
0: ये

0: पानी प्लास्टिक के बोतल में भर भर कर लाते और पीते हैं,
1: हाँ हाँ।
0: ये स्वास्थ्य के लिए खराब है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल यानी कहीं ना कहीं हम चलिए यहाँ पर एक और इशारा हो रहा है, कॉल, एक और कॉलर है यहाँ पर, उनका भी कॉल हम अटेंड कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी,
2: डॉक्टर जी नमस्ते।
0: नमस्ते आपको।
2: हाँ जी, आपका जो पत्ते का दवा बताइए,
1: हाँ,
2: तो फिर से दोहरा सकते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप सुन लीजिए, हाँ। लिख लीजिए, एगो पापिया में लिख लिया। हाँ,
0: हाँ। बरगद के पत्ते, बरगद एगो पेड़ होला ओकर पत्ता, फिर पीपल के पत्ता, करेले के पत्ता, और गोयाव अमरुद के पत्ता, नीम के पत्ता, और इसमें दूब घास,
1: गणेश जी के चढ़ेला,
0: हाँ, चढ़ेला, आप ओकरा लेकर एक परात में लेकर आप पैर से उसको पीसें, या तो इन सब को मिक्सी में डालकर पीसकर चटनी बना लें, तब उसको पैर से पीसें, या इसका जूस बनाकर पिए तो बढ़िया रहेगा। कैंसर, सभी कैंसर में इसका प्रयोग करते हैं।
1: चला तो है एगो इलाज, एगो ऐसा पद्धति रहल जेकर से बहुत मात्रा में बहुत पुसौताज के कौंस्य कमती होल बा। तो है एगो प्राकृतिक चिकित्सा के आज बात करत हई, और बिल्कुल 4028085 पर आप हमारे साथ बने रहें, 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा में कैंसर के मरीजों को कौन कौन सी औषधियाँ, हाँ जी, उनको कौन कौन सी औषधियाँ देनी चाहिए?
0: अच्छा, एक व्यक्ति, एक मरीज कैंसर से बीमार है, तो पहले हम उनको ऐसे तो बतला रहे हैं शुरू से
1: जी,
0: क्या क्या पत्ता का निकाल औषधि बनाकर देते हैं
1: जी।
0: आप लोगों ने सुना है कासावा, ये कासावा बोलते हैं मानियोक, मानियोक, मानियोक,
1: हाँ।
0: मानियोक को छीलकर साफ से धोकर उबालें, उसको बुल करें, छोटा छोटा काट के बुल करें। अब ये जो पानी बचता है, पानी
1: जी,
0: पानी को छान कर आधा गिलास सुबह, आधा गिलास 12 बजे, आधा गिलास शाम को,
1: यानी बॉईल किया हुआ जो
0: पानी है,
1: अच्छा,
0: हाँ, मायोक का जो पानी बॉईल किया हुआ है,
1: हाँ।
0: 3 बार इसको दिन में पीना है, ये है। और जो दूसरी औषधि है, इन दिनों बाजार में एक फल बेचा जा रहा है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सावे सोप।
1: अच्छा, सावे सोप,
0: हाँ, कारोंसोल,
1: हाँ,
0: कारोंसोल, कारोंसोल, इसके 10 पत्तों को उबाल कर दिन में बराबर इसको
1: बॉईल कर
0: आधा आधा आधा कप 3 बार दिन में भोजन से पहले लेना चाहिए।
1: एक एफिजोनियर,
0: हाँ, कारोंसोल के पत्ते को उबालकर,
1: हाँ हाँ,
0: हाँ, उबालकर दिन में 3 बार आधा आधा कप लेना है,
1: अच्छा,
0: भोजन से पहले,
1: हाँ हाँ।
0: और तीसरी अवधि जो है, शायद आप लोगों ने सुना होगा काउ यूरिन,
1: हाँ, गौमूत्र,
0: गौमूत्र, ये भी एक बढ़िया मेडिसिन है, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आंसी एफ्लामात्वा होता है,
1: अच्छा,
0: और ये फाइबर से भरपूर होता है, फाइबर इसमें ज्यादा होता है
1: जी,
0: तो कैंसर मरीजों को ज्यादा फाइबर का प्रयोग करना है।
1: ओके डॉक्टर जी, यहाँ पर इशारा हो रहा है, एक श्रोता है, उनको सुन लेते हैं। हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते जी।
3: नमस्ते, नमस्ते रत्ना जी, नमस्ते डॉक्टर जी,
0: नमस्ते जी।
3: यहाँ पर मैं एक सवाल कर रही हूँ कि मैंने कोलोनोस्कोपी किया है 4 बार, जो डॉक्टर कहने की हमें पॉलिप्स है, और ये जो इन्फेक्शन हो जाता है मुझे यूरिनेस यूरिन के, हमेशा हमेशा होता है,
1: अच्छा,
3: तो डॉक्टर जी हमें इसमें कोई सलाह दे सकते हैं
1: जी
3: पॉलिप्स के बारे में?
0: आपके डॉक्टर ने जो सलाह दी है आपको, उसको आप कीजिए,
1: जारी रखिए,
0: जारी रखें,
1: हाँ हाँ।
3: तो अब कहते हैं कि मैं 75 साल की हूँ, 75, तो अब कहते हैं कि अब कोलोनोस्कोपी नहीं होगा, तो जब बीमार पड़ेंगे

0: तो आना।
1: ठीक है, तो यानी आपके जो डॉक्टर ने सलाह दी है उसे आप जारी रखिए, लेकिन उसके अतिरिक्त डॉक्टर क्या क्या कोई प्राकृतिक पद्धति है जिसके द्वारा वो इसको इलाज कर सकते हैं?
2: करेले का जूस निकाल कर पिए, नीम का जूस पिया है, नीम के पत्ते जानते हैं ना, और एलोवेरा का जूस पिया है, फिर ये जो गिलोय है गिलोय का जूस पिया है, और कैसे अश्वगंधा है टैबलेट के रूप में मिलता है अश्वगंधा, और आमला का टैबलेट ये भी ले सकते हैं, और ये नोनी का जूस पीजिए
1: जी,
2: और चुकंदर बेताव के जूस निकालकर उसमें हल्दी का जूस मिला लीजिए।
1: अच्छा,
2: बेताव का जूस, हल्दी का जूस, और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च जिपाओ काजे मिलाकर आप पिए तो आपका कैंसर का रोग है या शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो इससे मिटेगा,
1: वो धीरे धीरे करते हुए कम होगा। यानी जो भी जूस डॉक्टर जी ने अभी भी बताया इसके बारे में, बिल्कुल आप अगर चाहें तो हमें प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको डॉक्टर का संपर्क नंबर दे सकते हैं, जिससे द्वारा आप उनसे संपर्क करके बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी और कितनी मात्रा में सेवन करना है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत कम समय रह गया है। और हमारे लिए बिल्कुल एक आखिरी प्रश्न हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर जी, जब हम खान पान की बात करते हैं तो एंटी कैंसर फूड, यानी जो आजकल खान पान के भी कई सारे ऐसे देखे गए हैं कि आजकल जो भी हम खाते हैं बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाला खाना होता है, बहुत ज़्यादा जैसे उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल्स होते हैं जिसके द्वारा भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे एंटी कैंसर फूड्स हैं जिसका सेवन करने से हम कैंसर के रोग से बच सकते हैं?
2: हाँ, किसने प्रश्न किया था कि हम क्या खाएं?
1: हाँ,
2: तो आप चिया सीड ले सकते हैं, और सेजाम ले सकते हैं,
1: तिल,
2: कलौंजी
1: जी,
2: एक प्रकार का सीड आते हैं कलौंजी
1: जी,
2: पेपकिन सीड भी बोलते हैं
1: जी,
2: और फलों में जैसे अपरिको है, प्लम है, पोआ है, चेरी है, आप अनार ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं
1: जी,
2: फिर व्हीट ग्रास,
1: हाँ,
2: दवा के रूप में व्हीट ग्रास ले सकते हैं, तुलसी का रस ले सकते हैं, गिलोय का रस ले सकते हैं, नीम का रस ले सकते हैं, जामुन का रस ले सकते हैं, और मैंने शुरू में कहा था कि रोटी बन चावल बन,
1: बिल्कुल
2: इसके जगह पर मिलेट,
1: हाँ,
2: मिलेट जैसे बाजरा है ये सब खा सकते हैं, और खाने में जैसे कि ब्रोकोली है, ब्रोकोली ले सकते हैं, एवोकाडो ये भी ले सकते हैं, और जितने भी बेरीज हैं इसको ले सकते हैं, फ्लैक्सीड है इसको ले सकते हैं, एक प्रकार के भाजी है केल उसको ले सकते हैं, टर्मेरिक हल्दी ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, मशरूम, स्पनाइस पालक इसको ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, टोमेटो, कैरट्स ले सकते हैं, गार्लिक लहसुन ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको पताक बोलते हैं इसको भी ले सकते हैं, और जितने में सीड्स हैं ग्रेन्स होल ग्रेन्स ले सकते हैं, और जिंजर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के उपायों पर आज बुधवार 19 अगस्त 2026 को कुरोऑट्स सेंटर में आयोजित बिजनेस फोरम में इसके बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बैठक के एजेंडा में ठोस व्यापारिक पहलों और कारोबारी अवसरों पर विचार विमर्श शामिल था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार के एक विविध और मजबूत प्रवाह को बढ़ावा देना है। आज के

कार्यक्रम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मॉरिशस और जिम्बाब्वे के चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना रहा। किसानों और पशुपालकों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक और स्मार्ट तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम का। इस योजना के तहत परियोजना की कुल लागत का 50%

रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारी की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। गन्ने के खेतों में श्रमिकों की कमी और नई पीढ़ी के किसानों की कमी के बीच मॉरिशस का गन्ना उद्योग खुद को नए सिरे से विकसित करने के रास्ते तलाश रहा है। मॉरिशस में कुछ लोग गन्ने के प्रसंस्करण और विविधीकरण पर जोर दे रहे हैं ताकि पारंपरिक चीनी उत्पादन से आगे बढ़कर गन्ने को नए और आधुनिक अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदला जा सके। गन्ने के बेहतर उपयोग की संभावनाएं अभी भी काफ़ी व्यापक हैं। गन्ने का इस्तेमाल न केवल खाद्य उद्योग में बल्कि कॉस्मेटिक उत्पादों, रम के उत्पादन और विभिन्न प्रकार की चीनी बनाने में भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के पूर्व लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिकाइलो फेदोरोव ने युद्ध के दौरान चुनाव कराने की मांग की है। इससे रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के 4.5 साल बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। 35 वर्षीय फेदोरोव ने मंगलवार को यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में कहा कि लोकतंत्र को

0: फेदोरोव ने युद्ध के दौरान चुनाव कराने की मांग की है। इससे रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के 4.5 साल बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। 35 वर्षीय फेदोरोव ने मंगलवार को यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में कहा कि लोकतंत्र को क्यूपिप में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री शिवाजी अर्जू जिन्हें अर्जू इताल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: सभी संगीत साथियों को अनुराधा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। शाम के 4:05 हुए हैं तो ले आई हूँ आपके लिए दोस्तों
1: दिल से मिले दिल।
4: दिल से मिले दिल प्रोग्राम में आप सबों को तहे दिल से स्वागत हम करते हैं। बस ये शाम महफिल में आपका स्वागत है जो चलेगा शाम के 5 बजे तक का।

जाओ दोस्तों, बड़ा ही जोशीला गाना है। कितना मेहनत करना पड़ता है ना दोस्तों कोरियोग्राफर को, इतना सिंपल और इतना अट्रैक्टिव कोरियोग्राफी, इसको देखकर हम भी उसी माहौल में चले जाते हैं, है ना।

कुछ मिले जुले तरानों से आप लोगों का मनोरंजन हम करेंगे हमारी इस नए फिल्म में जिसका नाम है दिल से मिले दिल। दुखी दुखी होते होते थक गई है, अब मुझे भी शांति चाहिए जो मैं जी लूं। तो इस पल की धुन आप सबके नाम पे जो इस समय रेडियो मनोरंजन पे जुड़े हैं।

आलका याग्निक उदित नारायण की मिली जुली आवाजों में ये बहुत प्यारा सा नगमा अभी अभी आपने सुना। वैसे मैं हूँ अनुराधा और अगले पाँच बजे तक हम साथ चलेंगे मोहब्बत, दोस्ती, यादों और संगीत के हसीन सफर पर।

खूबसूरत नगमा था। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और शायद इसीलिए तो हमारी महफिल का नाम है दिल से मिले दिल। तो मोहब्बत कभी अजीब दस्तूर है, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक गीत वो कह देता है जो दिल कहना चाहता है। तो इसी एहसास को लेकर चलिए बढ़ते हैं इस अगले नगमे की ओर, किशोर कुमार की आवाज़ में।

जहाँ दोस्तों ऐसे गीत रूह को सुकून देते हैं और मन में ताजगी महसूस करा देते हैं। वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5250600, कोई मैसेज भेजना है तो ज़रूर इस नंबर पर रब्बा भेज सकते हैं 5250600 पर, और इस प्रोग्राम में भाग लेना है तो 4028070 पर आप फ़ोन कर सकते हैं, 4028070 पर।

0: येसुदास जी की आवाज़ इतनी मधुर है कि ये सुनने का मन ही करते हैं, बस बहुत ही मखमली आवाज़ है इनकी। और विशाल जी जो बेलिया के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि पहले के गीतकार और लेखक के ऊपर ईश्वरी कृपा होती थी, इसलिए इतना सुंदर सुंदर गाना गाते लिखते थे। तो सच ए ग्रेट वॉइस ऑफ येसुदास, आई रियली लव दिस सॉन्ग।
1: RM3 Radio. Radio. Dil se mile dil.

और एक मैसेज भी आई है बेल्जियम से प्रकाश वित्ती की ओर से. नमस्ते जी, आप अनुराधा है ना? जी हाँ, मैं हूँ अनुराधा और मैं प्रकाश वित्ती बेल्जियम से. येसुदास मुझे बेहद ही पसंद है. तो चलिए, आप ही के नाम हमने किया है ये गाना. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए. वैसे आज अचानक इस खूबसूरत प्रेयर की याद आ गई है. जयंती जी को जो मौसलमा सैतौंद रहती है, ये भेंट उनके सभी जगदाऊ परिवार वालों के लिए हम चढ़ाने जा रहे हैं. और प्यारी आशा जानू जो

कोतेज के रहने वाली हैं उनको भी इस प्रार्थना को बेहद बेहद पसंद है। चलिए आशा जी आपकी प्यारी माँ कुमारी और समस्त जानू परिवार वालों के लिए ये प्रार्थना सुनिए।

0: Continuous music.
1: एक बार फिर आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं 4028070 पर और 5250-6200 पर आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये अगला गाना है शतो बिनागस की ज्योति की फरमाइश पर आशनी रेखा सुरेखा और सभी माधव परिवार वालों के लिए

और जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि जब तक उसका और मेरा साथ रहे, मेरे हिस्से की जिंदगी भी वहीं तक मेरे साथ रहे। I don't know why, but every time I listen to this song, my tears full of eyes. Seriously, don't know why. इस मैसेज के लिए धीरज जो लालुगा रहते हैं, आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: गाना सुनकर जितनी खुशी होती है उतना ही दर्द होता है। शाम के 4:48 हुए हैं।
1: दिल से मिले दिल।

तो दोस्तों चाय की एक प्याली हो जाए, दिल को जरा सुकून दीजिए, तो जुड़ जाइएगा रेडियो मनोरंजन के साथ शाम 5 बजे तक।

फिल्म फिदा में अभी अभी आपने उदित नारायण और अल्क याग्निक को सुना और याद रहे थी 5 बजे आप श्री विश्वानंद जी आपका साथ देंगे और आप सुनेंगे उनका ही एक कहानी ये प्रोग्राम बिल्कुल इनका साथ

जरूर देंगे और हमारी आपकी मुलाकात यहीं की खत्म होती है 5 बजे हमारी आपकी मुलाकात समाप्त हो जाएगी हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ अपने अच्छे वक्त बिताए होंगे फिर कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो जाते जाते एक प्यारी सी गजल आप सबों के नाम करते हैं जगजीत और चित्र सिंह की जुबानी हमारी ओर से नमस्कार

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: अनकही एक कहानी

नास्ति स्यात् परो धर्मो न स्यात् विद्यते परम् सत्यम ही परमं ब्रह्म सत्यम ही परमं तपः। अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सत्य से श्रेष्ठ कोई अन्य तत्व नहीं है। सत्य ही परम ब्रह्म है और सत्य ही सर्वोच्च तपस्या है। कबीरदास भी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसके हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। कबीर भी सत्य को मनुष्य के जीवन की सर्वोच्च साधना मानते हैं। दोनों में यह विचार समान है कि कठिन तपस्या पूजा या बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण सत्य पालन करना है। संस्कृत श्लोक में कहा गया है, सत्यम ही परमं ब्रह्म, अर्थात सत्य को ब्रह्म के समान सर्वोच्च माना गया है। और कबीर भी कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चा

0: नहीं है। यदि हृदय में सत्य, प्रेम और पवित्रता नहीं है तो बाहरी साधना अधूरी है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। आज का दिन मानवता के नाम है। आज विश्व मानवतावादी दिवस है, एक ऐसा अवसर जो हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति, भाषा, वेशभूषा या सामाजिक स्थिति नहीं बल्कि उसकी मानवता है। और जब बात मानवता की होती है तो भारत की संत परंपरा का एक ऐसा महान नाम हमारे सामने आता है जिसकी वाणी आज भी सदियों की सीमाएं पार करके हमारे हृदय को छूती है। ऐसे ही संत हैं संत कबीर। कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का साहस दिया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर और बाहरी दिखावे पर प्रश्न उठाया और कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके आचरण, प्रेम, दया और करुणा से निर्धारित होती है। उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था मानव का हृदय। किताबों के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण था उस ज्ञान का जीवन में उतरना और महत्वपूर्ण था किसी पीड़ित और असहाय मनुष्य के साथ खड़ा होना। आज विश्व मानवतावादी दिवस के अवसर पर अनकही एक कहानी में हम लेकर आए हैं संत कबीर के जीवन और उनकी मानवतावादी सोच से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने के लिए विवश करती है कि आखिर मनुष्य का सच्चा कर्म क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है और मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की कहानी हमें बताएगी कि मानवता से बड़ा कोई कर्म नहीं और प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। हाँ प्रिय श्रोतागण, संत कबीरदास मध्यकालीन भारत के एक ऐसे युगांतकारी पथ प्रदर्शक थे जिनकी वाणी में केवल और केवल मानवता का स्वर गूंजता है। वे किसी एक जाति, कुल या धर्म विशेष के संत नहीं थे अपितु संपूर्ण मानव जाति के प्रतिनिधि थे। कबीर का स्पष्ट मानना था कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके जन्म, जाति या बाहरी पहनावों से तय नहीं होती बल्कि उसके भीतर निहित दया, प्रेम, करुणा और आचरण से तय होती है। कबीर के जन्म और कुल को लेकर सदियों से अनेक किंवदंतियां और विवाद रहे हैं। कोई उन्हें हिंदू कहता है, कोई उन्हें मुसलमान, कोई उच्च कुलीन मानता है, कोई निम्न वर्गीय जुलाहा, परंतु कबीर के लिए ये सभी पहचानें व्यर्थ थीं। उनका जीवन दर्शन सिखाता है कि हम सब एक ही ईश्वरीय चेतना से उपजे हैं, इसलिए मनुष्यता ही हमारा एकमात्र और सर्वोपरि कर्म है। आइए कबीर के जीवन के इसी सूत्रपात को, जन्म कुल से परे मानव की सर्वोपरि पहचान को एक जीवंत और एक अलग ढंग से प्रस्तुत इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। काशी के लहर तारा ताल के समीप कबीर की एक छोटी सी कुटिया थी। शाम का समय था और कबीर सूत काट रहे थे। कुटिया के बाहर एक जिज्ञासु पंडित, पंडित रामदत्त और संत रविदास बैठकर कबीर के जन्म और जाति को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। तभी कबीर मुस्कुराते हुए बाहर आए। कबीर को देखकर आश्चर्य से पंडित रामदत्त कहते हैं, कबीर हम नगर में तुम्हारे ज्ञान की चर्चा सुनकर आए हैं परंतु हमारे बीच मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम लहर तारा ताल में कमल के पत्ते पर मिले थे और तुम हिंदू ब्राह्मण संतान हो जबकि नीरू और नीमा जुलाहे ने तुम्हें पाला। बताओ तुम्हारा वास्तविक जन्म और धर्म क्या है।

0: वहीं पर बहुत बड़े विद्वान संत रविदास भी बैठे, उनके मन में भी कुछ प्रश्न हैं। वे भी पूछते हैं, हाँ कबीर स्पष्ट करो, तुम जुलाहे के घर पले बढ़े हो, इसलिए तुम मुसलमान हो, फिर तुम राम राम क्यों जपते हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, लोग तुम्हें क्या माने। श्रोतागण, संत रविदास बहुत महान विद्वान थे, वे सब कुछ जानते थे, लेकिन जब मित्र आपस में बैठे हैं तो चर्चा करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का प्रश्न कबीर से पूछते हैं जिससे कबीर के विचार को जाना जा सके। और संत रविदास की बात सुनकर कबीर, जो बहुत ही गंभीर मुद्रा में बैठे शांति से सूत काट रहे थे, वे सूत की अटी को एक तरफ रखते हुए कहते हैं,
1: हे गुणीजनों, आप लोग माटी के इस शरीर की उत्पत्ति खोज रहे हैं या उस चेतना की जो हम सब में एक समान बह रही है? ईश्वर की दृष्टि में कोई हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण या जुलाहा नहीं है। हम सब एक ही कुम्हार की गढ़ी हुई माटी के बर्तन के समान हैं।
0: कबीर की बात सुनकर पंडित रामदत्त कहाँ शांत रहने वाले थे, उन्होंने और तीखे व्यंग किए, परंतु कबीर, समाज तो कुल और जाति से ही व्यक्ति की श्रेष्ठता तय करता है। जाति ही मनुष्य की असली पहचान होती है, फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो?
1: पंडित जी, जब हवा किसी में भेद नहीं करती, जब सूर्य का प्रकाश सबको एक समान मिलता है और जब एक ही रक्त हम सब की धमनियों में दौड़ता है, तो मनुष्य को जातियों में बांटना मानवता का अपमान ही तो कहलाएगा। जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता।
0: ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच ना होए, बांस बड़ाई ऊंच की कहां सुगंध होए। कबीर की बात सुनकर संत रविदास कह उठते हैं, तो क्या तुम अपने वंश और संप्रदाय को नकारते हो कबीर?
1: रविदास जी, संप्रदाय तो मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, पर ईश्वर ने तो केवल इंसान बनाया है। यदि हम एक दूसरे को जाति और धर्म के चश्मे से देखेंगे तो मानवता का भाव कहाँ बचेगा? मेरी केवल एक ही पहचान है, मैं ईश्वर की बनाई इस दुनिया का एक साधारण मनुष्य हूँ और संपूर्ण मानवता ही मेरा परिवार है।
0: जन्म और कुल की सीमाओं से ऊपर उठकर केवल मनुष्यता को अपनी पहचान मानने वाले कबीर के विचारों ने काशी के विद्वानों को झकझोर कर रख दिया था। परंतु कबीर जानते थे कि केवल विचारों से समाज में परिवर्तन नहीं आता। उस मानवतावादी सोच को जीवन का आधार बनाने के लिए विवेक और ज्ञान के दीप का जलना आवश्यक है। इसी आत्मज्ञान और चेतना के जागरण की खोज कबीर को पंचगंगा घाट की सीढ़ियों तक ले जाती है, जहां से शुरू होता है उनके जीवन में मानवता का महत्व। पंचगंगा घाट की सीढ़ियां सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, और भोर की हल्की लाली वहां प्रायः छाई रहती है। एक दिन स्वामी रामानंद जी स्नान करके लौट रहे थे और कबीर सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। अचानक स्वामी जी का पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुख से सहज ही निकला, राम राम बोला वत्स, राम राम बोलो वत्स। स्वामी रामानंद जी की आवाज सुनकर कबीर चौंक पड़ते हैं और बहुत ही श्रद्धा से रामानंद जी के चरण स्पर्श करते हुए आग्रह करते हैं,
1: गुरुदेव, आपके मुख से निकला यह राम नाम आज से ही मेरे जीवन का परम सत्य बन गया है। आज से आप ही मेरे

0: मार्गदर्शक है।
1: कबीर की बात सुनते ही रामानंद गंभीर हो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद बोलते हैं, उठो कबीर, लोग कहते हैं कि तुम जुलाहे हो और समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करते हो। तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो कबीर, क्या पाना चाहते हो?
0: गुरुदेव, मुझे कोई तंत्र मंत्र या ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो मुझे दूसरों से अलग या ज्ञानी होने का अहंकार दे। मुझे तो वह ज्ञान चाहिए जो मेरे भीतर के मैं अर्थात अहंकार को मिटा दे और मुझे हर पीड़ित, शोषित और उपेक्षित मानव के दुख से जोड़ सके।
1: कबीर की बात सुनकर रामानंद बहुत प्रभावित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कबीर के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, साधु कबीर साधु, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य के भीतर करुणा, दया और समरसता जगाए, जो ईश्वर को इधर उधर खोजने के बजाय हर जीवित प्राणी में देखना सिखाए, वही सच्चा ज्ञानी है। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।
0: गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे समझ आ गया है कि गुरु का कार्य ईश्वर तक पहुंचाना तो है ही, पर उससे भी पहले मनुष्य को एक संवेदनशील मानव बनाना है। अब यह जीवन केवल राम नाम के सुमिरन और मानवता की सेवा के लिए समर्पित है।

0: प्रिय श्रोतागण, स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा और राम नाम का महामंत्र प्राप्त करने के बाद कबीर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गुरु के ज्ञान ने उनके भीतर के अहंकार को मिटाकर उन्हें सर्व मानव के प्रति एक अत्यंत संवेदनशील और दयालु मनुष्य बना दिया था। परंतु कबीर देख रहे थे कि समाज में लोग ज्ञान के नाम पर केवल मोटी मोटी किताबों और शास्त्रों में उलझे हुए थे। अधिकांश विद्वान किताबी पन्नों में ज्ञान ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके सामने तड़पते और रोते हुए इंसान का दुख उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर समझ चुके थे कि जब तक किताबी ज्ञान की इस निरर्थक बहस को खत्म करके लोगों के मन में आत्मीय संवेदना और प्रेम नहीं जगाया जाएगा, तब तक सच्चा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसी मानवीय सोच को लेकर कबीर काशी के भरे चौराहे पर पहुंचे थे, जहां विद्वानों के बीच किताबी श्रेष्ठता की बहस चल रही थी। एक विद्वान कबीर से कहता है,
1: कबीर, तुम ही न्याय करो, हमारे शास्त्रों का ज्ञान सर्वोपरि है या विद्वानों के द्वारा लिखी गई किताबों का? कौन अधिक ज्ञानी और विद्वान है?
0: संत रविदास भी मुस्कुराते हुए कबीर को छेड़ते हैं।
1: हां कबीर, सभी लोग पूछ रहे हैं, तुम बताओ कि असली ज्ञान किस किताब में छुपा है?
0: कबीर एक रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसे पुचकारते हुए कहते हैं,
2: आप दोनों प्रकांड विद्वान हैं, परंतु यदि आपकी किताबों ने आपको इस छोटे से बच्चे का दुख समझना नहीं सिखाया तो यह कैसा ज्ञान है? पन्नों में लिखा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह मनुष्य के भीतर दया और संवेदना न जगाए।
0: उस विद्वान को बहुत क्रोध आया कि कबीर ऐसा कैसे कह सकता है, और वो चिल्ला पड़ता है,
1: कबीर, शास्त्र और किताबी विद्या ही तो मनुष्य को महान और ज्ञानी बनाती है।
0: कबीर बहुत ही सौम्य स्वर में कहते हैं,
2: पंडित जी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में होता है। यदि ज्ञान पाकर भी इस संसार में इंसान के मन से अहंकार न छूटे और दूसरे मानव के प्रति प्रेम न जगे तो वह ज्ञान केवल एक बोझ है, एक बोझ।
0: पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होए। संत रविदास विचार मग्न हैं। फिर कबीर से वे पूछते हैं, तो तुम्हारे अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है कबीर?
2: सच्चा ज्ञानी वही है जो किताबी अक्षरों के आगे से आगे बढ़कर मानव हृदय की पीड़ा को पढ़े, दूसरों के दुख में भागीदार बनना, छुआछूत और ऊंच नीच के भाव को मिटाना और हर इंसान से निस्वार्थ प्रेम करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।
0: दोनों विद्वान कबीर की यह बात सुनकर निरुत्तर हो गए और उन्हें समझ आ गया कि मानवीय संवेदना के बिना किताबी ज्ञान व्यर्थ है।

0: काशी के चौराहे पर किताबी ज्ञान की निर्थकता को सिद्ध करने और विद्वानों को आचरण तथा प्रेम का पाठ पढ़ाने के बाद कबीर के विचार पूरे नगर में फैलने लगे। पूरे नगर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैलने लगे। गांव-गांव में उनके विचारों को दोहराया जाने लगा। कबीर समझ चुके थे कि केवल किताबी बहसों को हराना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज की जड़ों में जमे उस ढोंग, छुआछूत और कर्मकांडीय पाखंड पर प्रहार करना आवश्यक है। जब विद्वान आचरण की परीक्षा में असफल सिद्ध हुए तो कबीर ने सीधे समाज के उस यथार्थ रूप को बदलने का बीड़ा उठाया। जहां एक ओर भक्ति का ढोंग रचा जा रहा था और दूसरी ओर श्रमजीवी और पीड़ित इंसान को नीच मानकर दूर ढकेला जा रहा था, इसी सामाजिक अंधकार, जीव हिंसा और भेदभाव को दूर कर जनता को जागृत करने के उद्देश्य से कबीर अब काशी की उन गलियों और बाजारों की ओर बढ़ते हैं जहां लोग दिग्भ्रमित थे। एक नागरिक, एक श्रमजीवी से दूर हटते हुए कहता है, अरे रे रे रे, दूर हटो, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कबीर ये सब देख रहे थे। उसने उस श्रमजीवी को संभालते हुए कबीर ने कहा,
1: ठहरो भाई, यह कैसा धर्म है जो मनुष्य के स्पर्श मात्र से भ्रष्ट हो जाता है? जब हम सबकी देह एक ही माटी और रक्त से बनी है तो फिर यह छुआछूत कैसा? किसी को अछूत कहना वास्तव में मानवता की आत्मा को ललुहान करना है।
0: कबीर की बात सुनकर वहां उपस्थित एक प्रकांड विद्वान, जो अपने आप को ऐसा मानते थे, गुस्से में आ जाते हैं और कह उठते हैं, कबीर, तुम शास्त्रों की मर्यादा और हमारी पवित्र रीतियों का अपमान कर रहे हो। हम जप, तप, तिलक और बलि से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उस विद्वान की बात सुनकर कबीर करुणा के साथ कहते हैं,
1: पंडित जी, तिलक लगाने और माला फेरने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। यदि आपके मन में किसी भूखे, नंगे और पीड़ित मानव के लिए दया नहीं है तो आपकी सारी भक्ति और पूजा ढोंग है। निर्बल को सताना और बेजुबान जीवों को की बलि देना धर्म नहीं, अधर्म है।
0: जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर की बात सुनकर वह नागरिक बहुत शर्मिंदा होता है और पश्चाताप में कहता है, कबीर जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे यह बताइए, फिर सच्चा धर्म और भक्ति क्या है? हमें कौन से कर्म करने चाहिए?
1: सच्चा धर्म ऊंच नीच के भेद को मिटाकर पीड़ित मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा और मानवीय गरिमा की रक्षा है।
0: कबीर की निर्भीक और करुणा भरी बातें सुनकर बाजार में उपस्थित लोग छुआछूत और आडंबर त्यागने का संकल्प लेने लगते हैं। समाज में एक बदलाव की शुरुआत होती है। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारन आपने चले हमारे साथ। छुआछूत और बाहरी आडंबरों पर करारा प्रहार करके कबीर ने समाज को समझाया कि मानव की गरिमा ही सबसे बड़ा धर्म है। परंतु केवल आडंबर त्याग देना ही पर्याप्त नहीं था, प्रश्न यह भी था कि सच्चा मनुष्य

0: जीवन कैसे जिए। उस समय कई साधु सन्यासी संसार परिवार और अपने कर्तव्यों को छोड़कर जंगलों में भाग रहे थे और इसे ही ईश्वर प्राप्ति मान रहे थे। कबीर समझ चुके थे कि समाज और असहाय मानव को उसके हाल पर छोड़कर भागना मानवता नहीं है। ईश्वर की सच्ची साधना कर्म श्रम और आत्मीय प्रेम में है। कबीर की साधारण सी कुटिया थी जहां वे बहुत ही तल्लीनता के साथ करघे पर कपड़े बुनते थे और एक दिन वे अपने कर्म में तल्लीन थे। तभी एक वैरागी सन्यासी उनकी कुटिया में प्रवेश करता है। कबीर को काम करते देख बहुत ही हैरानी से सन्यासी कहता है, कबीर तुम ज्ञानी होकर भी इस मोहमाया और गृहस्थी के झंझट में पड़े हो। ईश्वर को पाना है तो इस संसार परिवार और श्रम का त्याग करके जंगलों की ओर ध्यान लगाने के लिए भागो, यहां तुम क्या कर रहे हो। कबीर उस सन्यासी की बात सुनकर चौंक पड़ते हैं और तुरंत करघे से हाथ रोककर बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ कहते हैं,
1: स्वामी जी, संसार को छोड़ देना तो बहुत आसान है, पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना मानवता कैसे हो सकता है। यह कपड़ा जो मैं बुन रहा हूं, यह किसी नंगे शरीर को ढकेगा। मेहनत करके कमाना और चार भूखों का पेट भरना ही तो असली साधना है, क्या कहते हैं आप?
0: पर कबीर, शास्त्रों का अध्ययन और तपस्या ही तो मुक्ति का मार्ग है।
1: पोथियां पढ़कर पंडित बनना बहुत सरल है स्वामी जी, कहा भी गया है ना, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। परंतु यदि मन में अपने साथी मनुष्य के लिए निष्काम प्रेम और सेवा का भाव नहीं है तो यह सारा ज्ञान व्यर्थ है। अपने परिवार और समाज के बीच रहकर पसीना बहाना, भूखे को रोटी देना और हर मानव से निस्वार्थ प्रेम करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी इबादत है।
0: अर्थात कर्म से भागना नहीं बल्कि श्रम और प्रेम के साथ मानव मात्र की सेवा करना ही धर्म है, आप ऐसी बात बोल रहे हैं?
1: बिल्कुल, जो हाथ मेहनत करते हैं और जो हृदय मानव मात्र के लिए धड़कते हैं, ईश्वर वही निवास करता है।
0: सन्यासी को कबीर के श्रम और प्रेम के इस मानवीय दर्शन में ईश्वर की सच्ची झांकी मिल जाती है।

0: प्रिय श्रोतागण, गृहस्थी में रहकर श्रम करने और ढाई आखर प्रेम से मानव सेवा का संदेश देने वाले कबीर साधारण जनता के दिल में बस चुके थे। परंतु कबीर का यह प्रेम केवल भावुकता नहीं था, बल्कि उसमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का प्रचंड साहस भी था। जब श्रमजीवियों और निर्बल मनुष्यों पर धार्मिक व राजनीतिक सत्ताधीशों का अत्याचार बढ़ता, तो कबीर का यही प्रेम न्याय की ढाल बन जाता था। कबीर भली भांति जानते थे कि सत्य के बिना मानवता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसी मानवीय अधिकार और न्याय की रक्षा के लिए वे शोषकों के सम्मुख निर्भय होकर खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसी ही घटना घटी। राज दरबार का प्रांगण सजा हुआ था। सत्ताधीश शासक अपने सिंहासन पर बैठा था। कबीर को उनकी निर्भीक वाणी और शोषण के विरोध में आवाज उठाने के कारण बंदी बनाकर लाया गया था। दरबार में भय का सन्नाटा छाया हुआ था। शासक बहुत ही कड़े लहजे में कहता है,
1: कबीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी नीतियों और हमारी व्यवस्था का विरोध करो, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगता है?
0: उस शासक की बात सुनकर कबीर बिना किसी भय के शांत और बहुत ही दृढ़ निश्चित स्वर में कहते हैं,
2: राजन, भय तो उसे होता है जो असत्य और छल के सहारे जीता है। मुझे किसी सत्ता का भय नहीं है, क्योंकि मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं।

0: बल्कि उस असहाय और पीड़ित मानव के अधिकारों के लिए बोल रहा हूं जिसे आपकी व्यवस्था पीस रही है।
1: वहीं उपस्थित दरबारी भी चिल्ला उठता है, कबीर, राजा के सम्मुख झुकना ही तुम्हारा धर्म है, यही सत्य है।
0: नहीं, जो सत्य निर्बल का शोषण करे वह सत्य नहीं हो सकता। किसी मनुष्य की गरिमा को कुचलना और अत्याचार करना सबसे बड़ा पाप है। सत्य का अर्थ है यही है कि हम बिना किसी स्वार्थ और डर के पीड़ित मानव के साथ खड़े रहें हमेशा।
1: कबीर, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर के तेज से प्रभावित होकर शासक को भी कहना पड़ता है, तो क्या तुम अपने विचार बदलने के बजाय प्राण देना स्वीकार करोगे कबीर?
0: राजन, शरीर तो माटी है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि मैं अत्याचार के सामने चुप रहा तो मानवता मर जाएगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं सत्य और न्याय के पक्ष में निर्भय होकर बोलता रहूंगा।
1: कबीर की इस अदम्य निर्भयता और मानवीय निष्ठा के आगे शासक का अहंकार चकनाचूर हो जाता है और वह कबीर को आदर सहित मुक्त कर देता है। सत्य और निर्भयता के बल पर सत्ता के अत्याचार को झुकाने वाले कबीर जीवन भर अन्याय, पाखंड और असमानता के विरुद्ध मानवता की ढाल बने रहे। वे आजीवन इंसानों को एक दूसरे से जोड़ते रहे, पर जब उनके जीवन का अंतिम पड़ाव आया तब भी समाज में एक बड़ा अंधविश्वास व्याप्त था कि काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नरक। कबीर जानते थे कि जीवन भर जो मानवता का संदेश उन्होंने दिया है उसे मुकम्मल करने के लिए इस अंधविश्वास की अंतिम दीवार को भी ढहाना होगा। और एक दिन वह समय भी आया। मगहर का शांत वातावरण था, कबीर वृद्ध हो चुके थे। कुछ लोग कहते थे कबीर ने 120 साल की अवस्था पूरी कर ली है और अंतिम सैया पर लेटे हुए थे। उनके एक तरफ हिंदू शिष्य तो दूसरी तरफ मुस्लिम शिष्य खड़े थे। बाहर जनता अश्रुपूरित नेत्रों से कबीर के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। हिंदू शिष्य भाव विभोर होकर कहता है, गुरुदेव, आप अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर क्यों चले आए? लोग कहते हैं कि यहां प्राण त्यागने से नरक मिलता है और गधा में जन्म होता है।
0: अरे भाई, यदि काशी में मरने से ही मुक्ति मिलती तो ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा का क्या मूल्य रह जाता? ईश्वर तो हर जगह है। अंधविश्वासों को तोड़कर इंसानों के मन से भय मिटाना ही तो सच्चा धर्म है।
1: मुस्लिम शिष्य भी जो है कबीर की अवस्था देखकर व्याकुल है। वह भी अपनी भावना प्रकट करता है, गुरुदेव, आपके बाद हम आपस में असमंजस में हैं। हिंदू शिष्य आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से जलाकर करना चाहते हैं और हम लोग मुस्लिम रीति से आपको दफनाना चाहते हैं। हम क्या करें गुरुदेव, क्या करें?
0: अरे नादानो, जीवन भर मैंने तुम्हें इंसान बनना और आपस में प्रेम करना सिखाया और तुम मेरी मृत्यु के बाद भी मुझे हिंदू

0: और मुसलमान में बांट रहे हो, मेरे शरीर को लेकर झगड़ा मत करो। कपड़े के कफन के टुकड़े करने से बेहतर है कि अपने दिलों की नफरत को जला दो, जला दो।
1: क्या काशी क्या ऊसर मघर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामय कौन निहोरा। कबीर अंतिम सांस लेते हुए कहते हैं,
0: याद रखना कबीर, कबीर किसी एक संप्रदाय का नहीं, पूरी मानवता का है। आपस में मिलजुल कर रहना, यही मेरी सच्ची याद होगी।
1: और कबीर के प्राण त्यागते ही जब चादर हटाई गई, तो वहां शरीर की जगह केवल सुगंधित कुछ फूल मिले। दोनों संप्रदायों ने आधे आधे फूल बांटकर प्रेम से एक दूसरे को गले लगा लिया और कबीर का विश्व बंधुत्व का संदेश अमर हो गया।

0: हाँ प्रिय श्रोतागण, कहानी के इस भाव से हमें क्या संदेश मिलता है?
1: जी,
0: संदेश यही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है। कबीर ने अपने जीवन और वाणी के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत, बाहरी आडंबर और सामाजिक असमानता का विरोध किया। उनके लिए ऊंच नीच और जाति पाति की पहचान से ऊपर एक ऐसी पहचान थी इंसानियत की। कहानी में कबीर यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, ज्ञान तब सार्थक होता।

0: होता है जब वह मनुष्य के भीतर दया, प्रेम, करुणा और संवेदना का प्रचार और विस्तार करे। इसलिए उनका प्रसिद्ध दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकान, जो घट प्रेम न सचरे, सो घट जान मसान। प्रेम ना तो खेतों में उपजता है और ना ही बाजार में बिकता है। जिस हृदय में प्रेम नहीं वह शमशान के समान मृत है। केवल पुस्तकें पढ़ना इसे जीवित नहीं कर सकता। कबीर हमें यह भी सिखाते हैं कि मानवता केवल भावुकता का नाम नहीं है। जहाँ किसी कमजोर, पीड़ित या शोषित मनुष्य के साथ अन्याय हो, वहाँ उसके पक्ष में निर्भय होकर खड़ा होना भी मानवता है। तो श्रोतागण, यह इस कहानी का केंद्रीय संदेश था जिससे आपने कबीर के विचारों को जाना। अब समय हमारा है मुहावरों का। इस बार के जो मुहावरे हैं वे मानवता से ही जुड़े हुए हैं। पहला मुहावरा है दिल पसीजना, दूसरा है गले लगाना। फिर से सुन लीजिए, पहला है दिल पसीजना, दूसरा है गले लगाना, जिसका अर्थ आप खोजिएगा और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पिछली बार के जो मुहावरे थे वो आज़ादी के अवसर पर जुड़े हुए मुहावरे थे। पहला था बेरी काटना, जिसका अर्थ गुरु बिस्वा बताएंगे।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है गुलामी या पाबंदियों को हमेशा के लिए समाप्त करना। और इसमें इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करें तो ऐसा होगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को काट डाला।
0: बहुत अच्छा। दूसरा पंख लगाना,
1: इसका अर्थ है बहुत अधिक स्वतंत्रता पाकर उत्साहित होना या तेजी से आगे बढ़ना। जैसे छात्रावास से घर लौटते ही बच्चों के उत्साह को पंख लग गई। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। छुट्टियों के बाद रोहन छात्रावास से अपने घर लौटा। परिवार से मिलते ही उसके उत्साह को पंख लग गई। उसने माता पिता को बताया कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहता है। पिता ने कहा, उत्साह तभी सार्थक है जब उसके साथ मेहनत और अनुशासन भी हो। रोहन ने इस वाक्य को आत्मसात कर लिया। उसने नियमित पढ़ाई शुरू की और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सच ही है, सही दिशा में मिला उत्साह सफलता की उड़ान को पंख लगा देता है।
0: पंख लगना मुहावरे पर अपनी स्वरचित छोटी सी कहानी सुनाने के लिए गुरु बिस्वा का हृदय से आभार।
1: धन्यवाद।
0: श्रोतागण, आपके लिए आमंत्रण संदेश भी है। आज विश्व मानवतावादी दिवस पर संत कबीर की कहानी ने हमें एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा प्रश्न दिया है, हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? उत्तर है इंसान होना। हर घर, हर परिवार और हर समाज में मानवता से जुड़ी कोई न कोई छोटी सी कहानी अवश्य होती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना, कभी किसी जरूरतमंद का हाथ थामना, कभी भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाना और कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सभी मानवता की कहानियां हैं। अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है कि अपनी ऐसी अनकही कहानी हमें लिखकर भेजिए जो मानवता, प्रेम, करुणा, समानता, सेवा, सद्भाव और सामाजिक न्याय से जुड़ी हो। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में सुनाई जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा ही बनेंगी। तो आइए, आज संत कबीर की वाणी से प्रेरणा लेकर हम एक छोटा सा संकल्प लें। किसी को उसकी जाति से नहीं, इंसान के रूप में देखेंगे। किसी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ेंगे और जहां संभव होगा वहां प्रेम, करुणा और सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। अपनी रचनाएं professorrasik@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कहानी भी किसी के हृदय में मानवता का एक बड़ा दीप जला सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।
1: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों और सूचनाओं के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, न योनिर नापि संस्कारो न श्रुतम न च संततिः, कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्। अर्थात मनुष्य की श्रेष्ठता केवल उसके जन्म, संस्कार, शास्त्रीय ज्ञान या वंश परंपरा से निर्धारित नहीं होती, उसका आचरण ही उसकी वास्तविक पहचान और श्रेष्ठता का आधार है। कबीर जी भी अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। अर्थात किसी

साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके जान और गुणों को देखना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य उसकी म्यान से नहीं बल्कि उसकी धार से होता है, वैसे ही मनुष्य का मूल्य उसके जान, गुण और आचरण से होता है। यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है श्रोताओं, कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म, ज्ञान, चरित्र और व्यवहार से सिद्ध होती है। तुलसी, कबीर आदि महान व्यक्तित्व अपने ज्ञान और कर्म के ही बल पर अमर हुए। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को आजा दीजिए। श्रोताओं, आप सभी को तुलसी जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: शाम के ठीक 6:03 हुए हैं। देरी से इस बुलेटिन की शुरुआत करने के लिए अहम शुभ प्राती हैं। 19 अगस्त 2026 की सुर्खियां इस प्रकार हैं। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापारिक सहयोग और मजबूत किया जा रहा है। इस दिशा में आज कुदा और सेंटर में एक बिजनेस फोरम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था दोनों देशों के बीच निवेश की संभावनाओं को किस प्रकार तलाशा और बढ़ाया जाए। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नेटवर्क को नदियों से रोजाना 1,20,000 क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होता है। सितंबर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के आने से ये क्षमता बढ़कर 1,50,000 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में स्थानीय कलाकारों और इतिहासकारों के बीच एक राउंड टेबल लगा। ये बैठक गुलामों के व्यापार और दास्तां उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों को लेकर लगी। आज तुलसीदास जयंती है, उस संत कवि को याद करने का दिन जिन्होंने रामकथा को जन जन की भाषा में पहुंचाया। सदियां बीत गई लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयां आज भी घरों और रामायण मंडलियों में उसी श्रद्धा से गूंजती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोलकाता शहर में आज तड़के सुबह एक होटल में भयानक आग भड़की, कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच सहयोग और मजबूत किया जा रहा है और इस दिशा में आज कुदा और सेंटर में एक बिजनेस फोरम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था दोनों देशों के बीच निवेश की संभावनाओं को किस प्रकार तलाशा और बढ़ाया जाए। इस बैठक में विभिन्न सेक्टरों के 50 से ज़्यादा पेशेवर शामिल हुए। चर्चा का मुख्य मकसद ठोस व्यापारिक पहलुओं और कारोबार की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना रहा, ताकि अलग अलग तरह के क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस फोरम के अंतर्गत मॉरिशस के उद्योग और व्यापार सदन तथा जिम्बाब्वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। डर्बन में 46वां सादेक शिखर सम्मेलन कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ संपन्न हुआ, जिसका मकसद इलाकाई एकीकरण और विकास तेज करना रहा। मुख्य नतीजों में सादेक टूरिज्म प्लेटफॉर्म यूनी वीजा शुरू करने के समझौते को मंजूरी, कृषि व्यापार मजबूत करना और बुनियादी ढांचे और औद्योगिकरण के लिए फंड जुटाना शामिल रहा। साथ ही इस इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता जताई गई। समापन समारोह के दौरान अंतिम विज्ञप्ति पढ़कर सुनाई गई। इस पर अब्देर बुलाकी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: डर्बन में एकत्रित सादेक के संचालकों ने इलाकाई एकीकरण को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख फैसले अपनाए। इनमें एक पर्यटन से संबंधित है। समिट में सादेक की यूनी वीजा स्थापित करने की संधि पर स्वीकृति दी गई और सदस्य देशों से इस पर हस्ताक्षर करने की मांग की गई। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, इस शिखर सम्मेलन ने एक आधारभूत सिद्धांत की पुनः पुष्टि की है। समृद्धि, सुरक्षा, विकास और हमारे देश की भावी उन्नति को अलग नहीं रखा जा सकता। ये पूरे इलाके की विकास परियोजना से जुड़ी है। आर्थिक स्तर पर संचालक औद्योगिकरण और मूल ढांचे के विकास को गति देना चाहते हैं। उन्होंने सादेक की इलाकाई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के इलाकाई फंड के कार्यान्वयन की संधि का अनुसमर्थन करने की भी मांग की। अन्य प्राथमिकता व्यापार आदान प्रदान का मजबूतीकरण। समिट में इलाकाई वायु चेन के विकास, कृषि प्रोसेसिंग, व्यापार बाधाएं हटाने और इलाके के देशों के बीच सामान की बेहतर आवाजाही पर चर्चा हुई। इस कदम से खाद्य सप्लाई और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। शांति और सुरक्षा के मामले में समिति ने लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य

0: राज्य में शांति बहाल करने की कोशिशों के प्रति अपना समर्थन दोहराया। साथ ही मडागास्कर और मोजाम्बिक में बातचीत की पहल का स्वागत किया। आखिर में सादेक की अध्यक्षता औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन 2027 में जाम्बिया में लगाया जाएगा।
1: देश में पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है। आज मोहवाक्वा जलाशय का जलस्तर मात्र 40% पर दर्ज किया गया। स्थिति को ध्यान में रखते हुए पानी के इस्तेमाल पर कुछ समय से पाबंदियां लगी हुई हैं और पानी के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल हो रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नेटवर्क को नदियों से रोजाना 120,000 क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होता है। सितम्बर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के आने से ये क्षमता बढ़कर 150,000 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। कल 18 अगस्त को लाथुकेनी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में स्थानीय कलाकारों और इतिहासकारों के बीच एक राउंड टेबल लगा। ये बैठक गुलामों के व्यापार और दास्ता उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों के संदर्भ में लगी। गुलामी से जुड़ी तस्वीरों और प्रतिकोण को नए नजरिए से देखने पर केंद्रित इस चर्चा का मकसद पीड़ितों के तौर पर दिखाए जाने के बजाय पीड़ितों के तौर पर दिखाए जाने के बजाय गुलामों की गरिमा को उजागर करना और सुधारात्मक न्याय में कला की भूमिका पर विचार करना रहा। पेसा की परीक्षाएं लगभग 2 महीनों में लगेंगी। इसकी तैयारी के लिए ज्ञाना सिबागत और नौशाबा दीन मोहम्मद को एक एक पर्किंस ब्रेल मशीन प्राप्त हुआ है। लुइस लाजेस ट्रस्ट फंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड की 6वीं कक्षा की इन 2 छात्राओं को ये उपकरण पिछले साल एक ब्रेल प्रतियोगिता जीतने के बाद मिला था। ये पहल खास जरूरतों वाले छात्रों को बेहतर सहायता देने की कोशिशों का हिस्सा है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर गीता सुनार का विवरण।
2: ये मशीन ग्रेड 6 की इन 2 छात्राओं ज्ञाना और नौशबा, जिन्हें आंखों से देखने की समस्या है, को पेसाक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद करेगी। उन्हें पिछले साल जीती गई एक ब्राइल प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में एक एक पर्किंस ब्रेल मशीन दी गई है। घर पर और स्कूल में इससे मदद मिलेगी। बहुत नोट्स होते हैं, बहुत कुछ सीखना होता है। इससे मुझे क्लासवर्क और होमवर्क करने में मदद मिलेगी। पेसाक परीक्षा में इन छात्राओं को देश के अन्य सभी उम्मीदवारों की तरह ही परीक्षा देनी होती है। हालांकि उनके लिए कुछ छोटे बदलाव किए जाते हैं और परीक्षा का समय बढ़ाकर 3 घंटे किया जाता है। इतने लंबे समय तक परीक्षा देने और तेजी से तथा आसानी से टाइप करने के लिए सही उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोई क्लासेस ट्रस्ट फंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड की अधिकारी ललिला राजमन मुनि कहती हैं, पर्किंस बहुत ही महंगा है, 75,000 रुपए या इससे ज्यादा की है। ये एक नाजुक मशीन है, स्कूल में इसकी कमी है। इन 2 पर्किंस से पेसाक में इन बच्चों की मदद होगी। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद कहते हैं, सरकार अभिभावकों और अध्यापकों की मदद करती है ताकि वे इन बच्चों की मदद कर सके। ये शैक्षणिक उपकरण है और सब जगह उपलब्ध नहीं होते। मंत्रालय के स्तर पर हम इन बच्चों को अपना सहयोग दे रहे हैं। इस समारोह के दौरान छात्रों के हुनर को जानने का मौका मिला।
1: पर्यावरण की रक्षा का कारण हो या ईंधन की बचत करने का उपाय, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकल काफी चर्चे में हैं। लेकिन क्या घर पर गाड़ी चार्ज करने को लेकर कोई पाबंदी या जरूरी शर्तें हैं? ये उन सवालों में एक हैं जो गाड़ी खरीदने के इच्छुक लोग सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि बदलाव तो होने ही हैं, खासकर बिजली सप्लाई को लेकर। और भविष्य की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो क्या बिजली नेटवर्क मांगे पूरा कर

0: पाएगा। पाई के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लगे मोटो शो के अंतर्गत ऐसी गाड़ियों को लेकर लोगों के बीच खास उत्साह देखा गया। दैविक राजकुमार, करुणा लालू।
1: 28 वर्षीय उद्यमी कलश बिच्चू पेट्रोल से इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाने की चाह रखते हैं। हाल में लगाई गई ऑटोमोबाइल शो के दौरान उन्होंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की। पेट्रोल के बढ़ते दाम के साथ कार बदलने को सोच रहे हैं, साथ में पर्यावरण की रक्षा भी होगी जहां शून्य उत्सर्जन होगा।
2: L'environnement qui commence à y prendre plus avec zéro émission avec voiture électrique.
1: इस रुचि के साथ उनके मन में एक चिंता भी है वाहन को चार्ज करने की सुविधा के बारे में।
2: Je pense pas Mauricine assez adapté et assez solide équipement.
1: मुझे नहीं लगता कि मॉरिशस में चार्जिंग के लिए पर्याप्त सौर्य उपकरण हैं। यदि 12 घंटों के लिए बिजली कटौती हो तो क्या होगा, कार का उपयोग कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का मतलब कुछ बदलाव करना भी है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, वाहन को इस मीटर से चार्ज नहीं किया जा सकता जो घर की बिजली आपूर्ति करता है।
3: Le restriction c'est plutôt de l'avantage le client.
1: डॉक्टर इस्माइल आदम इसाक जी कहते हैं पाबंदी ग्राहक के हित में है। सीयूबी से अर्जी करने पर अलग से मीटर मिलेगा जिससे 4 रुपए यूनिट पर गाड़ी चार्ज की जा सकेगी। ऑफ पीक में चार्ज करना फायदेमंद होगा, पीक टाइम के समय 10 रुपए यूनिट होगा। कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना भी आवश्यक हो सकता
3: है।
1: एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के वक्त 2 या 3 घरों की सप्लाई ले सकती है, इसलिए गाड़ी की चार्जिंग के लिए नेटवर्क कायम नहीं किया गया है। हमें बताने पर हम निरीक्षण करेंगे, वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की क्षमता को देखेंगे। व्यक्ति को इसमें थोड़ा सा योगदान करना होगा, इसीलिए कुछ कार डीलर एक वैकल्पिक समाधान पेश कर रहे हैं, चार्जिंग के लिए समर्पित फोटोवोल्टाइक
4: प्रणालियां।
1: फैजल दिलियो ने कहा इलेक्ट्रिक कार मानसिकता में एक बदलाव है, बदलाव से लोगों को थोड़ा सा भय है। 100% इलेक्ट्रिक के साथ एक विकल्प भी प्रस्तावित कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार लगातार अधिक प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। अरशद बाउचा कहते हैं नए मेक के साथ इलेक्ट्रिक कार बेहतर हुई है, मंडी में काफी प्रतिस्पर्धा भी है दाम को लेकर और बैटरी भी। लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि इसके बारे में उन्हें कम जानकारी है।
5: Peut-être qu'ils n'ont jamais conduit un électrique ou ils ne sont pas à l'aise avec les technologies ou personne ne les a éduqués, les a expliqué c'est quoi une voiture électrique, comment ça fonctionne.
1: लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो क्या सीईबी इस नई मांग को पूरा कर पाएगा? चुनौतियों को लेकर नहीं, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्क 2 हिस्सों में है, लो और हाई वोल्टेज। आवासीय इलाकों में केबल हैं, यदि इलेक्ट्रिक कार हो तो ट्रांसफॉर्मर और कुछ केबल बदलने होंगे। नज़र रख रहे हैं, ऑफ टाइम में चार्जिंग करना ही बेहतर समाधान होगा। इस वर्ष के शुरू से अब तक सीयूबी को इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की ओर से नए कनेक्शन की 1,191 मांगें प्राप्त हुई हैं, जबकि 2025 में ये संख्या 1,349 थी।
0: 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पोर्ट लुइस का थिएटर एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है, लेकिन इस ऐतिहासिक इमारत की नई शुरुआत के पीछे मरम्मत का एक लंबा सफर भी है। काम में देरी हुई और खर्च भी लगातार बढ़ता गया। आज इस परियोजना की लागत करीब 500 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। आखिर इन वर्षों में इस थिएटर पर कब और कितना पैसा खर्च हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंजुराम गुलाम, गीता सुना रही।
6: पहला अध्याय 2008 में शुरू होता है। पोर्ट लुइस का थिएटर अपने दरवाजे बंद कर देता है। करीब 200 साल पुरानी ये इमारत समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। चूहे और दीमक भी इसे नुकसान पहुंचा रहे थे। पोर्टलिस नगर पालिका के अनुसार ये इमारत सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए नगर पालिका के पास सिर्फ 50 मिलियन रुपए थे, जो इतने बड़े काम के लिए काफी नहीं थे।

0: करीब 10 सालों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। 2018 में जाकर पहली बार काम शुरू हुआ। ये पहला चरण इमारत को मजबूत करने पर केंद्रित था। ये काम 2020 में पूरा हुआ, जिसकी लागत करीब 100 मिलियन रुपए थी। इस काम में फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने भी सहयोग दिया। भूषण रामलोल कहते हैं,
1: Le théâtre de Pauli, le grand floor du théâtre de Pauli, il est situé sous le niveau de la mer.
0: Donc, थिएटर का ग्राउंड फ्लोर समुद्र के जल स्तर के नीचे है। हमें फिर से एक बेसमेंट बनाना पड़ा। एक बंकर भी बनाया गया ताकि जब पानी ऊपर चढ़े तो उसमें न भरे। छत पूरी तरह सड़ गई थी, उसे पूरी तरह फिर से बनाया गया उन्हीं लकड़ियों से जो पहले से वहाँ मौजूद थी। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले 3 साल बीत गए। जुलाई 2024 में भूषण रामलोल की अगुवाई वाली अबी अबी कंस्ट्रक्शन को दूसरे चरण का ठेका करीब 400 मिलियन रुपए में मिला। इस बार मकसद सिर्फ इमारत को बचाना नहीं बल्कि उसके पुराने गौरव को वापस लाना था। सुनहरी सजावट, बालकनियां और 1850 की डोम को उसके मूल रूप में फिर से चमकाने का काम किया जाना है। डोम को फिर से बनाने के अध्ययन के लिए करीब 25 मिलियन रुपए का बजट था। हमने काफी बचत की और इसमें करीब 15 मिलियन रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर पोर्टविस थिएटर के पुनर्निर्माण की लागत अब करीब 500 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। सभी तरह की समस्याओं के साथ साथ कई चीजों पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब आखिरी अध्याय की तैयारी चल रही है। थिएटर को पहले अगस्त 2025 में दोबारा खोलने की घोषणा की गई थी। अब इसके सितंबर 2026 में खुलने की उम्मीद है। लॉर्ड मेयर कहती हैं, अगर निर्धारित अवधि यानी अगस्त के आखिर तक ये मिल जाएगा तब सितंबर तक ये कार्यरत हो जाएगा। करीब 2 दशकों के इंतजार के बाद पोटरी थिएटर आखिरकार एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है।
2: इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के अध्यक्ष पद पर सतीश फुगू की नियुक्ति के बाद 2 नए कानूनी पेशेवर इस संस्था के साथ जुड़े हैं। रेणुका ब्रिजमोहन और मोहम्मद उजीर ने आज स्टेट हाउस रेजवे में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। नए नियुक्त सदस्य उस कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं जिसके तहत ये कमीशन कार्यरत है। IPCC का काम पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करना है। आज तुलसीदास जयंती है। उस संत कवि को याद करने का दिन जिन्होंने रामकथा को जन जन की भाषा में पहुंचाया। सदियां बीत गई लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयां आज भी घरों और रामायण मंडलियों में उसी श्रद्धा से गूंजती हैं। मॉरिशस में भी रामायण पाठ की ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। आखिर तुलसीदास की रचना में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को जीवन, कर्तव्य और मर्यादा का रास्ता दिखाती है? इसी पर हमारी ये रिपोर्ट पेश है आस्था गोविंद चितामन की।
3: तुलसीदास जयंती उस महान संत कवि के स्मरण का अवसर है जिन्होंने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। 16वीं शताब्दी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। भगवान राम के चरित्र और उनके आदर्शों को उन्होंने ऐसी सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया जो सामान्य जन के हृदय तक पहुँची।
4: तुलसीदास जी महाराज, उनका जन्म अभी से 500 साल पहले लेते हैं, और जब उनका जन्म हुआ था भारत की स्थिति में थी वो हमको ध्यान में रखना है। मुगल साम्राज्य था और उस समय भारत में 90% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेसी था। और हमारे जितने ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, पुराण, सब संस्कृत भाषा में है, तो आम आदमी को बहुत कठिनाई होती थी कि हमारे धर्म क्या है इसके बारे में जानने के लिए।
3: रामचरितमानस में केवल प्रभु राम की कथा ही नहीं बल्कि जीवन के अनेक पक्षों का भी सुंदर वर्णन मिलता है। कर्तव्य, सेवा, त्याग, पारिवारिक संबंध और सदाचार जैसे जीवन मूल्य

0: इसकी चौपाइयों में समाहित हैं। यही कारण है कि सदियों बाद भी इसकी शिक्षाएं समाज के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं।
1: हमारे पूर्वज आए थे तो सबको मालूम है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आए, पढ़े लिखे लोग नहीं आए थे। रामचरितमानस से उन लोगों ने प्रभावित होकर कितना कठिनाई सहकर जो कुछ भी किया, आज का हम जो जनरेशन है इसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे जितने जो जनरेशन बोलते हैं, जो जेंजी बोलते हैं, जिसको आज बहुत प्रचलित है देश विदेश में, तो इनको जानना चाहिए कि हमारा रूट कहाँ है, किस प्रकार से आज जो कुछ भी है हमारे पास, घर है, नौकरी है, हम हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ भी देखो हिंदू छाए हुए हैं। मैं सिर्फ मॉरिशस की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में भी। तो रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, लोगों की भाषा, जो लोग समझते थे बोलते थे, राम जी की कथा, राम जी की कहानी, इस प्रकार से मास्टरपीस है वो।
0: मॉरिशस में रामायण पाठ की परंपरा भी लंबे समय से हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रही है। सामूहिक पाठ के माध्यम से इसकी चौपाइयां और उनमें निहित जीवन मूल्य आज भी नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं।
2: इससे हमें बहुत उदाहरण मिलता है। और तुलसीदास जयंती वो एक उत्सव नहीं है, वह है भारतीय संस्कृति, भक्ति भावना और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक पावन अवसर है। इसमें हमें शांति मिलती है और फिर हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को भी इसमें लगाते हैं कि हम सच्चाई की ओर चलें, भाईचारे की ओर, भाई भाई में झगड़ा ना हो।
0: युग बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन तुलसीदास की वाणी का महत्व बना रहा। रामचरितमानस आज भी मनुष्य को सदाचार, कर्तव्य और मर्यादित जीवन की प्रेरणा देता है। और शायद किसी महान कृति की वास्तविक शक्ति भी यही है कि वो अपने समय में रची जाए, लेकिन उसका चिंतन किसी एक युग तक सीमित न रहे।
1: बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सौ ग्रंथ न गावा, कि हम जो मनुष्य तन पाए हैं इसके माध्यम से हम अपने को अनुभव कर सकते हैं कि हम एक डिवाइन एंटिटी है। और हम भूल जाते हैं कि रामायण में एक और कैरेक्टर है जो रावण है। रावण को बताया कि वो भी पढ़े लिखे थे, वेद का ज्ञान था उसको, लेकिन वो अपने मन को काबू में नहीं कर पाए थे और अपने सर्वनाश हुआ उसको सब कुछ। तो हम अपने धर्म ग्रंथ को समझते हैं तो वी हैव द रूल ऑफ धर्म एंड द लॉ ऑफ कर्म, इसको दर्शाते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छी तरह से।
0: रामचरितमानस की सदियों लंबी यात्रा इसका प्रमाण है। जब साहित्य जीवन मूल्यों से जुड़ता है तो वो केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं रहता, समाज की चेतना का हिस्सा बन जाता है।
3: भारत के कोलकाता शहर में आज तड़के सुबह एक होटल में भयानक आग भड़की, कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। शुरुआती जांच से पता चला कि एक एयर कंडीशन में विस्फोट होने से आग भड़की होगी। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में करुणा लालू के साथ।
4: बंगाल में एक और दर्दनाक हादसा। मंगलवार देर रात मध्य कोलकाता के एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आसपास के होटलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दुखद घटना में एक बच्चे और महिला सहित 9 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। रात करीब 2 बजे होटल की तीसरी मंजिल पर लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। बेहद तंग रास्तों के कारण दमकल की गाड़ियों को अंदर पहुंचने में कठिनाई हुई। राहत व बचाव दल ने 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। 17 अगस्त की सुबह तारापीठ के होटल विदेशिनी में आग लगने से कम 8 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
3: मौसम का हाल, आम हालत। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है आज रात और कल सुबह

बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्वी और ऊंचाई वाले इलाकों में रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और कल धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। प्रवाह रेखा के पार समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:58 पर और कल सुबह सूर्योदय सुबह 6:28 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और हमारी सहयोगी लुडोविक का सहयोग मिला है कंसल्ट पर, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। लादवा रोड पुत्रदो विलाज में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री सोमदत्त मेपुल जिन्हें बक्स के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रॉय रोड पुत्रदो विलाज में 41 साल के 41 ईयर्स ओल्ड के श्री विकास रामजीदास जिन्हें विकास के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अभिलाषा रामजीदास के घर पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। वालोरी रोड मुकाम में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद राधा जिन्हें दया के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लागरिमा सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। रॉय रोड लावंचुआ में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सितवंती गुंदारी जिन पैदाश नाम सुकालू और जिन्हें मतिया के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके बेटे विशाल गुंदारी के घर लावंचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। रिजर्वर रोड कॉन्फुक्रो में 66 ईयर्स ओल्ड के श्री मारी लावाल दामों उजिया जिन्हें दमन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनिता साकून ननलोल के घर कौफुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि 11 बजे ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: शाम के 6:10 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं RM फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। प्रस्तुत है आपका मनपसंद प्रोग्राम नई सोच कार्यक्रम। जी हाँ, 7 बजे तक आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। कुछ भावगीत आप लोगों के लिए। खूबसूरत शाम है, हवाओं में एक नरमी सी है।

है और दिल में एक नई सोच जग रही है। ज़िंदगी हर दिन हमें कुछ नया देखने, कुछ नया समझने का मौका देती है दोस्तों। जी हाँ, उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और अभी साथ निभाएगा। और कभी एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी मुस्कुराहट सोच बदल देती है, तो कभी एक अच्छा ख्याल पूरी शाम को खूबसूरत बना देता है। तो आइए इस हसीन शाम की शुरुआत करें एक नई सोच, एक अच्छी बात और संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो, आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन।

जहाँ दोस्तों ये ज़िंदगी एक जुआ है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और हिम्मत हारते नहीं है। 6:52 हुए हैं, इसी के साथ नई सोच कार्यक्रम यही समाप्त हो चला, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में हम प्रस्तुत करेंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो रेडियो मनोरंजन धन्यवाद आप साथ दे रहे हैं और हमेशा ऐसे ही साथ दीजिए मैं उषा कौर यहां पर साथ निभाऊंगी 9 बजे तक और आप भी साथ निभाइएगा और जी हां यहां पर 80s और 90s के खूबसूरत सिलेक्शंस पॉपुलर गाने आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है लेकिन फिर भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028074028070 और अपने डेडिकेशन कर सकते हैं मैसेजेस आप नंबर पर भेज सकते हैं 5250620052506200 हमें आपका इंतज़ार है और यहाँ पर आज का जो पहला गाना है हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो रोज़ इस कार्यक्रम को का इंतज़ार करते हैं ताकि वो रिलैक्स कर सके थकावट के बाद बस खूबसूरत गाने सुनने का मन करता है और यहाँ पर लम्हे फिल्म से लिया गया लता जी और हरिहरन की आवाज़ों में

0: खुशियों की आवाज की आवाज
1: की आवाज 7:10 हुए हैं दोस्तों हेल्दी रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना ही जरूरी नहीं है बल्कि बैलेंस फूड प्रॉपर स्लीप और जो हमारे सोच है सकारात्मक भी हो बहुत ही जरूरी है कोशिश करें कि रोज थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज करें ज्यादा ऑयली और जंक फूड से बचें और दिन भर में पानी पिए हद से ज़्यादा भी नहीं जी हाँ साथ ही अपने माइंड को भी हेल्दी रखें थोड़ा टाइम मोबाइल से दूर रहें फैमिली और दोस्त के साथ वक्त बिताएं और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें और हमेशा ये याद रखिए कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है दोस्तों अब हम चलाएंगे अगला गाना विवेक के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम कैटरबोन आप सोच रहे हैं कि उषा जी ने एक्सरसाइज और खान पान के बारे में क्यों ऐसा बात ऐसी बात की क्योंकि विवेक जी जो है अभी घर वापस आए हैं एक्सरसाइज करते हुए और यही संदेश वो देना चाहते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी खाना भी खाना ज़रूरी है और ये गाना उनके लिए उनके दोस्त अमित के लिए और साथ में हमारे सभी सुनने वालों के नाम

0: Continuous music. RM3.
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
2: 7:23 हुए हैं दोस्तों। कहते हैं ना, ज़िंदगी में मुश्किलें सब के सामने आती हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। अगर आज का दिन मुश्किल है तो हिम्मत मत हारिए, कल को बेहतर बनाने का मौका

हमेशा हमारे पास होता है अपने आप पर भरोसा रखिए मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए चलिए गानों के साथ-साथ ऐसी छोटी-छोटी ही बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे बस उम्मीद है कि ये जो शाम है आप खूब एंजॉय कर रहे हैं और जो लोग इस समय खाना खा रहे हैं तो शुभ आहार आपको और जो खाना बना रहे हैं ना तो चलिए गुनगुनाते रहिए हमारे साथ और अगला गाना जो है वो है ज्ञान जी के लिए जी हाँ आप ज्ञान बिहारी जी गाना मांग रहे हैं पत्नी सबिता भाभी गीता संजीव सुनील रानी शीतल और हमारे सभी आरएम फ्री लिसनर्स के लिए दिल वाले का ये खूबसूरत गीत अलका याग्निक और साथ में है कुमार सानू

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: बोलो बोलो, चुप क्यों हो?
1: I like you.
0: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
0: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
0: हाँ,

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:35 हुए हैं श्रोताओ, आज हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पैसा और सुविधाएं ज़िंदगी को आसान बना सकती है, पर अपनों का प्यार और साथ ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। कभी माँ बाप से दो शब्द प्यार से कह दीजिए, कभी किसी दोस्त का हाल पूछ लीजिए, और कभी बिना किसी वजह के अपनों को याद कर लीजिए। छोटी सी बात भी किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। याद रखिए कि रिश्तों को समय और प्यार चाहिए, सिर्फ ज़रूरत के समय याद करना नहीं। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, अपनों की कदर कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए और रिश्तों को दिल से संभालिए। चलिए बढ़ती है आगे। यहाँ पर हमें सुन रहे हैं आकाश जी। हाँ, आप हमें सुन रहे हैं समय, धन्यवाद। और गाना खास कर आप मांग रहे हैं रामधनी बॉयज ऑफ ग्लेनपार्क, जो इस समय श्रावण मास के संदर्भ में आप लोग कांवर बना रहे हैं यात्रा करने के लिए। तो आपकी जो यात्रा है, सफ़र हो, हम यही कामना करते हैं हमेशा। चलिए हमारे सभी शिव भक्त के लिए अगला गाना, और हमारे MBC की रेडियो टीम के लिए भी ये गाना जाएगा। घूंघट से लिया गया, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: चले दोस्तों बढ़ते हैं आगे और 90s के लव सॉन्ग्स की बात ही कुछ और थी। जी हाँ, अभी जो गाना आपने सुना अनुराधा पोडवाल और बप्पी लहरी की आवाज़ों में, इन गीतों में मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि एहसासों में महसूस होती थी। कभी पहली मुलाकात की खुशी, कभी जुदाई का डर, तो कभी किसी के इंतज़ार की खुशी। हर जज्बा एक खूबसूरत धुन बन जाता था। उन गानों की मिठास, उनकी सादगी और दिल को छू लेने वाले बोल आज भी यादों के दरवाजे खोल देते हैं। 90s का दौर ही कुछ ऐसा था। वो तो गुजर गया, लेकिन उस दौर के मोहब्बत भरे गीत आज भी दिल के बहुत करीब है। तो चलिए यादों के उस हसीन दौर में हम लौट चलते हैं और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे स्वर्णल के लिए जो हमें सुन रही है। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। खास गाना आप मांग रही हैं भाषरा वर्ण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान और नव्या के लिए और साथ ही साथ में तिलक फैमिली। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं अनीता जी फ्रॉम फिकॉम फ्लाक का गाना, वो मांग रही है बहन शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी और हमारे सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए। थैंक यू सो मच।

जी हाँ दोस्तों, आज बजकर 10 मिनट हुए हैं और कहते हैं ना, ज़िंदगी हमें किताबों से ज़्यादा अपने तजुर्बों से सिखाती है। कभी कोई इंसान हमें सब्र सिखा देता है, कभी कोई रिश्ता हमें अपनी कदर समझा देता है और कभी मुश्किल वक्त हमें अपने अंदर की ताकत से मिलवाता है। ज़िंदगी से सीखी सबसे बड़ी बात शायद यही है, हर पल एक सबक है, हर मोड़ पर एक सीख है और हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका है। चलिए रोमांटिक गाना हो जाए और ये जो गाना हम चलाने जा रहे हैं ये है फिल्म हीरो हिंदुस्तानी से लिया गया।

कुमार सानू की आवाज में और साथ में है साधना सरगम और ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा और साथ ही साथ में अंजलि जो रहती है कात्र सर साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद गाना जाएगा आपके नाम और आपके परिवार के नाम

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: आठ बजकर 17 मिनट हुए हैं। जी हाँ, शाम का ये खूबसूरत वक्त है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल कीजिए, आज किस बात ने आपको मुस्कुराया? क्या किसी अपने का एक प्यारा सा संदेश, किसी बच्चे की मासूमियत या किसी पुराने गीत की धुन? आप ही सोचिए, या फिर बिना किसी खास वजह के आई एक छोटी सी खुशी। कभी कभी ऐसा होता है, जी हाँ, कभी कभी मुस्कुराने के लिए बड़ी वजह नहीं चाहिए, एक छोटा सा पल भी पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है, है ना? और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं गुलशन भोला, और वो साथ दे रहे हैं, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। और गाना खास कर आप मांग रहे हैं लवली एंजल आयशा, आप उनको बता रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्या बात है, किसी की नज़र ना लगे। और आपकी माता जी जो हैं प्रभा, बहन दीक्षिता और भोला फैमिली के लिए, और खासकर हमारी प्यारी आरजे हंसिनी के नाम, हम आपके दिल में रहते हैं। फिल्म का नाम है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: RM3 Radio. Radio. की आवाज की आवाज की आवाज
1: शाम का वक्त है और साथ में संगीत जी हाथ बजकर सारे आठ बज चुके हैं दोस्तों भला इसे खूबसूरत और क्या हो सकता है कुछ गाने सिर्फ सुनने नहीं जाते महसूस किए जाते हैं उनकी धुन बजते ही हम अचानक किसी पुराने पल किसी अपने इंसान या ज़िंदगी के किसी खूबसूरत मोड़ तक पहुंच जाते हैं आज का ज़माना है और 90s के जो गाने हैं दिल के बहुत ही करीब है चाहे 90s हो या फिर 80s और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं डारेन श्वेता रावेश प्रिशा लवना आपाडू फैमिली के लिए जो रहते हैं रोशनवा और कहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वंडरफुल है थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद आपको ऐसे ही हमेशा आप लोग साथ दीजिए प्यार बरसाते रहिए हम ऐसे ही खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए चुन चुन कर लेकर आएंगे

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: दोस्तों दिन भर के भाग दौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, अपने दिल की सुनने का। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम सबसे कह नहीं पाते, मगर दिल उन्हें हमेशा महसूस करता है। कभी किसी की याद, कभी कोई पुराना गीत, कभी एक छोटी सी खुशी, और कभी बस खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। तो आज किसी के साथ आप जो महसूस करते हैं ना, उसे अल्फाजों में बांटिए, क्योंकि कुछ बातें कह देने से दिल हल्का होता है और कुछ एहसास बांटने से और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कुमार सानू का गाया हुआ गीत नाराज फिल्म से लिया गया, और ये गाना जाएगा रोशन जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं कैट्रोबोन से। गाना जाता है उनके लिए और उनकी प्यारी पत्नी सविता के नाम। दो बच्चे हैं, क्रितिश और क्रिया, और पूरे रघुनंदन परिवार के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चले दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, धन्यवाद। और यहाँ पर हमें सुन रही है रियाना फ्रॉम फिनिक्स। चलिए, ये आखिरी गीत आपके नाम हम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने इस शो को एंजॉय किया है। हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक आप उषा कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: Πλάκα.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
2: सब संग जालो के आज प्रताप सिंह से प्यार भरा रहमस जे यहा यह तो के मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर और रेडियो मॉरिशस एएम मोड पर कतों कैंस पंसिस कवन जी पंडे यानी कि चौरानवे पंचानवे समझे 98.2 एफएम पर रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस 700 स्क्वेयर्स पर एएम पर सब कुछ के में स्वागत कर सब भाई बहन लोग संगत यार लोग गमत करे के रात चल आज है बुधवार की रात बुध की रात 19 अगस्त 2026 भोजपुरी तरका प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे रे तो रमन का था कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमाया काज जगह दे वुझ जगह या फिर हमने के टिकटॉक पेज और एसएमएस करिए टिकटॉक पेज और खुला सर रात के 9 बज के आधा और गीत संगीत बा गमत करे के समय चल बा नाच गावा झूमा कमरवा डुलावा नच दे कुनाल ही डाल के आवाज में पहल का गाना सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगत यालू के नाम

सर्दी के मौसम बा ठंडा ठंडा करता और कि वो ऐसा हिंदी में मीठी मीठी सर्दी कुछ लोग सुतल बता ढेर कोई अभिले जागल बार हमने के सुना था वजह जागते रहो सुनते रहो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुनते रहो रात के 11 बजे भोजपुरी प्रोग्राम टकाटक कार्यक्रम चलता एक से एक बेहतरीन भोजपुर गीत लोग खाते और बेशक अगला गाना जो है थोड़ा जी लेगी तो अगले वन मोहम्मद कालिद बंधु अगी तो विश्वानी दुमन खाती रह वाकवा कर पोता अवतार के जन्मदिन बाज अवतार बाबू जन्मदिन अभिनंदन बधाई और प्यार माँ दीपा भाई आहा नानी विश्वानी मामू मामी सब दुमन परिवार वाकवा से अवतार बेटा के आशीर्वाद भेजता और है ये गीतवा हमने चलाव इस सब संगत चालू खातिर आप हवन जा आफेज लावेनिया सैनफिया से कैसे बाफेज नोटोदाम के रिहाना है गीत और नाम फिनिक्स के रिहाना हाँ से नानी खातिर बैन को ऐसा जय राजी आद खातिर और भाई अबू हवन वाकवा से और राफिक मोहित तायाक से रतन निहाल गांवे से प्रीतम राज्य में नागवी अजपुर से उदय दनी राम है गीत तोहर खातिर तोहर घरोरी बेटा पतो बेटी दामाद सब दनी राम परिवार के नाम एक गीत किशन गुड़िया आपके नाम चरावती सा और जितना भी संगत चालू

संगतिया लोग तू दुनिया में आलो तो तोहर जोरी कहू न कहू तो अवश्य बनल बा ढेर कोई सोचेला काहे मर शादी नहीं होता काहे मर लगन नहीं होता तो सही समय पर तोहर जोड़ी तोहरा मिली तू बेफिक्र रही जब तू दुनिया में आल तो भगवान तोहर जोड़ी भी विदा कर लगबा और एक न एक दिन तोहर जोड़ी से तोहरा मुलाकात जरूर हो या। और ढेर कोई देरी से शादी करेरा कहे कि चुनहा लोग के मनपसंद वर वधु नहीं मिल रहा था आतान करे रंसा कबू 40 कबू 50 साल में भी सकेला शादी हो प्रेसर ही मैं को बात के मंजोरी ढूंढिया अपन से आगे के जमाना बीत गया जब अगवा खोजता छोकरा छोकरी छोकरा खाती छोकरी छोकरी खाती छोकरा अगवा के जमाना चल गया भैया आज के जमाना बाद सब कोई शिक्षित बा जुके हुआ सा तो अपन जनहा पसंद के छोकरा छोकरी तो लोग दिखे जा और शादी करे जा जरूर शादी को बहुत जरूरी चीज है शादी कर तो परिवार बनी शादी नहीं करब तो परिवार कैसे बनी बोले तो और अकेले जी के जिप्सी बा है आसानी बा अभी की जिंदगी में जैसे जिंदगी चलता चला कोई ना कोई के साथ तो फिक्र नहीं करिए अगर अभी नहीं तो हर लगन नहीं होल बा शादी नहीं होल बा तो फिक्र नहीं करिए एक ना एक दिन तो हर जोड़ी जरूर तोरा मिली। अगला गीत सुन सुना रोशन सरा सिंह गीतवा गई हवन और है गीतवा में चलावते इस अनिता जी के नाम आप हवन फ्री कॉन्फ्लैक् से अमृता गणेश पीतों से रानी के रसों को बेटी परी खातिर माँ रीता खातिर गीत चली ललिता कुशल हवन खयोले से और चाचा आत्माराम और बेशक जितना संगत्या लोग अभी ड्राइव करता कहूँ जात हवा कहूँ से आवत हवा और हमने के सुना था परिवार लोग साथ में बस संगत्या लोग लड़का लोग संगे बा वतन ए की बताता राज्यों में हम है हो तो हर संगत्या तो हो सर दोस्त और जे डी जे प्रताप सिंह यस और भोजपुरी का प्रोग्राम सजा के नहीं से एक से एक जोड़ी गीत सक बजाते फोन करे का जगह देवी जगह विद संग या टिकटॉक पेज पर एसएमएस करिए टिकटॉक पेज खोलब से रात के 9:30 यानी कि और 7 मिनट में पर अभी लाइन खोल दे लें सर सक बजे फोन करे देख कोई सुनने का रहता और फिर को अभी सुनने का लाइन अंजनी अंजनी हवन नियोले से अंजनी बता प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम झकास और अंजनी है गीत खासम खास तौर खाते सुन सुना रोशन सदा सिंह की आवाज़ में

हमने के जन शरीर हा उ एगो मशीन नहीं हा एगो रोबो नहीं हा जब हमने काम कर के आया से घर ही थोड़ा सा आराम के से घर में भी काम रहेला त चेहरा पति पत्नी के दोनों के चेहरा हाथ बताए के और लड़का लोग की तली तो नहीं मिला लड़का लोग कॉलेज जान सर यूनिवर्सिटी जान सर लिसेंस और रहेला पर पति पत्नी आए तो दोनों के चेहरा हाथ में हाथ मिला के घर के काम करी के अभी के को व्यक्ति सब काम करी तो फासिल नहीं बा और बेशक जब तू थक जेबे तो आराम करिया जोन काम रगल बा उ काम हो सकेला कालो हो नहीं छेला आज सब काम करे के ठीक बा अगला गीत बोल दे कौन सी बात और मन में जी हाँ है गीत तो हमने चलावा थे इसे खासम खास उस सब संगतिया का नाम जो भी टिकटॉक पेज पर हमने की देखा था वन आप हवन जा अजय सुरला नीता कुसमाली विष्णु देव नायक फिर बिंदा संजना शांताल लुमासू हमने के साथ देवत सुहेला करुणा रुक तेजस और उमिला जोधा मोटिनाजा और प्रियंका राय तो जितना हमने के रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज हमने के देखा था सुना था गीत और नाम और है गीत बोल दे कौन सी बात और मन में नीरज कुमार धुके गावल गीत मिशन क्रॉस रोड लाल माटी के रवि बिचुक के से कर घरोली स्वयं प्रभाव कर बेटा प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम और हे गीत प्रताप के ओर से कर जिगरी दोस्त हिरीश नारायण के नाम हिरीश नारायण हेलन मिडलैंड संजय बिहारी है गीत और खातिर आशा जानू हो उनको तेज से कमला जीनू मातावा से और कर चीजों फो आरोही खातिर ज्ञान और चित्र विश्राम है गीत और खातिर आप हवन जा मौदाल भी ऐसे और जहाँ से भी तुमने गीत सुना था तो अगला गीत तोहरो नाम नूर जहाँ भी हमने के ज्वाइन कर लें टिकटॉक पेज पर हाय नूर जहाँ प्रेमिया अनूप हेलो शिनी मुश और

Zen the Saira Dahu bhi unke saath de wo aur bahut bahut pyar ke saath chalegi to aata hai naam chalao ab jab bol de kon si baat tor man mein ke kar man mein kon si baat koi nahi sakela jaane par मन की बात है कोई नहीं सकला जाने ना कि भी अभी हम बचाते तो से जहाँ तो मन में कौन सी बात हमारे मन में ये बात बाकी तो लोग काफी अच्छा अच्छा गीत चलाओ रात के 11 बजे रे ताकि सब कोई मिलजुल के नाचब सा गावब सा झूमब सा है चोला के ठिकाने पर भैया आज ऐसा काज निकाल के रही के नहीं जुन बा तो ईपल बा ईपल के जीरा चलन नाचे गावे झूमे एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर

बोल दे कौन सी बात हो रही मन में मन की बात मन ही जाने रहा और मौत की बात कौन सी उला इता कोई नहीं सकेला जाने बड़ा बड़ा लेखक लिखलक बा कि मौत के बाद आत्मा शरीर के छोड़ के परमात्मा लगे जाला कि आत्मा जाला यम राज संगे यम दूत संगे तो न्याय होला पर आज ले कोई नहीं सकल बा जाने कि वास्तविकता में सच्चे के मौत की बात कौन सी होला ये खातिर बोला सर अभी जिंदा है सर तो जिंदगी जी रही है सर कोई की निंदा नहीं करब सर कोई के बारे में बुरा बात नहीं करब सर पूजा पाठ करब सर एक दूसरे के सहायता करब सर अच्छा बात बतियाब सर पालाब नहीं करब सर नीमन बात बतियाब सर और नीमन जिंदगी जीव सर अपन परिवार में अच्छा से रह सर अपन पति पत्नी अपन लड़का फैका अपन माँ बाप सब परिवार संग एकजुट होकर रह सर ठीक बा मौत के बाद कौन सी हो हम जब मर जाब सर तो कोई नहीं सकेला जाने की मौत की बात कौन सी होला और सच्चे के है कि जो दुनिया में आवे लगते एक दिन चेहला के मौत आएगी आई मौत से ढेर कोई डरेला पर सबसे सच्चा सत्य है द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ अच्छा बोला बाबा अंग्रेजी लेखक कि जब जीवन बा जन्म बा तो मृत्यु भी बा मृत्यु होला तो रोयला स आयो फलना व्यक्ति चल गल इतना प्यार पर प्यारा पर वो जब चल गल भैया तो चल गल वो कोई के फिर से घूम के नहीं देख लग शमशान घाट ले ओकर संगे में जाप सा ओकर बाद वो सफर ओकरे चेहला अकेले तय करेंगे अकेले आलबा दुनिया में अकेले आलबा इंसान अकेले जाए यहाँ पर इसे तई खाते ढेर त्राका नहीं रही है भैया ढेर फोसे नहीं हो जा ढेर फाचगे नहीं हो जा यही शरीर है कब जानी शरीर साथ छोड़ दे है आत्मा कब इस शरीर से निकल के उरन छू हो जाए और अगला गीत अजब गजब के लोग भाई दुनिया में अगी तो हम ही चलावत है ईसा शिनी खातिर फिर सरिका बनौसी है गीत और नाम अनिशा दिलवंती सनातन और सैरा दाहू गीत अब्दुल और सैरा बानु खातिर संजू बाबा हनी आशी फिर बन सुखिया है गीतरो नाम विशाल काची जान रास अनिता लाल जी नमस्ते माला रोज विंटेज संध्या प्रिंसेस अक्षय है गीत चली कादे सतरूपा सुम जंग ठाकुरी अनुक्षा रक्षिमन रोशनी बिशेसर शर्वा प्रेमा सोना बिस्वानी जम्मू सविता पोखन एंजल फुलेको जाकुमी कैथरीन डेविस Tika Komal, Divya, Devina Bisser, Raz, Dananjay Biswa, Vali, Anjani, Manusha Gopi, Kavita Anu, Elvis Bayash, Horidal Dinu, Vikram Pertab, Sara Sarama, Puja Jabul, Ravi Bangaru, कैसे बस समाचारी तमने के संगत्या हमेशा उनके साथ देवलन बहुत बहुत धन्यवाद हमने के देखे सुने का थी प्रणाम भैया याशव निवपूल इंग्लैंड से हेलो जी हरिलाल दिनु हाँ नमस्ते भैया अगला गीत और खातिर तो घरी तो बेटा तो पतु और सब दिनु परिवार के नाम जूली सूर्या कविता अनु है गीतरो नाम और नजा मुचिकंदन है गीतरो खातिर राज रमेशर है गीतरो नाम मनीलाल जुमंगू शीला राजेश गुप्ता सवे कृष्णी ममता उष आयिन क्रिश आरियल साम वनीसा कबीर उमिला जोधा विनोद फिर हई गीत चलाओ जैसे विशाल बज्जा नाओ खतीर वनीसा जी हाँ है गीत हो नाम और रोजबेल में भी थे कोई काम करता एक जगह में तो लोग के संगतिया लोग के नाम निजाम समुदी और अंजल खुशी तो ये सब संगतिया लोग टिकटॉक पर हमने की देखा था और जितना कोई रेडियो पर सुना था और लोगों का जैसे गीत बा अजब गजब के लोग बा हाँ दुनिया में सब प्रकार के लोग बा कोनो कोनो व्यक्ति ढेर अच्छा बा कोनो कोनो व्यक्ति बड़े मूवी है बात बात में गाली दे बोलन सा करा करा बुरी बोलन सा पर कोनो कोनो व्यक्ति जो है बहुत प्यार से बचालन सा और ऐसे व्यक्ति से चेहरा दोस्ती करके जिन व्यक्ति प्यार से बचाला जेकर मीठी बोली बा विशाल बजुनोत है गीत तोरो खातिर भूपेन कतारी संध्या राम सिंह अंजय खुशी चल एक साथ सुनेगी तो अजब गजब के लोग बा

आजकल दुनिया में कहूं कहूं भूकंप आवा था कहूं पर तूफान बा कहूं पर सूखा बा कहूं पर भूस्खलन होता कहूं पर सुनामी आवा था तो कहूं पर बवंडर आवा था वो ज्यादा दुनिया के अंत अभी दूर नहीं बाए जैसे आजकल दिखाते हैं ऐसा मीडिया पर सोशल मीडिया पर टेलीविजन पर राज्यों में सुनी जा सर दुनिया भर से इंटरनेट पर दिखी जा सर कैसे कहूं कहूं पर भूकंप आवेरा और चंद ही सगन में कितना लोगों की मृत्यु हो जा रहा ये सब भगवान के काम है ये सब हम नहीं सकब से जाने पर कौन सी सकब से करे सकब से प्रार्थना करे कि प्रभु ऐसा घटना नहीं घटी पर आजकल दिखा रहे ऐसा थे मना घटना ऐसा घटल जाता थे मना देश में देख भर की धरती कौंपेला और जलजरा भूकंप आवेला कितना लोग की मृत्यु हो जा रहा तो ऐसे ही बात कहा सकब से करे ये दुनिया उल्टा घुमाता भैया और अगला गीत जो है मार ताली मार गीत नेगो फ्लोरा खातिर द बॉस थोड़ा खातिर श्यामा महिराली है गीत और नाम श्यामा महिराली है गीत याती और गीत श्यामा महिराली और याती खातिर साथ में है गीत अलेक्जेंड्र खातिर दीपक महारा है गीत और नाम संगीता गोविंदन शिवा बुगाते शिल्डोस जोनाथो अबाटो और है गीत एंजेल रीमा जेसी मिडुन है गीत और नाम अनुष्का है गीत और खातिर फिर एंड

123 है गीतरो नाम और है गीतरो आमी चलावत है इसा रिज्वेश दत्तु के नाम नंद परिवार हवन मेबर्ग से और लाहोजा से विश्वानी बाबूलाल वीना कुबुसामी मेबर्ग से सुरमा दुखित मेबर्ग से सैतो बैसे कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग खातिर और लक्ष्मण मिस्टर लक्ष्मण के जन्मदिन रहल दिमास के तब बधाई और प्यार और पत्नी और बेटा और लड़का लोग सब लक्ष्मण परिवार और सैतो बैसे के सब स्टाफ की ओर से भाई लक्ष्मण के जन्मदिन बहुत बहुत अभिनंदन है कि तो आमी चलावते इसा मिसेज बंधन मिसेज झमन मिसेज रामधुनी मिसेज चंपा रघुनंदन मिसेज ओकल और मिसेज जमादो खतेर और श्यामा मेहराली बहुत प्यार से हमने के देखा था वन और सुना था वन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर हमके साथ साथ वो भी कमेंट कर रहता है अगला गीत तोरो नाम नालेश बोईराज कैसे भैया है गीत तोरो नाम मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार

मार थाली मार हमारे संगे और ताली बजाते रहिए हमने की गीतवा सुनते रहिए और अब तो रोके वो कहानी सुनाओ अब रात के 9:50 बहुत बार ध्यान से सुनिए कहानी सुंदर परी की कहानी तो बहुत समय की पहले की बात है एक घना जंगल में एक घना जंगल है चारों ओर और ऊंचा ऊंचा पहाड़ हरे और बड़ा बड़ा पेड़ पौधा रहा जंगल के बीच में एगो चमचमाचा झील रहा झील के पानी इतना साफ रहा कि रात के चांद में परछाई भी नजर आवत रहा तो वही जंगल के पास एगो छोटा गांव रहा गांव में गोरी नाम के एगो दयालु लड़की रहत रहा वो गरीब परिवार से रहा बल्कि ओकर मन बहुत साफ रहा वो रोज अपन माई के साथ काम में मदद करत रहा और जंगल में जाके सूखल लकड़ी बटोर के घर आनत रहा एक दिन गौरी जंगल में लकड़ी बटोरत बटोरत बहुत दूर निकल गल अचानक ओकरा एगो मधुर आवाज सुनाई पड़ल वो आवाज के पीछे पीछे चलल तो झील के किनारे पहुँच गल तभी झील के ऊपर तेज रोशनी चमकल रोशनी धीरे धीरे एगो सुंदर परी के रूप में फूमने लग परी के पंख चांदी जैसन चमचमा तहल और उकर माथा पर छोट सा चमकीला मुकुट रहल और परी मुस्कुरा के बोलक दरिया नए गौरी हम इस जंगल के परी हैं हम तोहर दयालुता के परीक्षा लेवे आल हैं गौरी हाथ जोड़ के बोलक परी रानी हम तो साधारण लड़की हैं हम का करे सकब तोहर खातिर त परी बोलक इस जंगल में एगो जादुई फूल बा ओकरा के तोर के अपन खातिर रख ल तोहरा बहुत धन दौलत मिली बकीर अगर तू ओकरा के बच्चा के रखब त तोहर सबसे बड़ा इच्छा पूरा होई गौरी जादुई फूल के खोज में निकल गल कुछ देर बाद ओकरा ऐसन सुनहरा फूल दिखाई पड़ल फूल के चारों ओर रंग बिरंगे रोशनी चमकत रहल गौरी फूल के देख के सोच रहा कि अगर ये फूल बेच देव तो घर के गरीबी दूर हो जाए बकीर ओकरा फूल के पास एगो छोटा घायल चिड़िया दिखाई पड़ल चिड़िया फूल के छाया में बैठल कांपत रहल गौरी फूल नहीं तोड़लक उ चिड़िया के उठा के धीरे से अपन हथेली में रखलक और ओकर घाव पर पत्ता बनलक कुछ देर बाद चिड़िया ठीक हो गल और उड़े लगल तभी फेरू से परी सामने आ गल परी मुस्कुरा के बोलक गौरी तू धन के बजाय दया के चुनल यही असली जादू है परी अपन जादुई छड़ी घुमैलक अचानक जंगल में हजारों फूल खेल गल गौरी के गांव के सूखल कुआं पानी से भर गल और गांव में खेत हरियाली हो गल गौरी आश्चर्य से पूछलक ये सब कैसे हो गल परी बोलक जोन इंसान दूसर के भलाई करेला ओकर जीवन में खुशहाली ही रहेला गौरी खुशी खुशी गांव वापस आ गल गांव के लोग जब ई सब देखलक तब बहुत खुश होलन सा ओकर परिवार के जीवन धीरे धीरे बदल गल ओकर बाद गौरी रोज गरीब आ जरूरतमंद लोग के मदद करे लगल परी समय समय पर दूर से आके देखा दल मुस्कुरात रहल कहल जा रहा कि आजो जब चांदनी रात में जंगल में झील के पानी चमकेला त हौजा एगो सुंदर परी के परछाई दिखाई देला उनकर लोगन के आशीर्वाद देवेला सच्चाई के भलाई पर चमकेला कहानी की सीख यह कि असली सुंदरता चेहरा में नहीं बल्कि इंसान के अच्छा दिल दया और नेक काम में रहेला तो तू भी अच्छा दिल रखिए अच्छा काम करिए एक दूसरे की मदद करिए शायद एक दिन तोहरा भी परी मिल जाए और परी जादू करी तो थोड़ो जिंदगी सवर जाए और ऐसन में माफ करिए ऐसन में चला सुनब जाए अगला गीत जल्द सा बा अंशु गीत गई लेवन और गीत हमने चलावत ऐसा इस सब संगतियालों के नाम बीना बीना के रोसे को डुगो बेटा और घरोला सपना धनु किशोर नायको अश्व

0: Quindi Kirod, Kushidan, Millionaire, Robert Kirsi, Hegi, Cheduko Sangatia Kater, फिर जय श्री भीम के साथ देवथवन शुमा बंधन गीत और नाम देवी भाई है गीत और खाती तो पत्नी तो दुगो बेटी प्रतिमा तीना दीना केट सरजू विरापेन अपाया रोसाई श्री शंकर गिरधारी गंगू लक्ष्मण है गीत और नाम रामभावन स्विट्जरलैंड से अजय और पूनम चिंतराम ऑस्ट्रेलिया से इटली से सब शिव परिवार प्रेमी राहवन लाफों से नारी वाला फिजी से हवन और सब जानकी परिवार गुडलैंड से देवी का राम गति गीत और नाम राधा शिवालक जानकी सी सहाय और ईश्वर सोबन है सब संगतिया लो खातिर अगला गीत गीत बड़ी झोली बा जलसा बा चलो चल अंजू के साथ जलसा करी
1: Ladies and gentlemen, namaskar. The Bhojpuri

गुदना यानी कि टैटूआज आगे के बराद में लोग गुदना करत लंस अभी होला टैटूआज पर आज धीमा नामुद बना अब मैं बात करब स नारियल के बारे में तो नारियल जो है जो कि कोको बोली जा सा वो बहुत उपयोगी ए फल है और नारियल जो है बेशक एकर पेड़ जो है गर्म इलाका में होला और ये पेड़ पर

जुन्हा अधे मरा नारियल होला। नारियल पानी जुन्हा सबसे बड़ा खासियत यह है कि हमने के शरीर के अंदर के पानी के पूरा करेला। गर्मी के दिन में नारियल के पानी दिलो कोको पीबा तो जुन्हा शरीर जो है शीतलता पहुँचेला। और डॉक्टर लोग भी बोलेला कि आफ्रेसी है एगो जब सुफमो हो जाए तो दिलो कोको पीबा तो अच्छा बहुत सुफमो के दूर करेला।

देवी कोको बाद में डाला सर और नारियल का इस्तेमाल खाना में भी होला तेल मालिश भी होला धार्मिक दृष्टि से नारियल के बहुत महत्व है पूजा पाठ शादी ब्याह नया घर की शुरुआत या कोई भी शुभ काम करे से पहले नारियल फोड़ल जला उशुभ मानल जला एक से शुभता और समृद्धि घर में आवेला नारियल के छिलका से रस्सी बनेला चटाई बनेला और ढेर मना चीज उपयोगी होला तो नारियल जो ना में कोनो चीज नहीं बिगाला ओकरा जो जिया रहेला हो जो भारा के लाखों रहेला ओकरो इस्तेमाल होला और नारियल के जो ना गुदा रहेला ब्लॉन्ग और ओकरो इस्तेमाल और नारियल में जो पानी रहेला ओकरो भी हमने प्रयोग करी ला सर तो देखा कोको के कितना महत्व बा देलो कोको देवी कोको के चटनी भी बनेला है कोको से ढेर कोई तकारी में भी जाने ला है तो अगला गीत जो हच्ची मामा सुमन का गीत आ गई ले वन और रॉबर्ट की ओर से है गीत चली ओकर ओकर ओकर एगो खास संगतिया के नाम ओकर नाम बा माया वो रहेलन बोबास है और गीत रॉबर्ट की ओर से माया खतीर इब्राहिम शेख हसन है गीत और नाम करिशनी है गीत और नाम आशा आशा जन्मदिन बा वशली वैष्णवी हैप्पी बर्थडे और हे गीत मिलियनेयर के नाम जहीना है गीत और खातिर किंग हमने के साथ वातावरण हाँ और मिदिन बोलता कि कोको जो है ओकर में कोनो चीज पेजी नहीं है जैसे कोको के कोर भारा के जो है ओकर छिलका है ओकर लाकुक है ओकरो प्रयोग होला देलो कोको कोको के कोको से चटनी बनेला है कोको के सब पीटी पीटी काट के चीनी में डाल के खाए गातो कोको दिवाली में गातो कोको कोको आपे करके बातात में डाल के पकाए रहा सर तमिदुन तो सही बोला तो कि कोको में कोनो चीज नहीं बिगाड़ा था अगर तो हर आंगन में एक नारियल के घोंची बा या तो हर आंगन में प्लास बा जगह बात एगो कोको के घोंची जरूर प्लांटिया एक गो घोंची में जब कोको होला एक कुत्ते सकेला 100-200 कोको हुए और 3-4 गो घोंची रही तब कोको खाए और कोको बेचे भी ओकरा से पैसा भी मिली आजकल महंगाई के जमाना बा और अभी गर्मी के मौसम आए तो नवाम दिशा में तो लेते रहेला तो सब कोको बेचे हों कि नहीं चला भी की सब सच्ची मामा जितना कोई हमने की सुना था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर जितना कोई हमने टिकटॉक पेज पर देखा था करण नरसु है गीत और खातिर लघु रघु लेख राजवन मेबक से कर घरोली कर तीन गोले का कर माँ और सब रघु परिवार खातिर भी गीत चली और गीत चलाओ दे सर जकर मूड अभी नहीं अच्छा बा का जिन के कौन चीज के काबुल दिलक मूड खराब उगल बात तू मूड खराब नहीं कर तो एक गीत सुनो तो हर मूड सेट हो जाए ची मामा आई देखा आई देखा आली संग संग नाचब सा गावब सा ओके रेडी एक दो तीन आई देखा

0: Que mamá, que mamá.
1: ऐसे ही नशे करते रहिए। एमसी रेडियो के साथ मोरी।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
4: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का. भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा.
5: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर. गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC.

0: रात के 10 बज के 15 मिनट हुए बार तू सुन तो रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर 94.6 98.2 FM पर और रेडियो मोशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर या हमने के सुनते हुए ऑनलाइन क्लिक कर या www.mbcradio.tv फिर क्लिक कर या लिसन रेडियो मनोरंजन या लिसन रेडियो मोशस बहुत शुक्रिया का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ले और बुरी तरह संगठनों की जिंदगी में कोरिया नहीं बनिया पारिस नहीं बनिया कोरिया पारिस बनबा तो कुछ नहीं मिली मेहनती रब परिश्रमी रब तो तोहरा तोहर मंजिल जरूर मिली और दुनिया में आने से कोनो न कोनो चीज करी खातिर भगवान हमने के यूं ही दुनिया में नहीं बिजा कर लगभग हमने के ढेर मना ऑब्जेक्टिव पा लक्ष्य बाजी दुनिया में हमने आने से तो कोनो न कोनो चीज है ना करके जाएगी जब भी हमने समय पूरा नहीं हो हमने के ऊपर से बुलावा नहीं आई हाँ कि नहीं तो हमेशा मेहनती बनिया परिश्रमी बनिया काम करिया और पारिस नहीं बनिया हम जानी जा सकी फजीत के बड़ी ठंडा करे देखो बोला आयु मुझे तेज हो जी ना इसे तेज करेगी नहीं बा छह ना काम करके काम कर बता पैसा मिली हो बता काम कर बता पैसा मिली हो ज़्यादा पैसा मिली तो सब अच्छी तरह से बन परिवार की देखभाल करे हाँ कि नहीं तो अगला गीत है बलमा ओ बलमा सुन बावती दुमन की तो गए रे वन गीत मिलो ने खातिर चल रजनी है गीत और खातिर तुहर बहन देवीना और है गीत चलावत ऐसा ओके मनजा है गीत और नाम सनी मोहम्मद विकास रामलेखा कैसे विकास भैया कैसे समाचार ठीक ठाक तो विकास राम लिखा है अगला गीत और का तेर बहुत प्यार के साथ बलमा ओ बलमा और एक गीत हम चाहते इस नंदिनी का तेर कैसे मन नंदिनी नंदिनी हमन वाकवास से और बुलतवन प्रताप प्रोग्राम एकदम बढ़िया बा और हमने के संगे संगे नाचतवन गावतवन चुमतवन नंदिनी डॉक्टर अंजू है गीत और का तेर तोहर मंगेतर और तोहर परिवार का तेर हाय येशा येशा कहाँ से हव कहाँ से हुआ ये शाह राइट मॉरिशस से या विदेश में और अभी कुछ संगत लाइन पे से मिल अब जा दादी प्रभावती ओके वैसे मिल अब जा राइट एक मिनट दादी हेलो दादी नमस्ते कैसे समाचार ढेर दिन के बाद सुने के तो का हो हमने की भुला गई लगा हाँ सके लालीन खाते उतना नहीं मिला तो कैसे वाला सोते दादी अच्छा ना दूल्हे वाता रबे करे ना हाँ जैसे उम्र बढ़े जा दूल्हे उतर बढ़ ले जा रहा ना परिवार लोग कैसे बेटी दामाद लड़का लोग अच्छा अच्छा वन सर चलो तो धीरे धीरे अभी काम करते से रात के 11 बजे ले हाँ और बोले तो चाची अगला गीत के कर खातिर हाँ अभी श्रावण मास के पूजा उजा कर ला थोड़ा बहुत घर ही पर हाँ तो घर में सब पूजा करे चलो चलो भगवान की दया से हाँ तो चाची अगला गीत तोहर खातिर और तोहर सब परिवार के नाम ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद हमी के टेलीफोन कर ला और अगला गीत जो हमने चलावत सब संगत्यारों खातिर जो हमने के साथ जुड़ रहा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और हाँ और एक कॉल बा चलो कॉल वाली कब से अनीता वन फ्री कॉम्प्लेक्स से अनीता जी नमस्ते
1: नमस्ते प्रताप जी कैसे आप कैसे हो भाई
0: हम ठीक हैं तू कैसे हो बहन सब ठीक ठाक
1: हम अच्छे हाँ ठीक हैं थोड़ी सी गर्मी है आज
0: हाँ आज बुझा था गर्म कर लग बा है
1: हाँ सुबह से दिन से गर्मी गर्मी हो रही है
0: दो दिन पानी बरसा हाँ, दिन के गर्म हाँ, करेगा
1: हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं बरस
0: हम यहाँ तो मोटा पानी रहा बाप रे काल फजीर के तीन बजे फजीर से दिन के 9 बजे मोटा पानी रहा काल फजीर मोटा बा
1: कैसे
0: श्रावण मास के पूजा पाठ चला था निमन से
1: बहुत निमन से बहुत अच्छा
0: हवन हुआ था वेद पाठ हुआ था
1: हाँ तो निमास के बड़का बड़ा पूजा हो मंदिर में
0: कहाँ पर
1: हमने फिकौंसा के मंदिर में ना
0: हाँ तो श्रोता लोग सेकंड साहिब पूजा में
1: हाँ सब लोग सके हम सब एक कौन चीज करत है सब बोल

0: लोला भाभी पेंटिंग कर ले हैं सब मोती के हाँ सब मोती के फेरों से पेंटिंग कर रहे हैं बड़का पूजा हो सब अभिषेक हो पूजा हो कैसे प्रसाद महाप्रसाद
1: सब
0: हाँ वितरण होंगे
1: कै बजे से कै बजे पूजा हो कै बजे से
0: 8 बजे आधा बजे से तो 1 बजे फिनी हो जाए तब सब मूर्ति के स्थापन पूजा हवन तब भोजन संस्कार करके तब फिनी हो जाए तब नहीं फिनी हो जाए तब रोज के जब ले सावनी अभी फिनी हो जाए ना राखी के
1: रेवेंट्रीट के हाँ
0: हाँ तो वही से तो रोज
1: तब ओकर बाद ही गणेश चतुर्थी के ना कार्यम
0: हाँ है है यो कर रहा सा है जो का कृष्णा जन्माष्टमी आगे बाद चार सितंबर के तो हमने कृष्णा जन्माष्टमी मनाई राजा
1: अभी कृष्णा जन्माष्टमी हो राधा अष्टमी हो
0: हाँ सब हमने कर
1: हम हर बड़ी इस्कॉन जाए फिनिक्स जब पूजा रहे
0: हो जाता बहुत निमन
1: हाँ पर पार्किंग पार्किंग पार्किंग नहीं मिले
0: हाँ ढेर आदमी जा रहा जानी ला शादी से पहले हमें इस्कॉन में रहनी हाँ बहुत जब जहाँ जाएगा पूजा करे के पूजा करे के चाहेगा
1: हाँ और जो लोग ढेर भक्ति में रह रहे लोग प्याज और लहसुन नहीं खा लेना
0: हाँ
1: हाँ,
0: लोग के नहीं प्याज और लहसुन
1: शुद्ध खाना जो शाकाहारी भोजन अभी तक आगे सब कोई लेगीम खाता अभी और लेगीम अच्छा है लहसुन के खातिर अच्छा है
0: हम तो ढेर दिन खा के खुशी रही ला लेगीम खा के खुशी रही ला हाँ तो हम सर लेंदी के जाए ला पूजा
1: शिव अभिषेक होला ना लेंदी के
0: मंदिर तो हमारे घर है हाँ कोने के कोई के बोला तो हम आके आके मिले के तो हम मंदिर में ही ना बोला
1: आके तो घर के आगे बड़ा मंदिर बा
0: नहीं रोज रोज के नहीं ले बाकी हर पूजा में भगवान की भगवान के आशीर्वाद से हम पूजा में भाग ले ला
1: श्रोता श्रोता बैठे ला पूजा में
0: हाँ हाँ हमार हम ठाकुर भी कर ला
1: ओके तो बहुत अच्छी बात
0: पूजा सामान के तैयार करी ला अभिषेक के खुशी रही ला
1: अच्छा बात और बोला था नहीं था अगला गीत के कर खाते
0: हाँ एक बात बोला था बोला भाभी कोको की चटनी के
1: हाँ
0: जब हमारे बचपन में बचपन ना उतने ना है तब हमने हम मामा के घर में रहती था तब वेंसेंस वे गोबूत कोको
1: बेचाता है
0: हाँ तो 3 गोबूत कोको 1 रुपया में 1 बुल तमारा वेंसेंस
1: हाँ गे अपने के लिए पोक के हाँ
0: किन ले रनी सब मम्मा ये के यहाँ जब कोको चटनी चटनी भी सब सता हम ओकर दिलो कोको असिल रोरा में काच काच के रख
1: अब तो कोकोआ में जब चटनी कर रहे थे ओकर में सब लामोत के पत्ता भी डाले ना
0: हाँ लामोत के पत्ता चाहिला
1: पीमा जोरी से डाल दिया
0: पीमा चाहिला और कोको ग्रिये
1: ग्रिये करके तब खास करेगा
0: बहुत अच्छा बा तो एगो गाना चढ़ा दिया हमारे खातिर
1: हाँ हाँ ओ बलमा सुम्बावती जुमन की मसाला पीसेला आले खोजब सगी तो
0: आपको बहुत धन्यवाद बहुत कुराज भाई
1: बहुत बहुत धन्यवाद आले नमस्ते शुभ रात्रि हाँ तो जैसे अनीता भी बोलन कि जो कोको है ओकर कोनो चीज नहीं बिगाड़ा है ओकर कोको के कौन जो कर लाखों रहेला और कोको के भीतर के ऊपर गुद्दा रहेला ऊपर पानी रहेला और कोको के तेल कोको के पानी तो ये सब कोको जो है पौष्टिक खाना है अच्छा है लासों देखे डॉक्टर ने भी बोला कि कोको जो है नारियल बहुत अच्छा है मुकेश कुमार अभी हमने के साथ होते हैं आप हो इंडिया से हेलो भैया वेलकम टू मॉरिशस रूबीना के साथ होते हैं राजीव खटका है गीत और ना मुकेश कुमार और आशा है गीत तोहर खातिर तोहर माता जी राधा खातिर नताशा टीबो एक गीत तोहर नाम रीना रीन एक गीत तोहर नाम विकास रामलेखा येशा सनी मोहम्मद मनजा और है गीत चलाओ अब्स ओके वीरेन के नाम भी हमने के साथ देवतवन और सत्यम सुनुन के साथ देवतन हाय सत्यम भाई एक गीत तोहर खातिर मुकेश गंगा सूरज गंगा गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम सब शिवरतन परिवार के नाम आशा बेनी है गीत तोहर खातिर तोहर घरोला तोहर बेटी चिबुग लोंग राजा संजीव स्टीव माना प्रवीण भैरव श्याम मंगल और राजमन्ना खातिर भी गीत चली फिर साथ में सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी और सब

अइसन जोरी गीत सुनबावती दुमन बेदर्दी हमार ऐसे ही नचते गए चेहरे के जिंदगी के चेहरा ऐसे ही बिना स्ट्रेस के लेके जाएगी कौन तरह का चिंता नहीं करिए चिंता चिता बन जा रहा चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता गीत सुनने वो ना अब भाई लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा ठोर बाप रे बाप भाई मुर्गा बात मुर्गी बिना मकई नहीं खाला ऐसा मोबे मुर्गा बाप रे बाप ऐसा मुर्गा दिख रहे वो लंबा लंबा ठोर बा और जब ले मुर्गी नहीं खाला तब मुर्गा वो नहीं खाला तब मुर्गा

की कहानी भी सुनयन सुना नुयन और है गीतवा हमने चलाओ अब स खासम खास लवना खातिर लवना है गीत तोहर नाम और है गीत चांदनी के नाम चलावत स कर बेटा पतो और कर सब परिवार के नाम और इस वक्त हमने के चिंताराम परिवार सुना थवन इंदिरा माता जी इंदिरा चिंताराम गीत तोहर खातिर तोहर बेटा जय बहु पूनम बेटा चंदन बहु प्रिया चीज ऑफ लोग और सब चिंताराम परिवार के नाम रमेश कर की है गीत तोरो खातिर अलंजो है गीत तोरो नाम जो दानी एम की शादी हो तो है गीत रेबेका खातिर और रोड्रिग से हमने की थे कोई शादी हो तो रोड्रिग्स वालो है अगला गीत तोर खातिर ललका मुर्गा और हम रोड्रिग घर अली तो वहाँ देख रही लामे में मुर्गा मुर्गी बच्चा घूमता है पहली बार हम देख रहे हैं एगो देश में जहाँ मुर्गा मुर्गी लामे में घूमी रहन सर हाँ तो समुद्र तट पर जब बैठा हुआ था ऐसे मुर्गा मुर्गी में बच्चा लेके आता और कोई मुर्गा मुर्गी की गंती ये लेवत नहीं बा मॉरिशस में तब नहीं दिखलाएं समुद्र तट पर मुर्गा मुर्गी के पर रोड्रिग्स में जेबा जितना लापलास वहाँ पर ही था देखभा मुर्गा मुर्गी अपन बच्चा के लेके घूमता और सब कुछ चुचाप ताकत था बाप रे बाप और रोड्रिग्स में जब जेबा था देखभा चारों बकरी बा मोताई में बैल बा बकरी बा तोहो बा और रोड्रिग्स की खासियत यह है कि सब कोई जो है ज़मीन में काम करे रहन सा और लापिस करे रहन सा मच्छी मारे रहन सा खुद में या जस्सी में लगा होती एक दिन मौका मिलता ज़रूर जाइए घूमे रोड्रिग्स बहुत ही सुंदर बा रोड्रिग्स और अच्छा है वो अच्छे जगह जाके रिलैक्स करेगी अदनान अगला गीत तोहर खातिर और शास्त्री बुनमालियम के साथ भाई शास्त्री गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम और जितना कोई भी नाइट शिफ्ट में काम करता है अस्पताल में क्लिनिक में कॉल सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड्स लोग मेट्रो स्टेशन में पुलिस फोर्स में फायर सर्विसेज में जहाँ कहीं भी तो लोग काम करते हो सर और हमने की सुना तो हमने बोलो सब बोकुआज हमने की आशीर्वाद हमने की प्यार तो लोग के साथ बा ढेर कोई अभी रात के काम करके वापस घर आवाता है तो ढेर कोई अभी घर से निकलता काम करे जाए खातिर सबको की बोलो जा बोकुआज चले गीत सुने लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा थोरबा सुनो इनकी आवाज़ में

संगतिया लोग उमेश दोहू के गावल जिदे जिदे गीत के संगे ही भोजपुरी दर का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दे रहा टिकटॉक पेज पर हमने की फॉलो कर ला, हमने की देख ला, रेडियो पर हमने की सुन ला, तो SMS और फोन कॉल्स का दिल शुक्रिया। रात के 11 बजे सकबर सुने गिनीशा के साथ प्रोग्राम सुने रे पर, और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तो लोग की मुलाकात यहीं तक रहल, अब हमने के तो लोग की मुलाकात हुई कल बिफे सांझ के 4 बजे से 5 बजे रे रेडियो मनोरंजन पर, प्रोग्राम रही दिल से मिले दिल। कल शाम की मिलब जाए 4 बजे से 5 बजे रे रेडियो मनोरंजन पर। तब तक हमने की इजाजत दे अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते, सलाम, शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जी नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफर में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनिशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।
2: हाँ? क्या कहा?

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस जरा थाम लीजिए और दिल का दरवाजा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफर लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के नाम।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाज़ें ऐसे होती हैं ना जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। वो गीत जो हमारे माँ बाप ने गुनगुनाए होंगे किसी ज़माने में, जो हमने बचपन में रेडियो पर सुने और जो आज भी दिल को उतने ही सुकून देते हैं। आज की ही रात उन्हीं अनमोल नगमों के नाम है। अगर आप कहीं सफ़र में हैं, घर पर हैं या काम पर हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर लीजिए।

गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उससे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस में।

रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी के जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहाँ भी है बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनेशा टू से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim Chumarishyas.
4: Namaskar.
5: Shotrandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।